मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए इसमें सबसे पहले सुनते हैं मातृवंदना। दूर हो हमसे, रहें जहां भी हम इस ब्रह्मांड में, स्वदेश प्रेम कहां जुदा हो पाएगा। भारत

की धरा में जो विश्वास है और वो विश्वास और हमें कौन दिलाएगा। मिट्टी की खुशबू, पुरखों की आस्था और हमारा ये यकीन कि भारत की भूमि ही पुण्य भूमि है।

आइए अब नंदिनी शरण की आवाज में सुनते हैं श्री कृष्ण जी का भजन। सांवरी सूरत है, मोहनी मूरत है, और फिर बांसुरी की वो सुरीली तान, बार बार हमारी नजरें और हमारा मन मनमोहन को ही ढूंढती है। अब तो आ जाओ मनमोहन, हमारी निगाहें तुम्हारे बिना तरस रही है।

0: Passada.
1: के सीता के गए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ॉन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 होने को हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख और प्रस्तुति है गर्जन सिंह वरकड़े की।
2: मनुष्य का साक्षात्कार जब प्रकाश से हुआ तो उसे नई दिशा मिली, नए बोध हुए और अपने ज्ञान से उसने नए इतिहास की रचना की। ज्ञान के सार्थक प्रयोग ने उसे नई से नई ऊंचाइयां प्रदान की। विज्ञान उसी का विलक्षण विस्तार है। इस माध्यम से मनुष्य ने चमत्कृत करने वाली सफलताओं को प्राप्त किया है और भविष्य के गर्भ से नई संभावनाओं को प्राप्त करने के प्रयासों में संलग्न है। लेकिन दूसरी ओर विज्ञान के दुरुपयोग के कारण घोर अमानवीय व्यवहारों के उदाहरण भी मनुष्य को देखने पड़े हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के

0: हंस ने हमें सभी को ये परिचित कराया है कि दुनिया में विज्ञान का यदि दुरुपयोग हुआ तो इसके कितने खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। वहां का विनाश हमें ये सोचने के लिए बाध्य करता है कि विज्ञान जैसे साधन का यदि बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो मानव सभ्यता को नष्ट होने से नहीं बचाया जा सकेगा। तभी तो कहा भी गया है कि विज्ञान जब तक नियंत्रण में है वो अच्छा सेवक सिद्ध होगा, पर यदि उसका अनियंत्रित उपयोग हुआ तो वो अभिशाप ही बनेगा। लेकिन अभिशापों को वरदान बनाने वाली प्रवृत्तियां जब तक इस धरती पर रहेंगी, हिरोशिमा और नागासाकी दोहराए नहीं जाएंगी। इन शहरों का आर्तनाद दुनिया को यही बताने का प्रयास तो कर रहा है कि ऐसी अगर कोई दूसरी भूल हुई तो इस धरती का वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा। 6 अगस्त 1945 के दिन को हम केवल हार जीत की दृष्टि से नहीं देख सकते। जीत चाहे किसी सेना की हुई हो या हार किसी दूसरी सेना की, पर इस दिन सबसे बड़ी हार हुई थी मनुष्यता की, मानवता की और मनुष्य के विलक्षण ज्ञान विज्ञान की। हिरोशिमा पर बम गिराना पॉल टिबेटस और उनकी टुकड़ी के लिए महज एक अभियान को पूरा करना रहा होगा, पर उनका ये कृत्य क्रूर से क्रूरतम शासक से भी गया गुजरा कृत्य था। हो सकता है क्रूर शासक भी इसे देखता तो वो कांप जाता। हिरोशिमा का समूचा वातावरण जब काले धब्बों में बदल गया तो जीवन की संभावनाओं के कोई भी लक्षण वहां शेष नहीं रहे, और जो कुछ शेष था वो भी वेभत्स रूप में था। स्वयं कमांडर टिबेटस ने बम गिराने के बाद कहा, मैं उस बैंगनी बादल के नजारे को कभी नहीं भूल सकता जो एक मरते हुए शहर से 10 मील ऊपर खोलता हुआ उठ रहा था। अचानक गहरा भद्दा काला धुआं इस पर छा गया, जिसे देखकर मुझे बर्तन में खुदबुदाते गर्म तारकोल की याद आई। यह तो हिरोशिमा का आकाश से दिखने वाला रूप था। हिरोशिमा की धरती पर जो भयानक दृश्य उपस्थित हुआ था उसे डॉक्टर हानाओका ने अपने एक ब्योरे में इस तरह लिखा है, मैंने 5 तालाब देखे जो मृतक देहों से पटे पड़े थे। एक तालाब में बुरी तरह जले हुए आदमी को मैंने देखा जो दूसरे मृत आदमी के पास दबा पड़ा था। वो रक्त से लाल हो चुके तालाब के पानी को पी रहा था। उसे रोका भी जाता तो उससे कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो चुका था। ये बातें किस्से कहानियों की नहीं हैं, बल्कि द्वितीय महायुद्ध की नंगी सच्चाइयां हैं। ये मानवता को क्रूरता की याद दिलाने वाली सच्चाइयां हैं। इन्हें जानकर दुनिया कुछ सबक ले और ऐसे क्रूर कृत्यों से दूर रहकर मानवता की रक्षा कर सके तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। विज्ञान मानव कल्याण का साधन है। जिस दिन ये समझने में हम पूरी तरह सफल होंगे वो दिन मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन होगा।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और प्रस्तुति थी गर्जन सिंह वरकड़े की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। गायिका हैं सविता देवी और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं। जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायिका थी सविता देवी और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: काश्तकार दादा दीदी मन बीहा काजे आए बल्ले लागे से हरदी, साग काजे आए बल्ले लागे से हरदी, और रोग राई घाव दाव के मरलातो काजे बल्ले लागे से हरदी। असन गुणकारी हरदी के घेनुन आन तो पलटा रूपुन रलो ने घरे बले काम दे दे और बिकुन भाती आमी नगद पैसा बले कमाओक सकुंदे। तो आजी जाना ये हरदी चो किसिम आरु रोप तो मंडा तो उट की। हरदी कमानी कर तो काजे माटी पलट तो नागर ने नंगत दुहार बेड़ा भूई मरान जे थाने तुम्हें हरदी मंडा तो उट करला सास हुनके जो तुम दे तो राय। इचे संगे संगे हमी जसन दिसी नागरा से हुन थाने घर एक अच्छा जोतुन भाती माटी के भुरभुरा बना दे तो राय। गोबर जो नंगत सरलू खत के माटी ने मिसाउन कियारी बना तो राय। हरदी मंडा तो काजे नंगत छुकछुका आरु ठोसर हरदी मन के बास तो राय। दादा दीदी मन हरदी गठने दुई ठान गाजा फुटलो असन आरु एचो वजन 25 ग्राम होतो रासे। हरदी बीचा मंडा तो पहिल कार्बेंडा जीम नहले ट्राइकोडर्मा नावचो ओखद ने उपचार करुन मंडा तो राय। हरदी कमातो काजे नंगत किसी मन ने कृष्णा सगुन सुदर्शन स्वर्णा आरु सुगंधा नंगत रहे से। हरदी मंडातो काजे बूटा ले बूटा चो दूरिया एक ले डेढ़ फीता संगातो राय। हामी हरदी के बेढ़ा मरान बनवाड़ी चो भूई ने अरु पारी मनने वाले मंडाउकलाय सकू। हरदी भूई ले नंगत बल बफू मन के झिकू आए। तो हुनी काजे गोबर खत नहले कंपोस्ट खत 300 किलो बुनतो मंडातो पहिल माटी ने नगद मिसाउन जोतुन देतो राय। असने 130 किलो यूरिया 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 180 किलो म्यूरेट आप पोटास देतो राय। हरदी कमानी ने बले लाटा बुटा झपके झपाई हुआ है। एके समया दखुन दखुन निजानी करते रतो राय। दादा दीदी मन जागलो बूटा मन ने माटी बले चेगाते जातो राय। हरदी खोड़तो काजे बले निको ख्याल करतो गोठा से। तो जसन हरदी के समया ले आगे नी खोड़तो राय। पाना सुखुन मरल्लो असन होले जानतो राय कि हरदी पाकुन तैयार होली। असन तो हरदी के पाकतो काजे 9-10 महीना चो समय लागे से। खोड़तो वेरा लेख कर तो राय कि कांदा के गेंजू नी हो। कांदा गेंजी होलो ने उनचो भाव बले अच्छा नी जाए और कांदा बले सड़े से। कास्तकार भाई बहिन मन बीचा चो भंडारण कर तो बुता बले मसागत चो बुता होए से। असने हरदी चो बीचा भंडारण काजे खनुन भारी हरदी के नगद छाय ने सुकाउन माटी आरु कांदा ले लटकलो कचरा के साफ सफाई कर तो राय। बीचा कांदा के 3 ग्राम बाविस्टिन नहले इमिडा क्लोप्रिड नाचो ओखत के घोल बनाउन उपचार करुन फिर छाए सुखाउन भाती संगातो राय। हरदी बीचा संगातो काजे भूए 3 हाथ ओसार 6 हाथ लम आरु 1.5-2 भीता घड़िया खोदरा खोड़तो राय। खोदरा ने खाले तल ने 4-5 इंच तक बारू डारून देतो राय आरु नगत ओछालो असन बनान देतो राय। हुंचो उपरे हरदी संगाउन भाती ऊपर ले फिर बारू के पाटून बले देतो राय। खोदरा भरलो ने माटी ले पाटून भाती ऊपर ले के गोबर ने सराउन बले देतो राय। असन करुन संगालो ने तुम्ही हरदी बिचा के नगत सगाउ सकासे। दादा दीदी मन असन उवाट ने हरदी कमानी करलो ने तुम्ही अधिक उपजन संगे संगे नगत लाभ बले धरुकला सकासे।
0: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 में हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राउत गिरली पाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राउत गिरली पाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आज सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर के आकर्षण होंगे। पत्रांकन का दूसरा भाग आज आप इसमें सुन सकते हैं। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की, संपादन होगा रूपाली पारई का। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं हल्बी समाचार बुलेटिन और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में विभिन्न बोलियों के लोकगीत सुने जा सकते हैं। सुबह 9:00 झुमझुमा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे निर्बती और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकते हैं दिल ही तो है फिल्म के गीतों का। सुबह 10:00 गुलशन में शीर्षक गीत सुनिएगा। आज का शीर्षक होगा मंदिर। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुखमती और साथियों के गाए भद्री लोकगीत सुने जा सकते हैं। सुबह 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार होंगे गीतकार हसरत जयपुरी। 11:30 पर सबरस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत सुने जा सकते हैं। दोपहर 12:00 कार्यक्रम होगा कला और कलाकार। 12:30 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार सुना जा सकता है। 1:05 पर बेड़ा खड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर आप आनंद ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का। आज शाम 5:00 हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं। शाम 5:10 पर होगा युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन सुना जा सकता है। शाम 7:00 कार्यक्रम होगा बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चुगांव। रात 8:00 कुड़ई फूल कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं रैबारी और साथियों की गाए हल्बी लोकगीत। रात 8:30 पर पीला मन का जे गोठ कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं गुरु गोविंद सिंह पर कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी शंभुनाथ नाग की। रात 9:15 पर कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। रात 9:30 पर उवाट कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं शासकीय योजनाओं की जानकारी के अंतर्गत किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और साकंभरी योजना, इस विषय पर जानकारी अजय मीरी से। इनसे बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10:00 परिचर्चा कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं परिचर्चा बस और नाता पंता का सामाजिक महत्व, इस विषय के प्रतिभागी होंगे मनबोध बघेल इस परिचर्चा में और बलदेव मौर्य, और इस परिचर्चा का संचालन करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में क्रमशः समाचार संस्कृत और हिंदी में हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधान

0: साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए हरी प्रिया का नमस्कार। आज हम नमस्कार जगदलपुर में आपके लिए लेकर आए हैं पत्रांकन कार्यक्रम का दूसरा भाग, हल्बी समाचार बुलेटिन और फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
6: श्रोताओं, आज है 10 जून और इस शुभ दिन में आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। आइए आज बातें करते हैं आंखों की। आंखों की क्या बातें कहूं, रंगी है ये दुनिया इन्हीं से, रोशन है ये दुनिया इन्हीं से। यूं तो रोशनी पूरी दुनिया में फैली होती है, यदि हमारी आंखें ना हों तो सारा जग अंधियारा ही लगता है। रोशनी जितनी ज़रूरी है आंखें भी उतनी ही ज़रूरी है, और आंखें जितनी ज़रूरी है रोशनी भी उतनी ही ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व नेत्रदान दिवस की। प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें अर्थात कार्निया दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जिससे कार्निया की कमी से होने वाले अंधेपन के प्रति समाज में व्यापक रूप से जागरूकता फैलाई जा सके, दृष्टिहीनता को दूर करना इस दिन का उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद कार्निया की बीमारी अंधेपन का प्रमुख कारण होती है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को कार्निया प्रत्यारोपित करने के माध्यम से दृष्टि प्रदान करना है। आज के दिन का उद्देश्य कुछ भ्रांतियों को मिटाना भी है। समाज में नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां या मिथक है, जैसे चश्मा लगाने वाले मधुमेह या ब्लड प्रेशर के मरीज नेत्रदान नहीं कर सकते। ये दिवस लोगों को शिक्षित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी उम्र का हो, मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी हो, वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। अल्प आपूर्ति के बीच संतुलन बिठाना है। दान किए गए कॉर्निया की भारी कमी है और उसकी आपूर्ति तथा मांग के बीच में काफी असंतुलन है। अधिक से अधिक लोगों को आई डोनेशन का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना भी आज के दिन को मनाने का उद्देश्य है। नेत्रदान से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं जो साधारणतः आम आदमी को यानी कि हमें मालूम नहीं होती। मृत्यु के बाद नेत्रदान किया जाता है, यानी कि नेत्रदान हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। पहले से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, लेकिन नेत्र मृत्यु के बाद ही निकाली जाती है और इसके निकालने की समय सीमा भी सीमित होती है। आंखें निकालने की प्रक्रिया मृत्यु के बाद 4-6 घंटे के भीतर ही पूरी होनी चाहिए। प्रक्रिया में समय लगता है। नेत्र बैंक की टीम मृत व्यक्ति के घर या अस्पताल ले जाकर 15-20 मिनट में यह सुरक्षित प्रक्रिया पूरी करती है। इससे चेहरे पर किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है। पूरी आंख नहीं, सिर्फ कार्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। कार्निया आंखों के सामने का एक पारदर्शी हिस्सा होता है। एक व्यक्ति की नेत्रदान की से दो दृष्टिहीन लोगों को कई रोशनी मिल सकती है। भारत में नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। आप अपने नजदीकी आई बैंक या अधिकृत पोर्टल से के माध्यम से नेत्रदान का संकल्प ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्वास्थ्य केंद्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं। उन्हें पूछकर आप उनसे अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आप भी नेत्रदान करना चाहते हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो उनकी मृत्यु से पहले ही उसका पंजीकरण करवाया जा सकता है और मृत्यु के बाद इसकी सूचना उन्हें दी जा सकती है, जिससे कि इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तो ये तो बातें थी विश्व नेत्रदान दिवस की। तो आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताइए, और आँखों की महत्ता हम क्या बताएं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आंखें बंद करके कुछ पल चल कर देखिए तो हमें एहसास होगा कि आँखों के बिना सारी दुनिया अंधेरी है। तो हम भी अपने जीवन में अपने नेत्रों को सुरक्षित रखें और नेत्रदान का संकल्प लेने की प्रेरणा दें और लें खुद भी।

0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आइए अब सुनते हैं पत्रांकन कार्यक्रम का दूसरा भाग। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की और इस कार्यक्रम की संपादक हैं रूपाली पाराई।

0: पत्रांकन सुन रहे आप सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार। आज पत्रांकन के इस अंक में मैं हूं आपके साथ रूपाली पारे
0: और मैं हूं चंद्र ऋषि ठाकुर
1: जी।
0: रूपाली जी,
1: हाँ जी,
0: कल बहुत सारे संदेश
1: जी बिल्कुल आए थे
0: और बहुत सारे संदेश छूट भी गए थे
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, जो पत्र छूट गए थे उसे आज हम पत्रांकन कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं पहला पत्र किन्होंने हमें लिख भेजा है।
0: जी बताएं, पहला संदेश किनका है?
1: आज पहला खत हमें लिखा है पत्रांकन कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर के लिए चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन ने। इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले समस्त आकाशवाणी जगदलपुर परिवार को हम सेन परिवार की ओर से सादर अभिवादन नमस्कार। आज पूरा देश आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के जश्न और उत्सव मना रहे हैं, उसमें हम शामिल हैं और इसी के उपलक्ष्य में अपनी एक छोटी सी पुरानी बात इस कार्यक्रम में साझा करना चाहेंगे कि वो दिन हमें आज भी याद है। वर्ष 1976 दिन मंगलवार, उस समय आकाशवाणी रायपुर से रात्रि 8 बजे आपके पत्र कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था, जिसमें आकाशवाणी रायपुर के पूर्व उद्घोषक मिर्जा मसूद जी और किशन गंगोले का आगमन हुआ करता था। और जब इस कार्यक्रम को हम सुनते थे, इतना आनंदमय कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाया करता था और ठीक इसी तरह से हमारे पुराने यादों को तरोताजा कर गया जब आकाशवाणी जगदलपुर से पत्रांकन कार्यक्रम में दो दिग्गज आकाशवाणी जगदलपुर के जाने माने मशहूर प्रसिद्ध उद्घोषक सरदारों के सरदार भाई मनिंदर सिंह देवगुण जी और भाई सुखेंदु मलिक सर जी 26 मई दिन मंगलवार को सुबह सुबह नमस्कार जगदलपुर के अंतर्गत जब पत्रांकन कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, वाकई काबिले तारीफ, क्या अंदाज, क्या आवाज। सभी श्रोताओं के पत्रों को हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में समावेश करना हमें भा गया। और एक खास बात कि इस कार्यक्रम भाई मनिंदर सिंह जी का छत्तीसगढ़ी शब्द में एक पत्र का जवाब देने का बेहतरीन अंदाज दिल को आनंदित कर गया और इस कार्यक्रम में ये दोनों उद्घोषक साथियों को जोड़ने का मुख्य श्रेय

0: अगर कोई है तो वो है कार्यक्रम प्रमुख बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी, जिससे हमने पूर्व में आग्रह किया था, जो कि हमारे निवेदन को स्वीकार किया। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी को। और इसी क्रम में हमने नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम, श्रोता सुमन कार्यक्रम और फोन इन चाहत कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया, जिसमें अपने सुमधुर आवाज का समा बांधने में कामयाब हासिल किया बहन आशा दुल्हानी जी, तृप्ति परिडा जी, बहन हरिप्रिया जी, प्रीति गुप्ता, जूही जोशी जी, भाई मनिंदर सिंह देवगुण जी, सुशील ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, मनमोहक सदाबहार समागम और शानदार जानदार, बेहतरीन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी जगदलपुर परिवार के तमाम उद्घोषक भाई एवं बहन को स्नेह भरा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ में आकाशवाणी जगदलपुर के मुखिया बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। स्वीकार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सेन परिवार को। और जब भी आप पत्र लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अपना, कोई बड़ा भाई
0: जी,
1: जो है वो पत्र लिख रहा है।
0: जी जी
1: उनकी भाषा, उन्होंने एक बार माफी भी मांगी थी अपने संदेश के माध्यम से कि मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है,
0: अच्छी
1: लेकिन
0: नहीं
1: मेरी
0: है,
1: भावनाओं को
0: समझिएगा।
1: तो आपकी भाषा भले ही थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन
0: लेकिन
1: हम आपकी
0: अच्छी
1: भावनाओं
0: को
1: को
0: समझ
1: समझ
0: रहे
1: रहे
0: हैं।
1: हैं।
0: ठीक,
1: और आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए और आपने जिन कार्यक्रमों की तारीफ यहाँ पे
0: तारीफ।
1: की
0: जी
1: है
0: जी
1: वो हम अपने उद्घोषकों तक पहुंचा देंगे।
0: जी
1: और हम कोशिश भी करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं
0: जी
1: वो जो भी फरमाइश भेज रहे हैं या
0: जी
1: फिर जो हम पूरा कर सकते हैं उन्हें हम पूरा करने की कोशिश
0: कोशिश
1: करें।
0: कर
1: कहीं
0: रहे हैं।
1: उन्होंने भी
0: जी
1: एक फरमाइश की थी,
0: जी
1: हमारे दो उद्घोषकों को एक कार्यक्रम में शामिल करने की फरमाइश की थी, तो उसे
0: जी
1: हमने इस बार पूरा किया, तो
0: जी
1: शायद वो ज्यादा खुश हैं। तो आप
0: जी
1: खुश रहें और हमारे कार्यक्रमों को इसी प्रकार सुनते रहें और इसी तरह से अपना प्यार संदेशों के माध्यम से हमें भेजते रहें।
0: अगला खत है मेघापारा चिल्फी से मनोज कुमार, कृष्ण कुमार, धनंजय और गायत्री साहू जी का। इन्होंने लिखा है, छींक एक अनैच्छिक क्रिया है, इसे अशुभ सूचक का संकेत मानकर रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, ये अंधविश्वास ही है। पहली छींक को अशुभ मानते हैं और यही छींक लगातार दूसरी या तीसरी बार आती है तो उसे शुभ संकेत भी मानते हैं, ये सब भ्रांति ही है। मनिंदर जी ने जो ब्रह्म एलर्जी, धूल धुआं जैसे वैज्ञानिक कारण बताया, अच्छा जचा। अंगना के मनुगा ले, कौआ के कांवले, पहुना आवत हो ही कोनो गांवले, हाथ की हथेलियों में खुजली होती है तो कहते हैं पैसे मिलने वाले हैं, और यही खुजली पैर के तलवे में होती है तो कहा जाता है कि याद कर रहा है। बेमौसम वर्षा में अगर पूरा शरीर भीग जाता है, फिर 160 किलोमीटर की गति में जो आती है वो भी कभी कभी आ आ अच्छी लगती है। अच्छी चर्चा हेतु बधाई। आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है। पूरा एक पखवाड़े के कार्यक्रमों को एक पत्र में समाहित करना, सागर को चुल्लू में भरना है जो हमसे संभव नहीं। सबकी प्रस्तुतियां अच्छी होती है, सबको हमारी ओर से बधाई। सारगर्भित चर्चा की थी, उसके उद्देश्य जागरूकता, महत्व, संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, भीषण गर्मी, वृक्षारोपण, कपड़े के थैले का प्रयोग जैसी बिंदुओं पर बड़ी अच्छी बातें की। पर्यावरण बीमार होता जा रहा है, जितनी इसकी तबीयत बिगड़ेगी हर जीव जंतु पर इसका असर पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की सोच वैज्ञानिक थी, वे वृक्षों की पूजा करते थे, जिसे अंधविश्वास और रूढ़िवादी की चादर ओढ़ना गलत है। विज्ञान भी बिना पेड़ पौधे के पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकता। पर्यावरण सबको समान मानता है। हम मानुष लोग मानव से दानव बन रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए जहर घोल रहे हैं। पेड़ लगाकर डीपी की सुंदरता नहीं बढ़ानी चाहिए, बच्चों की तरह सेवा करनी पड़ती है तब जाकर फलता फूलता है। पेड़ लगाओ में पेड़ बचाओ भी जोड़ना चाहिए। अच्छी चर्चा हेतु बधाई। नमस्कार जगदलपुर। सुनार घर का वो कचड़ा है जो बनिया के घर का बादाम से महंगा होता है। समस्त सम्मानीय पदाधिकारी गण को साधुवाद।
1: तो सबसे पहले पूरे साहू परिवार को धन्यवाद
0: जी
1: हमें संदेश भेजने के लिए। और इनका संदेश पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल।
1: बीच बीच में ये छत्तीसगढ़ी के भी कुछ मुहावरे यहाँ
0: जी जी
1: पे
0: जी
1: लिखा है इन्होंने, और बहुत सारे इधर उधर के चीजें जैसे जल संरक्षण या फिर ग्लोबल वार्मिंग,
0: जी
1: वृक्षारोपण, कपड़े के थैले जैसे बहुत सारे इन्होंने उपयोगी चीजों का जिक्र यहाँ पे किया है। और इनके पत्र को ही पढ़ के लगता है कि
0: जी
1: ये बहुत सारी चीजों को पढ़ते होंगे,
0: पढ़ते होंगे,
1: सुनते
0: सुनते
1: होंगे
0: होंगे। जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: उसको ध्यान
0: ध्यान से।
1: से आत्मसात भी करते हैं उन चीजों को, और इनके संदेश के माध्यम से पता चल रहा है कि ये कितने जानकार व्यक्ति हैं
0: जी।
1: और आपने इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इनमें से जो मुझे आकर्षित किया
0: जी
1: वो है छत्तीसगढ़ी का
0: जी।
1: अंगना के मुनगा ले, कावा के काव ले, पहुना आवत होही कोनो गांव ले। जैसे हम लोग बोलते हैं जब हमारे छत पर या फिर पेड़ पर मुंडेर पे कौवा जब काक करता है तो हम उसको मान लेते हैं कि आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे आसपास है। जैसे अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो हम
0: रास्ता क्रॉस नहीं करते, अपशकुन मानते हैं क्रॉस नहीं करना
1: है। तो हम ये भी तो सोच सकते हैं हमने भी तो कभी उसका रास्ता काटा है, क्या उसके लिए भी अपशकुन होगा।
0: जी जी जी,
1: बहुत सारी मान्यताएं जो है रूढ़ी मान्यताएं, जो पुरानी मान्यताएं हैं जिनका अभी वर्तमान में कोई औचित्य नहीं बचता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अनपढ़ लोग हैं या फिर जिन्हें कम ज्ञान है वो ही इन सारी चीजों को मानते हैं। आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे हैं
0: वो भी मानते हैं,
1: वो भी इन सारी चीजों को, इन सारे टोटकों को मानते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ढोंगी बाबा जिन्हें कहते हैं उनके शिकार भी हो जाते
0: हैं। बिल्कुल सही है।
1: भी है जिसमें एक महिला थी जिसे एक ढोंगी बाबा ने लाखों का चूनो लगा दिया था। मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी और वो जो काम करवा रही थी वो भी नहीं हुआ। तो आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान रहें और कभी भी ऐसी मान्यताओं को आंख मूंद कर आप विश्वास ना करें। पहले उसको जांचे परखें कि उसमें कितनी सत्यता है। अगर आप मान भी रहे कि चलो ठीक है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो पहले ये तो जाने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों अपशगुन है
0: जी,
1: क्यों अपशगुन है, क्या होगा, या फिर बस ऐसी किसी ने कह दिया तो आप मान ले, किसी एक व्यक्ति के साथ शायद संयोगवश कुछ बुरा हो गया होगा, फिर वो कहानी चलती
0: है
1: तो फिर उसके बाद लोग उसी चीज को मानना शुरू कर दिए। तो कभी भी आप अगर ऐसी कोई चीजों को मानते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, जांचे परखें कि वो उसमें सत्यता कितनी है। तो आपने इन सारी बिंदुओं को यहाँ पे उठाया है और अपने संदेश के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक प्रेषित किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये आखिरी संदेश था रूपाली जी।
0: हाँ जी,
1: अब समय आ गया है कि हम अपने श्रोताओं से अलविदा लें। लेकिन जाने से पहले हम उन्हें पत्रांकन कार्यक्रम में संदेश भेजने हेतु अपना नंबर जरूर बताना चाहेंगे
0: जी।
1: आप पेन पेपर निकाल लीजिए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9425590590।
0: हमारे केंद्र में पत्र लिखने के लिए या मैसेज करने के लिए आप हमें SMS कर सकते हैं इस नंबर पर 9425590590। एक बार फिर सुन लीजिए 9425590590।
1: तो अब पत्रांकन की इस कड़ी से दीजिए हमें अनुमति।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे पत्रांकन कार्यक्रम का दूसरा भाग। प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की और इसका संपादन कर रही थी रूपाली पारई। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हलबी समाचार बुलेटिन।

जोहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं महेंद्र सिंह ठाकुर। पहल सुना आज जो मूर्ख खबर मन के राज्य चो सात ढन जिला मन ने गाँव कारी कुटुम्ब परिवार चो लोग मन चो कुमानी ने बाढ़ती कर तो काजे आजीविका कार्यक्रम मूर्ख बई दे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर नीलोबेरा सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और कोंडा गाँव जिला चो कई बाढ़ती चो काम बूता के जाँच परखा कर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना हिसाब ने भर्ती चुकाम मुरहोली पड़त पिलामन 15 जून तक ले आवेदन करुक सकोत। और सुकमा जिला चो बार से रोशन जेईई एडवांस ने 634 पावला। एना खबर सरसरा ले राज्य सात ठन जिला मन ने गांवकारी कुटुंब परिवार चो कमानी ने बाढ़ती करतो काजे एकीकृत आजीविका कार्यक्रम मूर करतो रहे दे। मुख्य सचिव विकास सिल ए चो काजे अधिकारी मन के नंगत काम बुता चो तैयारी करुक लाय बल्ला से। ए कार्यक्रम बस्तर कांकेर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला मन ने मूर करतो रहे दे। मुख्य सचिव बाटले कार्यक्रम ने मूर हिसाब ले लक्ष्य धरलो कुटुंब परिवार मन के आजीविका कार्यक्रम ने मिसातो काजे बल्ला से। बसका ने अधिकारी मन सांगला की एकीकृत आजीविका कार्यक्रम हिसाब ने जिला मंचो सफाए चिनलो कुटुंब परिवार मन के कृषि वन पशुपालन मछली पालन और गैर कृषि ठान मन ने नुआ नुआचारी वाट मन ले कमानी ने बाढ़ती करतो काजे शिक्षा देतोर होई दे। छत्तीसगढ़ चो जल प्रबंधन वाट के राष्ट्रीय हिसाब ने खूबे सहरानी मिरली से। भारत सरकार चो जल शक्ति मंत्रालय बाटले सिंचाई चो साधन के बढ़ातोर और जल संसाधन मंचो नंगत काम ने आंतो काजे राज्य ने लागू होलो कमान क्षेत्र विकास और नुआ समय हिसाब ले पानी कांजी चो बरसक वार्ड बलों ने MCAD मॉडल के खूबे सहराला। मंत्रालय बाटले दूसर राज्य मन और केंद्र शासित प्रदेश मन के बले छत्तीसगढ़ चो असन ये मॉडल के काम ने आंतो काजे सलाह दिला से। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय एक एक किसान मन जल संसाधन विभाग और सुशासन काजे राज्य संकल्प चो मानाए बल्ला। उप मुख्यमंत्री आपलो चार दिन काजे बस्तर इलोबेरा सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और कोंडा गांव जिला चो दौरा करला। आपलो इलोबेरा चो सरासरी दिने बलो ने 8 जून के श्री साव सुकमा ने मिशन अमृत 2.0 हिसाब ने पानी चो जांच और उपचार प्लांट ने होतो काम चो जांच परखा करला। हुन योजना हिसाब ने शबरी नदी ने बनतो बीती इनटेक वेल चो काम बुता के बले दखला। ए मौका ने श्री साव पानी टंकी और पाइपलाइन ओछा तो काम के झपके झपके कर तो काजी बल्ला। मिशन अमृत योजना हिसाब ने 86 करोड़ रुपया चो खर्चा ले सुकमा ने पीउ तो पानी चो बरसक वाट करतो रहे से जे चो 54% काम करलो रासे। हुताय श्री साव कुमार रास ने 11,62,00,000 रुपया चो खर्चा ले बना लो बीती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चो काम बुता के बले दखला। 10 एकड़ महाभूमि ने बना तो बीती ये कॉम्प्लेक्स ने फुटबॉल खेल तो भाटा परा तो बीती एथलेटिक्स ट्रैक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट प्रशासनिक भवन बॉक्स क्रिकेट पोहरुक सिख तो बीती स्विमिंग पूल जसन सहायता मन के बनातर हो। उप मुख्यमंत्री अरुण साव गेलो 7 जून के जगदलपुर ने लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन चो अधिकारी मंचो बस का धरुण भाती कई काम बुता मंचो गोठियाउन पूछा परछा करला। हुन सफाए बाढ़ती चो काम बुता मन के और योजना मंचो काम बुता के झपके करुक लाए बल्ला सोत और समय ने सार तो काजे बल्ला। श्री साय स्वच्छता दीदी मन संगे बले गोठियाते समय समय ने हुन मन के देह चो जांच कराउन भाती सुरक्षा किट देउक लाय बल्ला। श्री साय शहर चो नाली मन के नंगत साफ सफाई काजे खास ध्यान देउक लाय बल्ला और बरसा चो पहिल सफाई तैयारी पक्की करुक लाय बल्ला। हुन नगरी निकाय ठान मन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के खास हिसाब ले ध्यान देउन भाती जल संसाधन बरसा चो पानी के जुहा तो काजे मुंडा तरई मंचो साफ सफाई चो काम ने नुआ चारी उवाट धर तो काजे बल्ला। यही दिने श्री साव दंतेवाड़ा जिला चो किरंदुल ठान ने 7,19,00,000 रुपया चो खर्चा बीती कैक बाढ़ती चो काम मन के मूर कर तो काजे भूई पूजा करला। श्री साव आक्सी जोन ने बस्तर चो टाइगर बॉय चेंद्रू चो पुत्रा के सफाई चो पूरे आनला। कार्यक्रम ने उप मुख्यमंत्री बाटले बस पार्किंग और स्टेज स्टैंड लगे सीसी सड़क और बिजली लगा तो काम काजे 1,58,00,000 रुपया स्वीकृत कर तो काजे बले घोषणा करला। दंतेवाड़ा ने ची श्री साव गीदम ले बांगाबाड़ी लगे ले 10 किलोमीटर दूरिया चो दंतेवाड़ा बाईपास सड़क और एई बाट ने डंकिनी नदी उपरे चो बनतो बीती बड़े पुलिया के बले जाऊन दखला। हुन ए बाईपास सड़क उपरे चो ए तो जातो काम के झपके मूर करतो काजे पुलिया के बना तो काम के दिसंबर महीना ने बनाउन सार तो काजे बल्ला। आप लो बस्तर इलोबेरा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव रायपुर जगदलपुर चो बाट ने केशकाल घाट ने फेर 4-लेन बाईपास काजे चिनलो बाट के दखला। हुन बना तो एजेंसी बितामन के नंगत पक्की समय ने बरसक हिसाब ले नंगत काम दखाउन काम के झपके सारुक लाए बल्ला। 11 किलोमीटर ले आगर लाम ए सड़क के 308 करोड़ रुपया चो खर्चा ले बनातर होए से ए बाईपास ने 2 ठन नानी और 2 ठन मंजनिया बीती पुलिया मन बले बनातर होए दे।
श्री साव जगदलपुरी लोबेरा कैक बाढ़ती चो काम बुता मंचो जांचा परखा करला हुन सफाई अधिकारी मन के सफाई काम बुता के नंगत पकी समयाने सार्थो काजे बल्ला हुन बनतो बीती नालंदा परिसर के बले दखून जाऊन रला हुताए श्री साव कोंडागांव जिला ने लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नगरी प्रशासन और युवा कल्याण विभाग चो काम बुता मंच बले पूछा परछा करला हुन जिला चो तीनों नगरी निकाय मन कोंडागांव केशकाल और फरस गांव मन ने बरसा चो पहल सफाई काम पड़तो तैयारी मन के समयाले पूरा करुण भाती पीऊतो पानी सफाई लगे अमरातोर और साफ सफाई संगातो काजे बोले बल्ला संगे ची सड़क और पुलिया मन के बनातो काम बुता के नंगत बरसक हिसाब ले बनाउन भाती नंगत समयाने सारतो काजे बोले बल्ला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए बाटले होलोबिती 21 जून चो नीट यूजी पुनर्परीक्षा काजे परीक्षा शहर मंच सूची के जारी करून दिला से पंजीकृत होलो उम्मीदवार मन अधिकारिक वेबसाइट ने लॉगिन करून भाती आप लो परीक्षा शहर चो जानकारी पाउक सकोत। छत्तीसगढ़ सरकार बाटले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग चो गांवकारी नंगत होशियार पीला मन काजे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना हिसाब ने भर्ती चो काम के मूर करूं दिली से योजना ले चयन होलो पड़तो पीला मन के नंगत जाना चीना बीती बड़े स्कूल आश्रम मन ने कक्षा छठवी ले बारहवीं तक चो फुकाने पढ़ातो लेकातर हो दे आवेदन के जमा करतो काजे आखिरी तारीख 15 जून संगालो रासे चयन परीक्षा 5 जुलाई के हो दे एसु बरक विशेष पिछड़ी जनजाति मन काजे पहल हार 2% चो आरक्षण चो प्रावधान भले करलो रासे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय गेलो 5 जून के रायपुर ने होलो बीती मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना हिसाब ने 10वीं और 12वीं चो परीक्षा मन ने मूर 10 झंचो ठान पावलो पंजीकृत निर्माण श्रमिक मंचो पीला मन के मान करला ए मन ने कांकेर जिला चो पड़तो नोनी महेश्वरी कोराम बले आसे चारामा विकास खंड चो कानापोड़ गांव चो महेश्वरी 12वीं चो बोर्ड परीक्षा ने 46.40% अंक पावली से कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री बाटले महेश्वरी को राम के 2 लाख रुपया चो चेक देतो रोली जेथा 2 चक्का बीती गाड़ी काजे 1 लाख रुपया बले दिलो रासे। सुकमा जिला चो ग्राम झापरा ने रतोबिता बार से रोशन देश चो सबले जाना चीना इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस ने 634वां रैंक पावला से एबे गेलो दिने तुंगल डेम ने होलो बीती गोटो कार्यक्रम ने कलेक्टर अमित कुमार बार से रोशन के मान करला ए मौका ने कलेक्टर बल्ला कि जिला प्रशासन बाटले रोशन चो सफाई पढ़े लिखे चो खर्चा उठातोर हो दे जानु कहो कि सुकमा जिला प्रशासन बाटले पड़तो पीला मन के प्रतियोगी परीक्षा मंचो तैयारी करातो काजे क्षितिज कोचिंग इंस्टीट्यूट मूर करलो रासे। देश चो सफाई काजे विश्वास धरतो बीती लोक प्रसारक आकाशवाणी 8 जून के आपलो 90 बरख चो पूर्तो काजे उदिम मनाली बरख 1936 के 8 जून के इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस चुनाव के बदलून भाती ऑल इंडिया रेडियो संगालो रली बरख 1956 ने ऑल इंडिया रेडियो चुनाव के बदलून भाती आकाशवाणी संगातोर होली आकाशवाणी आजी 591 रेडियो स्टेशन मंचो संचालन करुआ है आकाशवाणी चो प्रसारण 23 भाषा मन और 146 बोली मन ने करतोर होई से आकाशवाणी चो ध्येय वाक्याय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। विश्व साइकिल दिवस के मौका ने गेलो 7 जून के राज्य कैक जिला मन ने फिट इंडिया मूवमेंट हिसाब ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम होली उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर ने होलो कार्यक्रम ने मिसला और ए मौका ने श्री साव आपने साइकिल चलाउन भाती लेहरा पानी चो राखा जतन और फिट रतो काजे बोले सफाई के चेताला कार्यक्रम ने सांसद महेश कश्यप महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश चिकारा बोले शामिल होन रला हुताए कोंडागांव ने बले संडे ऑन साइकिल हिसाब ने साइकिल रैली निकराला ए रैली विकास नगर चो खेल भाटा ले मुरहुन भाती कैक बाटले बुलते फेर फिरुन स्टेडियम खेल भाटा मरली कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल संगे कैक विभाग मंचो अधिकारी कर्मचारी पड़तो पीला मन खेल तो खिलाड़ी मन और रैया चो लोगमन बले हुता मिसला रैली चो पहल भाग धरलो लोगमन योग और जुम्बा ने बले भाग धरला। भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश इकाई बाटले बस्तर ठान ने 3 विधानसभा प्रभारी मंचो नियुक्ति करला से हुताए प्रदेश कार्यकारी समिति ने बले गोटोक नुआ सदस्य के शामिल करला पार्टी बाटले दिनेश कश्यप के बीजापुर और रूप सिंह मंडावी के कोंटा विधानसभा ठांचो प्रभारी बनाला से हुताए श्रीनिवास राव मद्दी के बस्तर विधानसभा ठांचो प्रभारी और श्रीनिवास मिश्रा के सह प्रभारी बनाला से इसी संगे माया झाड़ी के भाजपा चो प्रदेश कार्य समिति ने शामिल करला से हुताए पार्टी बाटले उर्मिला तोकल के बीजापुर जिला भाजपा अध्यक्ष चोजीमा दिलासे
प्राकृतिक खेतीबाड़ी ने अगर ध्यान देते हिसाब ने और रासायनिक खत भात मन के परक पचा बार तो उवाट के कम करते हिसाब ने छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने एक जून ले खेत बचाओ अभियान चलाते रहे से। दंतेवाड़ा ने ये अभियान 5 चरण हिसाब ने चले दे। पहल चरण ने माटी चो स्वास्थ्य मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते रहे दे हुताए। दूसर चरण ने रागी कोदो कुटकी जसन बल बपू बीती मोटा अरन और देहाती चो फसल मन के पहल पूरे आंतो काम हो दे। तीसर चरण ने किसान मन के जैविक खत ब्लू ग्रीन एलगी और वर्मी बल्लो ने केचुआ खत बनातो काजे प्रशिक्षण देतो रहे दे। चौथा चरण ने जूना रुसुमचो बीज मंडी मन और सामुदायिक बीज बैंक मन बनाउन भाती देहाती बीज मंचो राखा जतन जुहातो काम मन होय दे। हुताए पांचवा और आखिरी चरण ने बेड़ाचो हिरी मन ने ग्लीरी सीडिया जसन हरित खत देतो बीती बूटा मन के रोपतो काम होय दे। ए अभियान हिसाब ने जिला ने 1,00,000 टन बूटा मन के रोपतो मंडातो लक्ष्य संगालो रासे। जिला चो 135 टन ग्राम पंचायत मन ने ए अभियान के लागून बलो ने सपाय बाटे लागू करतो होय दे। एचो हिसाब ने 4,600 हेक्टेयर ने प्राकृतिक खेती बाड़ी 4,300 हेक्टेयर ने मोटा अरन उपजातोर और 40 टन सामुदायिक बीज बैंक मन बनातोर लक्ष्य संगालो रासे। वन मंत्री केदार कश्यप गेलो 8 जून के नारायणपुर ने पद्मश्री वैद्यराज श्री हेमचंद मांझी और बड़े साहित्यकार शिव कुमार पांडे संगे भेंट करला। ए मौका ने श्री कश्यप हुनमन के साल और नढ़ेर देउन भाती मान करला। वन मंत्री बाटले समाज संस्कृति साहित्य और रुसुम रीति चो ज्ञान के राखा जतन करतोर और गुलाय अमरातो काजे हुनमनचो असन काम काजे खूबे सहरानी करला और बल्ला की हुनमनचो असन काम नुआ पीढ़ी के खूबे शिक्षा देवाए। दिव्यांग पीला मन के शिक्षा स्वास्थ्य पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा योजना चो लाभ देतो काजे दंतेवाड़ा जिला ने 8 जून ले विशेष सर्वेक्षण अभियान मुरहोली से 15 जून तक ले चलतो बीती। ये अभियान हिसाब ने जिला चो सपाय स्कूल मन ले गोटो गोटो गुरुजी मन के इंक्लूसिव एजुकेशन एम्बेसडर बनाउन भाती चयन करतोर होय दे। ए गुरुजी मन के दिव्यांग लोग मन के चिंतोर डेटा जानकारी जुहातोर और समाज सेवा शिक्षा मन संघ चो विशेष प्रशिक्षण देतोर होय दे। प्रशिक्षण चो पाछे 16 जून ले धरून भाती 7 जुलाई तक ले सपाय गांव मन और वार्ड मन ने घरे घरे जाऊन भाती दिव्यांग पीला मन चो सर्वे करतो काम होय दे। ए चुकाजे गुरुजी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानीन और स्वास्थ्य कर्मी मंचो दल बनातोर होय दे। जिला प्रशासन बाटले जनप्रतिनिधि मन पालक पसिया मन गुरुजी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानीन समाज संगठन चो लोग मन और रैयत चो लोग मन के ए अभियान ने मिस्तो काजे बल्ला से। विश्व पर्यावरण दिवस चो मौका ने गेलो 5 जून के कोंडागांव जिला चो केशकाल जनपद बाटले एक पेड़ माँ के नाम हिसाब ने बूटा रोपतो कार्यक्रम होली। ए कार्यक्रम हिसाब ने केशकाल जनपद पंचायत चो सपाय 69 ठन ग्राम पंचायत मन ने प्रधानमंत्री आवास योजना चो 350 जन महा हितग्राही मंचो बाड़ी ने बूटा रोपतो काम होली। सरासरी मूर खबर मन के फेर सुनाता। राज्य 7 ठन जिला मन ने गांवकारी कुटुंब परिवार चो लोग मंचो कमानी ने बाढ़ती करतो काजे आजीविका कार्यक्रम मूर हो दे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर ने इलोबेरा सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिला चो कैक बाढ़ती चो काम बुता के जांचा परखा करला। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना हिसाब ने भर्ती चो काम मूर होली पड़तो पिलामन 15 जून तक ले आवेदन कर सको। और सुकमा जिला चो बार से रोशन जेईई एडवांस ने 634 ठान पावला। इसी संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंकित है सरे से जुहार।

0: आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। नमस्कार जगदलपुर में अब वक्त है मधुरिमा का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: पेश है मधुरिमा। तुम्हारी चाहत में इस कदर खो गए हैं हम, तुम्हारी चाहत में इस कदर खो गए हैं हम कि जमाने के सारे गम भूल गए हैं। अब कोई आरजू न रही बाकी दिल में, अब कोई आरजू न रही बाकी दिल में, हम तुम्हारी बाहों में आकर बाकी सब कुछ भूल गए हैं। अब तुमसे जुदा ना हो पाएंगे, गर जुदा हुए तो मर ही जाएंगे।

जीवन की इस राह में कितने ही तूफान आए, जीवन की इस राह में कितने ही तूफान आए, हम तो प्यार का दामन कभी न छोड़ेंगे। चाहे ये सारी दुनिया हमसे रूठ जाए, हम अपना ये रिश्ता कभी न तोड़ेंगे।

आपकी एक झलक ने कमाल कर दिया, आपकी एक झलक ने कमाल कर दिया, इस हसीन मुलाकात ने जिंदगी को खुशहाल कर दिया। मोहब्बत में मुलाकातें कहाँ मुकम्मल होती है, अगली मुलाकात का वादा ही एक खूबसूरत सदा देती है।

मधुरिमा के इन मधुर गीतों के साथ ही आपके शुभ दिन की कामना करते हुए हरिप्रिया चाहती है नमस्कार जगदलपुर से इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के

0: महाराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारती ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे

0: ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi becomes longest serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,398 days.

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में विभिन्न बोलियों के लोकगीत। लीजिए अब सुनिए बंसिंह कश्यप और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत।

0: राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक मंजरी कार्यक्रम में विभिन्न बोलियों के लोकगीत। लीजिए अब सुनिए जलधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों के लोकगीत आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। लीजिए लोक मंजरी कार्यक्रम के अंत में सुनिए बलदेव और साथियों के गाए लोकगीत।

लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों के लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। झुमझुमा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नीरबती और साथियों के गाए हलवी लोकगीत।

0: जीवना सर गिरो ढे गिरो जीवोड़ा कुटे नोनी रोय
1: बेड़ा के फोबिला लोच मीरानी नदी के फोबिला पानी रे नानी वर्चो सीवना सर गिरो नदी के फोबिला।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं झुमझुमा कार्यक्रम में निर्बती और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

খাউন হায়া মা বালিন যা চুন পনা গো লে যা রে হো পাপা যা চুন পনা।

0: కనీకో నీకో
1: బుటాలోటక

लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में आप सुन रहे थे निर्बति और साथियों के गाए हलवी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1963 में बनी फिल्म दिल ही तो है के गाने। इस फिल्म का निर्देशन किया था CL रावल और PL संतोषी ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं राज कपूर और नूतन ने। फिल्म के निर्माता हैं BL रावल, मुख्य कलाकार राज कपूर और नूतन। इस फिल्म का संगीत दिया है रोशन ने और गीतों की रचना की है साहिर लुधियानवी ने। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस फिल्म का संगीत बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। रोशन द्वारा रचित और साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए इसके गाने आज भी श्रोताओं के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जिसमें मशहूर गाना था लागा चुनरी में दाग। वैसे तो फिल्म के सारे गाने बहुत ही सुरीले हैं, आप सुनेंगे तो आप भी मान ही जाएंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ही तो है फिल्म के गाने। फिल्म में गीतों को अपनी आवाजें दी हैं आशा भोसले, मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म के सभी गाने बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही सुरीले हैं, शब्दों की रचना भी बहुत खूबसूरत है। आइए सुनते हैं अगला गाना आशा भोसले की आवाज में। साहिर लुधियानवी के लिखे गीतों को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये कव्वाली थी आशा भोसले और साथियों की आवाज में। ये राग यमन कल्याण पर आधारित कव्वाली थी। दिल ही तो है फिल्म के सभी गाने बहुत ही लाजवाब हैं, सुरीले हैं। शब्दों की रचना बहुत खूबसूरत है और उसे रोशन ने बहुत ही सुरीले अंदाज में संगीतबद्ध किया है। और गायकों का हम क्या कहें, वे तो कमाल हैं ही। आइए अब मुकेश की आवाज में सुनते हैं अगला गाना।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं दिल ही तो है फिल्म के गाने। जी हां श्रोताओं, आज है 10 जून और आज हम मना रहे हैं विश्व नेत्रदान दिवस और इस फिल्म में भी एक बहुत ही सुरीला गाना है, आइए सुनते हैं।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म के गाने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, ईकेवाईसी और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भर कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से मेघ गर्जन की गतिविधि बढ़ने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खुर्सीडीह बोरई मार्ग पर एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में महिला आरक्षक हेमलता ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। गुलशन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीर्षक गीत और आज का शीर्षक है मंदिर। साधारण रूप से देखा जाए तो मंदिर शब्द का पूजा प्रयोग पूजा स्थल या देवालय के लिए किया जाता है, लेकिन इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ बहुत व्यापक हैं। शाब्दिक अर्थ में निवास स्थान और मन की स्थिरता को, और संस्कृत में मंदिर मूल रूप से मंद धातु से बना है जिसका अर्थ है विश्राम या निवास। अतः यह केवल ईश्वर का घर नहीं बल्कि वह स्थान है जहां जाकर जीव का मन शांत और स्थिर हो सके, ऐसे स्थान को मंदिर कहा जाता है। मन का द्वार। मंदिर वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने मन के सारे द्वार खोलकर ईश्वर से जुड़ता है। इसका ये अर्थ भी लगाया जा सकता है जहां अहंकार का नाश हो, म अर्थात ममत्व या मैं अहंकार और नन न अर्थात नहीं से भी जोड़ा जा सकता है, यानी जहां इंसान का अहंकार समाप्त हो जाए वही स्थान मंदिर कहलाता है। इस तरह मंदिर के कई अर्थ समझे जा सकते हैं। व्यापक दृष्टि से और सांस्कृतिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी कई बातें कही जाती है। शरीर ही मंदिर है। भारतीय दर्शन के अनुसार विशेषकर आध्यात्म को जोड़ते हुए ये माना जाता है कि सर्वोच्च शक्ति हमारे स्वयं के भीतर निवास करती है, इसलिए अच्छे कर्मों और पवित्र विचारों से युक्त मानव शरीर को भी सबसे बड़ा मंदिर माना गया है। तो आज का गुलशन कार्यक्रम में शीर्षक गीत है और आज का शीर्षक है मंदिर। इस तरह हम मंदिर को समझते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना अमर फिल्म से।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गुलशन कार्यक्रम में शीर्षक गीत और आज का शीर्षक है मंदिर। श्रोताओं, प्राचीन काल में घर द्वार और प्राचीन काल में साहित्य की दृष्टि से मंदिर शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में भवन, मकान या महल के लिए भी होता था। इसके अलावा सिख धर्म और सूफी परंपराओं में इसे गुरुद्वारा अर्थात गुरु का द्वार या राम द्वारा के रूप में भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था। इस तरह जहां ईश्वर की पूजा की जाती है, जहां हमारे आराध्य होते हैं, वो मंदिर कहलाया, और जहां हम लोग निवास करते हैं वो भी मंदिर है, यानी कि मकान या महल भी मंदिर है, और मानव का शरीर भी एक प्रकार का मंदिर है, और जिसमें वो आत्मा रहती है, ईश्वर का अंश रहता है। इस तरह मंदिर का बहुत ही मंदिर शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। क्या आप मंदिर से जुड़े किसी विशेष बात को जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो हमारे साथ जरूर बांटिएगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गुलशन कार्यक्रम में शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है मंदिर। श्रोताओं, भारतीय दर्शन में विशेष रूप से उपनिषदों में मानव शरीर को ही देवालय माना गया है। आत्मा ईश्वर का रूप है, इसलिए यह शरीर ही सबसे बड़ा जीवंत मंदिर है।

साथियों, जब प्रेम, ज्ञान और समर्पण व्यक्ति के अहंकार को समाप्त कर देता है, तब वही रिश्ता, स्थान और व्यक्ति साक्षात ईश्वर का रूप ले लेता है और मंदिर की तरह पावन, पवित्र और निर्मल हो जाता है और इस तरह पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा नजर आती है जो इस गीत में नजर आ रही है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, ये था आज का गुलशन कार्यक्रम। गुलशन में आप सुन रहे थे शीर्षक गीत और आज का शीर्षक था मंदिर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में लीजिए अब सुनिए सुखमती और साथियों के गाये भद्री लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुखमती और साथियों के गाए भद्री लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक गीतों के कार्यक्रम गुर्दुम में सुखमती और साथियों के गाए भद्री लोकगीत।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में अभी आप सुन रहे थे भत्री लोकगीत। कलाकार थे सुखमती और साथी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी कि 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, एक महान गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह भावनाओं को आवाज देता है। उनकी कलम से निकले गीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहते हैं। उनके यानी कि एक गीतकार लेखक के शब्द कभी मुस्कान बनकर आते हैं, कभी हौसला बनकर, तो कभी जीवन का संदेश देकर राह दिखाते हैं। ऐसे ही शब्दों को सुरों का परिधान पहनाने वाले एक महान गीतकार के जीवन के पहलुओं से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने अपने गीतों से अनगिनत दिलों को छुआ है। इनकी लेखनी ने प्रेम, उम्मीद, खुशी और जीवन के हर रंग को खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं उस महान गीतकार को, जिनके शब्द आज भी समय की सीमाओं को पार कर हमारे दिलों में गूंजते हैं। आप हैं संगीत जगत को अनमोल रचनाएं देने वाले कलम के जादूगर हसरत जयपुरी साहब। आइए आपको सुनवाते हैं हसरत साहब के लिखे हुए एक खूबसूरत नगमे को।

पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे जरा आ लहर की आ जरा आंखों से दिल

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ।
1: 15 अप्रैल वर्ष 1922 में राजस्थान के जयपुर में जन्मे इकबाल हुसैन एक कवि के रूप में हसरत जयपुरी अपना उपनाम रखते थे। युवा इकबाल ने अपने दादा फिदा हुसैन से उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। फिर मुंबई आकर उन्होंने सबसे पहले बस कंडक्टर का काम शुरू किया, क्योंकि रचनात्मक रुचियों को दरकिनार करते हुए जीवन यापन करना भी जरूरी था। इसी दौरान स्थानीय मुशायरों ने उन्हें अपनी कविता को एक मंच प्रदान किया और इसी दौरान पृथ्वीराज कपूर ने उस युवा कवि को एक गीतकार के रूप में नियुक्त किया। राज कपूर से हसरत जी की मुलाकात एक खूबसूरत दोस्ती और एक लंबे समय तक चलने वाले पेशेवर रिश्ते की शुरुआत थी।

श्रोताओं, हसरत जयपुरी जल्द ही अपने प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने यह बेझिझक स्वीकार किया कि वे दिल से बेहद ही रोमांटिक थे। उन्होंने जयपुर में ही अपनी एक पड़ोसी के लिए ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गीत लिखा था, क्योंकि वे अपने दिल की बात शब्दों में कहने में काफ़ी शर्माते थे और बाद में यह गीत संगम फिल्म में वैजयंती माला के लिए गाया गया। आइए आपको सुनवाते हैं यही गीत।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
8: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
9: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
10: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, आता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, जब भी हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की बात होगी, हसरत जयपुरी का नाम बड़े सम्मान और अदब से लिया जाएगा। उनकी कलम ने प्रेम को शब्द दिए और उन शब्दों ने आवाज के दिलों में अपनी जगह बना ली। हसरत जी ने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा को अनेक अमर नगमे दिए। उनके प्रसिद्ध गीतों में बहारों फूल बरसाओ, एहसान तेरा होगा मुझ पर, बदन पे सितारे लपेटे हुए और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जैसे नायाब नगमे शामिल है। उन्हें फिल्म अंदाज और सूरज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में 2 बार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म सूरज का ये गीत।

श्रोताओं, 17 सितंबर वर्ष 1999 को हसरत जयपुरी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी उनके होने का एहसास कराते हैं। एक कलाकार का शरीर भले ही दम तोड़ दे, लेकिन उनकी रचनाएं उसे अमर बना देती हैं। हसरत जयपुरी भी अपनी कालजयी गीत रचनाओं के माध्यम से सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगे। वे भले ही इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनके शब्द आज भी लाखों दिलों की धड़कनों में बसे हुए हैं। उनके गीतों की खुशबू आने वाली पीढ़ियों तक महकती रहेगी। आइए हसरत साहब को हम श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनके इस अमर गीत के माध्यम से उनकी यादों को सहेजें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी पर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए विभिन्न प्रदेशों के गीतों का कार्यक्रम सबरस। इसमें सुनेगा ये पहला प्रादेशिक गीत तमिल भाषा में। इस गीत की गायिका, संगीतकार और गीतकार है लता रजनीकांत।
1: Oh, yeah, let it go.

कार्यक्रम सबरस का अगला गीत सुनिएगा सुरिंदर कौर की आवाज में। यह गीत है पंजाबी भाषा में, संगीत है प्रेम गुप्ता का।

कार्यक्रम का अगला गीत शान की आवाज में गुजराती भाषा में सुनिएगा। धुन बनाई है उदय मजुमदार ने।

अभी आप सुन रहे थे विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री परिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आयोजित 16 दिवसीय कला प्रशिक्षण शिविर आकार का कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर में प्रदेश भर के 1,281 प्रतिभागियों ने 16 कला विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दा दादा दा दादा दा।

0: जुहार दादा दीदी मन, जुहार। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तोर सफाई कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करें से जुहार। और रोजी दिन आसन मुझे बाटली नन नन पीला मन के खूब खूबे मया। तो दादा दीदी मन रोजी दिन आसन फिर मैं तुम मन का जी गीत गोविंद ज्ञान चोगोड़े सफाई मुंडरा ने धरु न मरले से मंत्र दादा दीदी मन दखा तुम्हें सफाई जाने सास की हमी सफाई लगे कहीं ना कहीं हुनर कला रहे से। और ये हुनर कला ले दखा हमी कई ठन असन जिनिस मन बनाऊ से नहाले कोनी कोनी हम चो जोन कलाकार दादा दीदी मन आत उन मन तो काय सुंदर बाजा बल बजा सोत। और कोनी कोनी दादा दीदी मन दखा कितरो सुंदर सुंदर गीत गोविंद बलगा सोत। और संगे संगे हम चो कलाकार दादा दीदी मन तो काय सुंदर बरन बरन चो जिनिस मन बल बना सोत। तो उन्हें हिसाब ने दादा दीदी मन दखा आजकल हम देखू से कि हम चो जोन कलाकार दादा दीदी मनात का है सुंदर गीत गोविंद के गाँव सोत। और गाउन भाती दखा इन असंठान मन में बल गाँव सोत जसन हम चो देखू से कि कई जन असन कलाकार दादा मना सोत जोन नाट गीत बल गाँव सोत नाट दखा सोत। और हम ची संगे संगे हम देखू से कि हम चो दादा मन जो दादा दीदी मना जोन बिया घरे बल गाँव सोत। और संगे संगे पूजा पाठ होय से नहाले कहें और दूसर कार्यक्रम मन हो से असंठान बल गाँव सोत। तो बोलो ने हनुमान लगे असन क्या है सुंदर हुनर आसे ते भी हनुमान ये गीत गोविंद गाओ सोत। और दादा दीदी मन आमी जस हम चो ये गीत गोविंद और जो हम चो तीज त्योहार रीति मना ये सब पाए हम चो संस्कृत हो चो चीना बना हो से। तो दादा दीदी मन हमें देखू से कि आजकल जो कलाकार दादा दीदी मना जो बाढ़ती हिसाब ने बल्लो ने का सुंदर आप लोग कला चो बाढ़ती बल कर ला सोत। होने हिसाब ने देखा हमी मन आज हमें देखू से कि हम चो जो जुआन कलाकार दादा दीदी मन भाई बहन मनात हन मन देखा इस समय बाढ़ती हिसाब ने हनुमन बल्ले ये जैसा लोक संगीत आए गीत मनाए ये बाटे हनुमन चो मन खूबे हुए से। और हनुमन आजकल सोशल मीडिया ले जुड़ला सोत। और हनुमन सोशल मीडिया ले देखा आप लोग गीत गोविंद के सब पाए लोग मन तक हनुमन अमरा सोत। और आप लोग नाव चो बाढ़ती बल्ले कर सोत। तो बलतर गोटे या दादा दीदी मन कि हम चो जो जुआन दादा दीदी कलाकार भाई बहन मनात हनुमन ये जैसा संस्कृति के आप लोग संगीत के धरुण भाती चल दे तेबे हमें आप लोग संस्कृत के हमें बजाऊ संगाऊ सकूँ। तो दखा दादा दीदी मन एक गोट मन तो होली हम चे लगे और नंगत गोट मना से त्वाले की बलि सुनो।
1: प्रतिशत छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर। आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: तो दादा दीदी मन एक गोट मन के तो सुन ल मन तर दादा दीदी मन देखा तुम मन का जमी असन कलाकार भाई बहन मन संग भेंट कराते रहो से जो आप लोग कला ले आप लोग नाव चो बाढ़ती कर ला सोत। तो उसने आजीवल दादा दीदी मन मैं तुम मन का जी आजी चो कलाकार भित्रे हम चल गए भाई अमर ला सोत ए आत महेंद्र देवांगन और ए मन संगे गोट बात कर सोत बलबीर सिंह कच्छ। तो आले ए मन चो गोट बात के अम्मी बली सुनो।
4: भाई बहन मन आज हम तन फिर गोट कलाकार भाई इलासे ए मन चो नाम है श्री महेंद्र देवांगन। तो महेंद्र देवांगन भाई सबले बोले पूछू है कि जैसन कि तुम ये ढोलक बजा तो कला के सिखलास बोले ये क्षेत्र ने कसन ये खोली।
5: सबले पहले तो मैं आकाशवाणी सुनतर जमाए दादा दीदी आया बुआ मामा मामी काका काकी और भाई बहन सपै के मैं महेंद्र देवांगन करे से जुहार और बलबीर दादा तम के बल जुहार। और ये क्षेत्र ने ये तो कज मके मानता आसान है कि जसन आमचो गोटो गोट है खानदानी चले हुआ है बलून आसान ने मुझ दादा मुझ बाबा मुझ बड़े दादा भाई मन बचपना ले बजाते है उतर।
4: अच्छा।
5: अब उन मन के दखुन दखुन मैं बल सीख ले। अब खानदानी चले तो ऐसे मानतर अब सीख ले नहीं होए उन्हीं का जो मैं मुझे गुरु एवे जार लग सीखे से मैं दिलीप पांडे श्री दिलीप पांडे सर और श्री रामनाथ कौशिक सर बस असने ही करते करते मैं हून मन लग सीखे से एवे।
4: तो दक महेंद्र आगे तो गोड बात करूँगा मंत्र कहीं बेले गोटो पाड़ भजन बाती सुना दिया ढोलक ने।
5: अच्छा अच्छा दादा लोकगीत बजाते हाँ, रहे कि
4: नहीं कहीं से बोल तुझ मन ने जो ना अच्छा लागे सुन पाड़ बजा।
5: अच्छा देख मैं गोटुक हम चो जो बस्तर ने मसूरा से हम चो परब हुनी चो पाड़ बजाए से
4: हाले तो ये तो पाड़ रली परब चो पाड़ मंत्र दक ये जोन तु परंपरा हिसाब ने तो घर चो जोन लोक सिंह सीख लीस जैसन की भी गुरु बल धर लीस बोली भी तो ये ता बोलने का सीखते रहो इसे कसन में सीखते रहो इसे
5: गुरु मन लगे बोलने ने जसन अब स्कूल जसन पीला बेर ले जाऊआ तो होता गुरुजी सिखा हुआ है आ आ ई ई उसने ढोलक और तबला सीख ले हुंचो मतलब गोटो पाठ हो गए जसन बल्लो ने ताल सीखतो का जे गुरुजी धरुक चिकलाय पड़े थे उन्हीं वो कज गुरुजी धर ले से वो सीखे समय
4: बल्ले ने वो तो काय काय सीखो पड़े से कसन उनचो कहीं असन रह से अक्षर कहीं।
5: हाँ अक्षर बल्लो ने जसन गोटो के शुरुआत असन का करतो रहे अब एता ढोलक बजातो कज बल गोटक बोल हुआ है जसन बल्लो ने धागे ना ती ना कदी ना उसने ही है जसन स्कूल जाऊन पढ़ुआ आ आ ई ई उसने ही एचल बर है।
4: तो आले दसन की ये बोल लिस तो ये बोल जसन धागे ती ना तो असने ही किनिक भजन बले
5: आले जसन ने एचल जो बोल हुआ है उनके मां बजाएं से हाँ।

0: नीना।
1: बोले ने असन बोले गुरु मुलक सीख तो रहे बोले हाँ, तो ये ने जैसन की बजात का खाए फायदा से जोन तू आगे सीख रही सारे सीख लेन का है।
0: हाँ वस नहीं है जसन आगे से आगे सीखलर बोले ने कस नहीं हुए बजाऊन दे तो रहे मांतर जसन कोनी गाजा बाजा गाजा बजाओ बोले जसन कोनी गाना गाओ सोत अब हुन मन बोल सोत अले कहरा बजाओ अले दादरा बजाओ बोलो ने फिर बजाओ नहीं हुए नी हुन चो ही कजे खिंडिक सीखो क्ला पड़े चो है।
1: बोले ने कहा कि जोन ये के सीख लेन कि ताल ले चो बोले ज्ञान हो
0: जाए। ज्ञान हो से हो।
1: तो दक महेंद्र बोले कितलो दिन असन होली सीख लो बोले सीख तो बोले से
0: एक एक ज्यादा दिन नहीं होली से जाए 3-4 माह असन माह हो से सीख तो का जाए
1: बजातन तो आगे तो
0: बजातो तो बोले ने आगे आगे चले आए बचपना ले बजाए से मैं।
1: अच्छा तो देख महेंद्र आगे तो गोटे वहाँ मंत्राल बोले कहीं असन लोक गीत तानो फिर भजन बाती खेनी कसन सुनाऊ देस
0: हाल मैं डंडारी गीत बजाए से।
1: हाँ तो महेंद्र ये तो छखिन भजन बाती सुना लेस मंत्र दक ये बल्ले सीख तो काजे बल्ले ने तू कसन अभ्यास बल्ले करतो रहे से होती कसन कसन समय न करसिस कसन टाइम निकराइस
0: अभ्यास तो कड़ुक चलाए पड़े देखा है अब दिनक 1 घंटा तो बस तो रच जाए अभ्यास कर तो कजे अब अभ्यास नहीं कर ले फिर नहीं होए नहीं कहीं कहीं कर तो कहीं बल बूता कर तो कजे तो कहीं अभ्यास कर तो रच जाए उसने मैं बल अपन समय निष्काउन अभ्यास करे से।
1: तो जैसन की ये जो बजा तो कला है बोलू भी चोले और जैसन की तू गाँव बोल जाने
0: हाँ आजिकल सीख ले से तुम चो एथाई गोटोक गीत गाओ रहे हम चो गोटोक टीम आसे तुम ही तो जाना से हम चो सर आसे दिलीप पांडे सर वो हुन चो ही संगे एता गाओ बजाऊ हुआ हुनी थान गोटोक गीत में गा ले से।
1: तो हल हुन गीत नाल कोनी बोल गीत सुरता आ जाले किनी कसन गाउन बाती सुनाऊं दिला अच्छा होते
0: उन्हीं गीत बल ने मैं जो गीत के मैं था गाले से उन्हीं गीत के सुनाए से
1: आले।
0: चकड़ चक ढाए करे जाड़ा तेलर मोटो राय सहरे चले चकड़ चक ढाए करे जाड़ा तेलर मोटो राय सहरे चले जाड़ा रोपा रोपा सपा रोपा जाड़ा रुण के जाना जाड़ा रोपा रोपा सपा रोपा जाड़ा रुण के जाना जाड़ा तेर चोपा जाड़ा फर चो तेल पे राम चो गोट के माना ए चकड़ चक ढाए करे जाड़ा तेलर मोटो राय सहरे चले।
1: तो महेंद्र दक बोलो भी ये गाना बजाना कला तो तू जाने सी मंत्र ए चोले बोले तू चुकाए काम बूता हुए से घरे बोलो भी
0: मुझ काम बल्लो ने मैं पंप चलाऊ है नल चो पंप जसन बोलन एवे तो डेली वेजेस आसे मतलब बल्लो ने दैनिक वेतन भोगी नगर निगम बट ले चलाए से
1: अच्छा।
0: बच उतर ही है
1: आप बोले ने होता ले समय निकले आम बाती फिर ये जोन बजा तो अगर कला ने जाता रहे से बोले
0: हो हो।
1: तो ये तक कसन कसन जगह मन ने कहाँ कहाँ जाऊन बाती ये जोन बजा तो कला ने ती भाग धर लीसिस
0: मैं अब तक बल्लो ने भिलाई जाऊन रहे MLB महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल बाटले उता गोटोक प्रोग्राम चलते रहे उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज ने उता बजाले से और बल्लो ने हमचो बस्तर बाटले बल बजाले से जसन बल्ले ने 26 जनवरी रायपुर हाग दे देउन रहोत उता जाऊन बजाले से हमचो MA रहीम सर जाऊन रहे उन मन संग जाऊन रहे।
1: अच्छा तो ये तो अच्छा है जैसन कि आजकल बोले बाजार ने बोले कई हल भी गीत मन निकले से तो असन गीत मन ने बोलते बजा ले
0: नहीं तो बजा ले तो नहीं है मानतर असन है कि हुता गेलो ने हुन था ने स्टूडियो और लोक मन बजा हुआ
1: था
0: हमके तो नहीं देव तुता बजा के लाए तो सुन ले से उन मन के देख ले से सुन ले से।
1: तो दक ये जो कला के तू सीख लीस बोलोगे तो चो मन ने बोलने कसन लागे से कला कोनी बल कला के जान लेने माने चो जीवन का जिका है फायदा असन
0: अब कोनी बल कला के जसन जान लो ने मच गोट असन है कि जसन कोनी बल कला रदे हम चो हाथे तो कोनी थान बल गेलो ने দুই লোক চার লোক জানসো কিত্রো হামচো ঘর মোকে বল হরিক লাগে সে হামচো ঘর আর যতক সিয়ান সজন মাই পিলা আসত উন মন কে বল হরিক লাগে দেখি হামচো পিলা চলো ইত্রো বড়ে মতলব কলাকার আসন বলুন।
1: হ্যাঁ তো আয় মান্তর দক মহেন্দ্র বলু ইয়ে কলা চো ক্ষেত্র নে বলু বজাতো ক্ষেত্র নে বললে নে পুরে তুচো কায় বিচার আসে বললে কসন শিখ তো রে কলান্তি আগে বড়ছে কি খায় করছে আসন খাই সোচ
0: আবু সোচ তো বললে নে আচ্ছাই চাই কায় বড়তোর তো আইছি আবু শিখুক মুরালে সে তো আগে বড়তোর চাই আর যসন হামচো ঘর আর সিয়ান সজন দাদা দিদি সপাচো আশীর্বাদ রালে আর তুমচো আশীর্বাদ রালে বলবি দাদা তো বড়তোর চাই।
1: হ্যাঁ হ্যাঁ হম তো আয় যেসন কি কাই বল কলা কে জান রলে মানে চো বলু কে আদমি চো পহচান বল বড়ে সে আর খুদ কে বলে আচ্ছা লাগে সে বলু মনোরঞ্জন লাগে সে
0: মনোরঞ্জন লাগে সে।
1: হ্যাঁ হ্যাঁ তো মহেন্দ্র দেওয়ান ভাই দেখ যাতে যাতে বলু ভাই হলে তুচু মন নে গোটো কাই বলে ফের পাড় শোনাও দেশ
0: আচ্ছা
1: বজাউন বাতে
0: মানে দাদা তোমকে গোটো দীপচন্দী পাঠ শোনায় সে।
1: হ্যাঁ
0: যেসন বললো নে আমচো ছত্তিশগড়ি চো গোটো গীত আসে গীত কে তো মানি জানে অন্তর হুনকে হুনচো মূর বললো যেসন শুরুয়াত কে শোনায় সে আগে গীত শোনায় সে ফের পাচে ঢোলক বজায় দে যেসন গীত বললো নে।

0: हाँ तो महेंद्र देवांगन भेदक तुम्ही इतलो तुमचे जन कला के आहे बोलू बे सांगलास आरु सुनालास बोले तो असनी तुम्ही ये क्षेत्र ने आगे बढ़ा फिर असनी के भी बोले भेट घाट वहाँ ले आजी काजे राम राम
1: राम राम दादा।
2: तो दादा दीदी मैं देखा कितरो अच्छा ये जो भाई राहुत महेंद्र देवांगन और ये मन देखा कितरो अच्छा ये ढोलक बजा सो संगे संगे गीत गोविंद बल गाम सुना सो बोलो ने इन मन लगे इतरो अच्छा कला आसे कि देखा इन मन कहाँ बल गेले बल हन मन चो बोलो ने कला के लोग मन सुन सो तार हन मन की खूबे मन कर सो। तो उसने देखा दादा दीदी मन तुम्हें सपाय लगी असने कला हुनर आसे जाल तो उन मन बोले असने आप लोग कला के लोग जो पूरे आना तभी तो उन मन की बल्लो ने हम जो जो दूसरा कलाकार दादा दीदी मनात उन बल सुन दे और तो उन मन लगे कहीं जैसे न कहीं कमी आसे नाल कहीं सुधार कर तो रहा है तो ये सब पाए कि तो उन मन के बोले तुम जो पूरे आन दे और तो उन मन बोले एक ही आप लोग सुधार कर रुक सकास। तो दादा दीदी मन देखा कि भाई मन जो कला हुनर के तो गोट मन गोट बात के तो हमें सुन लो और ए मन संगे गोट बात करते रहो बलबीर सिंह कच्छ। तो ये गोट बात तो होली मनतर दादा दीदी मन हम जो जीवनाने कमानी धमानी संग संगे गीत गोविंद बल खूब जरूरी है से। तो आले ये गीत के सुनो और ये गीत के गा सो शत्रुघ्न सिन्हा।

काय सुंदर गीत रहे और ए गीत के गात रहो शत्रुघ्न सिन्हा रेवंचो संगवारी मान। तो दादा दीदी मान देखा अमित देखो से कि सपाए घरे जसन कलाकार दादा दीदी मारा सोचे बल्लो हन मन कहीं ना कहीं असन हुनर के कला के जान सो तो उसन देखा देखिए देखा हम जो घर चो जोन पीला मन रसोत हन मन बल सीख सो। तो हमें देखो से कि हम जो जसन कोनी कोनी कलाकार दादा दीदी मन हांडी बल बना सोत तो हुन घर चो जोन पीला मन आत हन मन देखा हन मन के हांडी बना तो देखन भाती हन मन बल सीख सोत। तो उसने दादा दीदी मन पीला मन हम जो घरे जो नासोत हन मन लगे बल कई ठन बल्लो ने हुनर मन रहे से जसन स्कूल पढ़ सोत पीला मन तो हुन मन बल हमें देखो से कि पढ़ा लिखा तो कर सोत मंत्र संगे संगे हमें देखो से हुन मन काय सुंदर सुंदर ही पेंटिंग मन बना सोत चित्र मन बना सोत और संगे संगे कोनी कोनी पीला मन तो गीत गोविंद बल गाव सोत बल्लो ने हुन मन तो राग बल खूब ही अच्छा रहे से। तो ये सब पाए कि हम दादा दीदी मन हमके खिंडिक लिख कर तो राय कसन बल्लो ने पीला मन जो बाट मन कर सोत हम के हुनी बाट ने हुन मन के हिंडा ले का हुन मन चो बल्लो ने भविष्य बल अच्छा हो दे और हुन मन अपलो नाव चो बाढ़ती बल कर दे। तो असन वाट मन के कर लो दादा दीदी मन हमें मन देखा पीला मन के हुन मन चो कला के हुनर के चिताऊं से और चिताऊं भाती हुन मन के देखा हुनी बाट ने हिंडा तो ने हमें हुन मन का जे सहा हो सकूं। तो दादा दीदी मन बलतुरगट ये है कि हम जो घरे जन पीला झीला मन रसोत पढ़ तो लिख तोर तो असन पीला मन की हमके खिंडिक लेख कर तो राय खिंडिक ध्यान दे तो रहे हुन मन चुमन कौन बाटे हुए से पढ़ा लिखा संगे संगे ने और हुन मन के खिंडिक लेख कर तो राय। तो दादा दीदी मन देखा गोट तो के भी नहीं सरे बलन गोट गोठिया लेते और गोठिया को भाई से ने तो मानता दादा दीदी मन ये और मचल गीता से तो अले गीत के सुनो और एक गीत के गाँव सोत मिठू राम और

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय दिन के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: जुहार दिदी मन, जुहार। घर द्वार कार्यक्रम संतोर सप्पा दीदी मन और संगवारिन बहिन मन की मैं दसरी करें से जुहार। और रोज दिन आसर नानी बड़े पीला मन के मच्छू बाटले खूबे खूबे मया। तो दीदी मन दखा पीला मन के मया दे अवलो ने सुरता ली मके कि दीदी मन दखा ये पीला मन जो छुट्टी आए ने तो पीला मन का दिन भर घरे रहन भाती खेलून खेलून रसोत। अब कुन कुन पीला मन तो काय सुंदर बोलो ने कहीं जैसे बना तो वार जान सो तो उनके बोल बना सोत मन तर दिन भर घरे बोलो ने कोल्हार उदिम होते रहे से ने। तो दीदी मन दखा पीला मन रले तो घरे तो कोल्हार उदिम तो होते रहे से संगे संगे घरे सियान सजन भर रसोत हम जो सप्पाए घरे। तो दादा दीदी मन हम बलतर गोटे आए कि दीदी मन दखा हमी देखू से कि हम जो घरे सियान सजन पीला झीला सपाए तो रहूँ से मंतर सप्पाए संगे हमके खिंडी के जसन हमें गोड बात बर करूँ से तो हमके सप्पाए संगे अच्छा मिलून मिसुन रत रहा है और हला हला गोड बात भले कर तो रहा है। कसम बल्ले दीदी मन का ही बल्ले जसन मन ने गोट के धरून हमके बल्लो ने नहीं रत रहा है। अब घर चलो के हुन गोट के बल्ले सांग तो रहा है जसन हमी जसन बड़े रहूँ से तो हुन मन जसन का ही गोट आसे जाले हुन के हमी हुन मन के समझाऊँ से नहाले नंगत बाट हुन मन के दखाऊँ से। तो आजिकाली दीदी मन दखा हमी देखूँ से कि जोन पढ़ तो लेका लेकी मन एवं जो मन भित्रे काय अस एक जानुक नहीं हो से। तो उसने आज ही हम देखूँ से कि दीदी मन माए बाप जो ये फर्ज हो से कि लेका हो कि लेकी हो हुन मन संगे बल्लो ने हुन मन जो दोस्त बनून उन मन जो सहेली बनून हमके रतो राय और हुन मन जो बल्लो ने गोट के जसन कहीं चवल गोट हुए उनके हमके धीरज धरुन भाती सुन तो राय और हुन मन के सलाह बल दे तो राय समझा तो राय कहीं जसन दूसर गोट हले भले। तो असन कर ले का है दीदी मन दखा हम जो घर चो पीला मन हम जो पूरे जश्न का गोट के सांग तो ने बोले हुन मन नहीं डर दे और हमके जो बोलो ने सरसरा हुन मन आप लोग मन ने काय गोटा से ये सपाए के हमके सांगुक सक दे। तो उसने जसन हम जो घर सियान सजन वाला सो तो हुन मन के बोले जसन हमें कहीं गोट ने हुन मन संगे चिड़ पिट फटफट हों से। तो असन ने मल दखा हुन मन जसन कहीं हुन मन के तकलीफ आए परेशानी है वैसे तो असन ने हुन मन बोले जसन हम जो पूरे गोट गुठिया पूरे खिंडी डर सोत बोले और खिंडी का बल्लो ने हिचक सोत बोले कसन बोले कि हम जो बेटा आए कि बहू आए मन हमके खींच दे कहीं बल्लो ने बोल सोत ने। तो असन हमके घरे असन बोला तो राय मतलब माहौल के कि दीदी मन की हम जो घरे जोन बोला सो सियान सजन हो कि पीला झीला हो उन मन नंगत हला हला सपा संगे गुड बात करते रहे। तो असन कर लो दीदी मन का हम जसन हम जो पीला मन बला सोत तो हुन मन बल आप लोग मन जो गोट के सांग देते भी हुन मन जो मन बल खिंडी हल्का हो देने अब मनज भीतरे हुन गोट के मतलब ने दबान भर ले संगा ले बल तो खिंडी अच्छा गोट नुआ दीदी मन। तो यही कहा दीदी मन हमके लेख कर तो रहा है कि हम जो घर परिवार ने बल्लो ने हंसी खुशी जो बल्लो ने माहौल हो और असन हमें सब पाए लोग रहूँ हंसी खुशी ने असन हमके वाट मन के करते रहे। तो दीदी मन दखाए गुट मन तो होली मंत्र संगे संगे हम चल गए और नंगत गुट बना से अली की बली सुनो।
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवन इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर किता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: तो दीदी मन गोट मन के तो सुन लस। तो दीदी मन मैं मुरने बल गोठिया रहे कि हम जो घर परिवार ने सपाए लोग मिले उनमें सुन रहूं से हरी कुदिम ने रहूं से। तो उसने दीदी मन देखा हरी कुदिम ने सपाए रहूं से और संगे संगे सपाए नंगत स्वस्थ रहूं से। तो असन ने देखा हम जो मन बले खूब हरिक रहे से ने और मन खूब हरिक रहे तो गीत गोविंद बल सुन तो मन है से ने और गीत गोविंद बले हरिक लागे से। तो आले बिरानी बनाऊ और एक गीत के सुनू और एक गीत के गा सो त्रासरी देव और संगवारी मन।

0: तो अच्छा है गीत के तो सुन लू। और एक गीत के गात्र त्रासरे देव अरे मचो संगवारी मन तो दीदी मन दखा तो उन्होंने कहा जे तो हमेशा में ऐसा मैंने कई ठन असन कहानी आए कविता आए ये सब पाए कि धरुन अमरों से तो उसने अजी वाले बहन मन तुम मन का जी कहानी आसे भत्री कहानी है और ये कहानी आए डोकरा सांप और ये हम चलो जो उन कहानी के संग सोत ये बहन आ श्रीमती रत्ना नाग तो वाले ये बहन जो संग लो कहानी के आमी सब पाए सुनो।
1: मोर कहानी नाव है डोकरा सापर चतुराई। गोटो गांव ने जुना बीती आमा गजर बनवारी रहे मने। हाय थाने गोटो जुना सांप बले रहे। तार नाव रहे मंदबीस। हाय सांप खूबे उमर होई रे। यही काजे हाय आपनर पेट भोरबा काजे जुगे मसागत बले ना करके सकते रहे। ताके गोटोक दिने खूबे भूख लागला। हाय आपनर भूख के कतक बल संभालता। असकट होयला और नंदी रेटे गला और हाय लगे बोसी देला। हाके दखी करी हाय नंदीर मेंढका निकरला और हाके पूछला दादा आजी तो के काय होयला आचे ओगाय होई करी बोसली आचिस। तोर खायबा काजे बोले ना डग रहीस ना काय तो के अच्छा लाग सियचे। सांप ताके दखी करी बोलला काय करू अस भाई तुई मोके अस्कट ना कर। काय काजे असन लाग लियाचिस तुई जा आपनर पेट भरबा काजे तुई डगराव। हातर गोट के सुनी करी मेंढका के आउर लागला कि ये काय काजे असन बोल सियचे और हाके पूछ के मुरायला ए नासन काय गोटाए आले मोके बोले तो सांग। ए गोट के सुनी करी सांप बोला आले तुई अतक बोल बिया साले सुन पहले मैं दूसर ठान ने रली। हाय थानर नाव रहे बामनपुर। हाय थानर गोटक बामन रहे। हाय खूबे बड़े ज्ञानी और जानबा बिता रहे। हातार बेटा गोटक दिने बाट ने हिंडते रहे और मोर लेंगड़ी ने खुंदी देला और मैं ताके चाबी देली और हाय पीला मोरी गला। बेटार खबर के सुनी करी बाबन मूर्छित होयला। हातार दुखर गोट के सुनी करी सब गाँव और लोग मन हातार घरे ओमर लाए। सबु लोग हाय बामन के ना गाग ओगारा बोली बोली खूबे समझाइत रलोत। तेबे कपिल नावर गोटोक बीता हाके समझायला अस जसन गीता ने लिखला आचे जोन आयला आचे हाके तो गोटोक दिने जीवारे चियाय। कोनी झटके जाऊए आर कोनी खिंडिक ले बेर ले जाऊए। बोली बोली ताके खूबे समझायला ए देह तो माटी राय माटी ने मिली जाऊए। बोले बोले खूब भी ताके समझायला। असने संसार लोग मन बोले दुई दिन का जे मिलुआत मिसुआत हरी कुदिम ने रहुआत। बोली करी समझाते गला तेबे तो आग जुगर लोग मन बोलुआत के माने जोन पहिल रात ने आपनर मायर गर्भ ने धारण करुआत। अड़की दायले हाय धीरे धीरे मृत्यु के बोले जान के मुरा हुआ है। कपिल नावर हाय मानर गोट के सुनी करी हाय बामन असन उठी देला उठी करी बोसी देला जसन सोयला थान ले जागला और हाय बोल सियचे असन ने मैं ये नरक ने मैं ना जी मैं कोनी बाटे हो निकरी जीबी नल कोनी रान बन बाटे जीबी मांतर मैं ये संसार ने ना रही। बोली करी है बोला हतार गोट के सुनी करी है दूसर बीता फिर बोलला तु रान बन ने जाई करी रवि बोल ब्यास काय है थाने जाई करी तु अस्थिर ने रह के सकुआस। जोन विषय हो वाय हाय घर रे रहो नोले राने। हतार मन ने बुरा विचार आईसी ची जोन आपनर रिसर गोट आपनर मन ले गुचाई के ना सके हाय काई करके ना सके। हतर काजे घरर काय दुआरर काय और असन जोन माने करला हाय घरे रही बले सन्यासी धारण जीवना जी के सके। आत्मा तो पवित्र नदीर पानी असन आए, ये संसार ने सुख खंडिक असन और दुख खूबे आसे, असने गोठ गोठाए बाके गोटोक माने दूसर माने के समझाई से जी, तेबे तार खुदर दुख बले सुख ने मिलवाए। अच्छा लोग संगे रबार लंद पन ने ना जीबार सबु संगे मिली मिसी रबार असनी बोली किरी रबार आई बोली बोल सी अचे। हाय दूसर माने गोट के सुनी करी हाय बामनर मन के खिंडिक सीतर होएला, मांतर तार रिस तो सीतर ना होए, हाय मोके शराब देला कि जा आजी ले तु गोटोक मेंढकर सवारी हुई करी जीवना के जी। हाँ तेरी शराब कारण अबर मैं एथान ले मेंढका मनर सेवा करके आई ले जी, नोले ये ठंडा पानी लगे मोर काय काम आजी। गुनुक मेंढका ने तार गोट के सुनी करी खूब बेहरिक होएला, हाय आपनर राजा के पानी भीतर सांगला, सबु गोट के सांगला तेबे हाय सांप लगे राजा खूब खुदे गला और ताके पूछला, तेबे सांप फुंडी गिरी बोसी देला और बोल सेचे तोके सांगला आए हाय सत्य आए, तुई मोर ऊपरे सत ना कर ब्यास जाले मोर तुई मोर परीक्षा धरके सकिस। तेबे डर कुछ हाय राजा परीक्षा धरबा काजे हातर हाय सांपर पाट ने बोसला, तेबे सांप नंदिर रेटे रेटे बोसाई करी ताके किंद्रायला और हाके लगे आनी करी छाड़ी देला। हाय दिनले पानी राजा खुद सांपर ऊपरे गुलगुला पाट आए बोली करी रोजे बोसी गिरतार ऊपरे सवारी कराए ताके हाय सांप पाट ने बोसाई गिरी रेटे रेटे धीरे धीरे बुलाए मुरा हुआ है, ते भाई खूबे हरी खुआए तार पाट गुलगुला आए बोली गिरी। गोटक दिने हाय सांप खूबे धीरे धीरे रेंगते रहे हाँ तार ऊपरे बस बाके हाय राजा बोल सी अजे आज कसन होला तोर ऊपरे बस बाके मोक हरिक ना लागला तो काय होला गुनो कसन धीरे धीरे हिंड ब्यास बोल गिरता के बोलुआ। तेबे हाय सांप बोला कि काय सांगुआ तो के मोर गोट के खाएबा का जे अच्छा ना मिर्सी अचे गुनुक मोके रेंग के ना भाई सी अचे। असन सोनी किरी है राजा बोला मोर रो रो तुई खाएबा पीबर काई चिंता ना कर, मैं तो आची तू ये पानी थान ले रोजे दिना दू ठन मेंढ का के खा खाई करी अपनर भूख के सीतर करके सकीस बोली किर है राजा बोलुए। फिर काया आयता राजा रा गया मिरते खन तो सांप मेंढका मन के खाए के मुरैला, धीरे धीरे हाय नदीर सबु मेंढका के खाए के मुरैला और पाचे नदीर सबु मेंढका सरी जीवा के हाय पानी थानर राजा के बोलला अबर तो मोर खाएबा काजे थाने काई नी आए काय काज मैं रुआ ता सबु तो सरी गलाए। असन सुनी कर राजा नाराज होला और बोला मैं तो काय करके सकी, मैं जसन बोलली असन कर लीस एबर मोर हाथे काई नहीं आए। बोला जा अपनर जीवना के डगराओ अपनर चारा पानी और कोनी थाने डगराओ बोली खेरे बोला। तेबे सांप बोला आले ठीक आए तेबे मैं जी भी आची बोलुआ, मांतर मोके तो एबे भूख लाग सी अचे बोलुआ और हे राजा के अपनर पाट ने बोसाई कर बुलाए भी आले जाऊँ आए बे बोली कर बोलुआ और बोसाऊ आले जीबा दाय मई हारक बोसाई दी रबी और बुलाए रबी के बे बैठ घाट हो कि बोलुआ और बोसाई कर नहीं हुआ और बाटे उल्टा देवे और झपराए खाई दे हुआ है मेंढका के।
0: तो दीदी मन तो काय सुंदर कहानी रहे बोलो ने कहानी हो कि गीत हो कहीं चो हमके थाने कई असन ज्ञान जो गोट में सीखूक मेरे से ने तो जसन ए भी कहानी भीतरे बोले हमी हमके सीखूक मिले कि कोची कोची संगे बोले एकदम उनचो पर एकदम विश्वास नहीं करते रहा हमके ने तो खेल हमके चतुर बनन बल रह तो रहा तो बलतर गटे या दीदी मन की कहीं ची बल हो कहानी कविता सब पा ले हमके सीख मिले से और ये कहानी के संग तो ये कहानी रहे डोकरा सांप और ये कहानी के संग रहो श्रीमती रत्ना नाग तो दीदी मन दखाई कहानी के तो सुन लो मंत्र कहानी संगे संगे गीत गोविंद वाले और नगर लगती ने तो वाले गीत के सुनो पाछे गीत कुरिया मंचो नाव के संगे ने सुनो पहले गीत के

समाप्त दे जेबे एतुका सुंदर गीत रहे और ए गीत के गाउन रहत विपिन बिहारी दास और मंचो संगवारी मान। तो दीदी मान देखा एबे तो खिंडी के हमें देखो सके घाम बल खूबे होय से ने मंजन पहाड़े और केबी केबी तो सांझ बेरा के खिंडी पानी बल पानी लहरा बल होय से ने तो असन समय दीदी मान देखा हम खिंडी का देह पाए बल खूबे ध्यान देख लागे से कसन बल ने घाम आए बोलते हम सीतर सीतर तो खाऊ से संगे संगे अभी तो खिंडी दो तीन दिन होली पानी तो नहीं मारे से मानतर दो तीन दिन पहले मारते रहे तो असन समय ने खिंडी के राती बेरा खिंडी सीतर होते रहे। तो दीदी मन असन समय देखो हमके शरद गर्म बल हो सके तो असन ने दीदी मन हम तो खाओ तो पियो तो बाटे खिंडी के लेख करतरा बोले घरे सियान सजन पीला झीला रसोत ये सब पाए कि हमके खुआ पिया बाटे खिंडी के लेख करतराए और संगे संगे दीदी मन देखा असन समय ने हमके हम चो जन घर चो पीला मना जसन पानी बलन बादरी ढाकली से नहा लेहरा चले से असन ने घर ले बाहर निकल तो काज हनुमन के नहीं देते रहा है कसन भर ले पीला मन तो कहीं के नहीं जानत ना हनुमन तो खेलते रसोत। तो असन समय ने गज खुट लगे पानी लगे हमके खिंडी नहीं रहते रहे और बोलो ने हमके घरे घरे रहते रहे बोलो ने अच्छा नगर ठान नहीं रहते रहे। तो असन कर दीदी मन हमें कर ले क्या हमन मन का एक ठन असन अड़रा गोट मन हो से इस बोले हमें बाचुक सकूँ से और आप लोग घर के बल घर चो लोग के बल हमें बचक सकूँ। तो दीदी मन देखा ये नंगत गोट मन तो होली मानतर मचलोगे और गीत आसे तो वाली गीत के बल सुनो फिर गीत पूरी हमें चुनाव के सांगे ने।

सुंदर गीत रहे और ये गीत के गात रहत गेल मने देवी और मंचो संगवारी मन। तो दीदी मन देखा गीत गोविंद तू हम सुनते रहूँ से गोट बात बल देखा बल्लन मुर होले तो गोट तो नहीं थे भी ने बल्लन हम जो बहन मन थे ये सब पाए गोट के चल जान सोत ने। तो दीदी मन देखा मचो जातो समय बल हो से तो अली विदा दियास घर द्वार कार्यक्रम सुनते सब पाए दीदी मन और संगवारी बहन मन की मैं दसरी करें से जुहार।

0: अभी आप ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चुकोट।
1: काश्तकार दादा दीदी मन बिहा काजे आए बल्ले लागे से हरदी, साग काजे आए बल्ले लागे से हरदी, अरु रोग राई घाव दाव के मरला तो काजे बल्ले लागे से हरदी। असन गुणकारी हरदी के घेनुन आन तो पलटा रूपुन रलो ने घरे बले काम दे दे अरु बिकुन भाती आमी नगद पैसा बले कमाओक सकुंदे। तो आजी जाना ये हरदी चो किसिम अरु रोप तो मंडा तो उवाट की। हरदी कमानी कर तो काजे माटी पलट तो नागर ने नगद दुहार बेड़ा भूई मरान जे थाने तुम्हें हरदी मंडा तो उवाट करला सास हुनके जो तुम दे तो राय। इचे संगे संगे हमी जसन दिसी नागरा से हुन थाने घर एक अच्छा जोतुन भाती माटी के भुरभुरा बनान देतो राय। गोबर जो नगद सरलु खत के माटी ने मिसाउन कियारी बनातो राय। हरदी मंडा तो काजे नगद छुकछुका आरु ठोसर हरदी मन के बाजतो राय। दादा दीदी मन हरदी गठने दुई ठान गाजा फुटलो असन आरु एचो वजन 25 ग्राम होतो रासे। हरदी बीचा मंडा तो पहिल कार्बेंडा जीम नहले ट्राइकोडर्मा नाव चो ओखद ने उपचार करून मंडातो राय। हरदी कमातो काजे नगत किसी मन ने कृष्णा सगुन सुदर्शन स्वर्णा आरु सुगंधा नगत रहे से। हरदी मंडातो काजे बूटा ले बूटा चो दूरिया एक ले डेढ़ फीता संगातो राय। हामी हरदी के बेढ़ा मरान बनवाड़ी चो भूई ने अरु पारी मनने वाले मंडाउकलाय सकू। हरदी भूई ले नगत बल बफू मन के झिकू आए। तो हुनिका जे गोबर खत नहले कंपोस्ट खत 300 किलो बुनतो मंडा तो पहिल माटी ने नगद मिसाउन जोतुन देतो राय। असने 130 किलो यूरिया 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 180 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देतो राय। हरदी कमानी ने बले लाटा बुटा झपके झपाई हुआ है। एके समया दखुन दखुन निजानी करते रहतो राय। दादा दीदी मन जाकलो बूटा मन ने माटी बले चेगाते जातो राय। हरदी खोड़तो काजे बले निको ख्याल करतो गोठा से। तो जसन हरदी के समयाले आगे नी खोड़तो राय। पाना सुखुन मरल्लो असन होले जानतो राय कि हरदी पाकुन तैयार होली। असन तो हरदी के पाकतो काजे 9 ले 10 महीना चो समया लागे से। खोड़तो वेरा लेख करतो राय कि कांदा के गेंजू नी हो। कांदा गेंजी होलो ने उनचो भाव बले अच्छा नी जाए और कांदा बले सड़े से। काश्तकार भाई बहिन मन बीचा चो भंडारण करतो बुता बले मसागत चो बुता होए से। असने हरदी चो बीचा भंडारण काजे खनुन भारी हरदी के नगद छाए ने सुकाउन माटी आरु कांदा ले लटकलो कचरा के साफ सफाई करतो राय। बीचा कांदा के 3 ग्राम बाविस्टिन नहले इमिडा क्लोप्रिड नाचो ओखत के घोल बनाउन उपचार करून फिर छाए सुखाउन भाती संगातो राय। हरदी बीचा संगातो काजे भूए 3 हाथ ओसार 6 हाथ लम आरु 1.5-2 भीता गड़िया खोदरा खोड़तो राय। खोदरा ने खाले तल ने 4 ले 5 इंच तक बारू डारून देतो राय आरु नगत ओछालो असन बनान देतो राय। हुंचो उपरे हरदी संगाउन भाती ऊपर ले फिर बारू के पाटून बले देतो राय। खोदरा भरलो ने माटी ले पाटून भाती ऊपर ले के गोबर ने सराउन बले देतो राय। असन करून संगालो ने तुम्ही हरदी बीचा के नगत सगाउ सकासी।
0: अभी आप कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार

0: से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समय 1:10 हुए हैं।
2: विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है, और अब प्रस्तुत है फरमाइशी नगमों पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोताओं, संगीत वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी दिलों तक पहुंच जाती है। इन्हीं मधुर भावनाओं और आपकी प्यारी फरमाइशों के साथ हम शुरू कर रहे हैं फरमाइशी नगमों का यह रंगारंग कार्यक्रम। तो बने रहिए मेरे यानी कि जूही जोशी के साथ और सुनते रहिए अपने मनपसंद गीत। नमस्कार, आदाब और स्नेहिल अभिवादन श्रोताओं। आइए संगीत के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी नगमा, जिसे आप सुनेंगे फिल्म खूबसूरत से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत लिखा है संजय चहल ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता, सरोज नगर सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, राव भाई और शाहिद भाई, गांधी बागाकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार, सागर कुमार साहू आप है दतरेंगी से, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा, मालेगांव से आप हैं दत्ता घायाल, सुनीताबाई घायाल, सानिका घायाल और गजानंद घायाल, काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधीश सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे, धाड़ीनादुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का मन पसंद किया हुआ फिल्म खूबसूरत का ये गीत।

श्रोताओ, अब ये अगला फरमाइशी गीत आपके लिए फिल्म कहो ना प्यार है से। इस गीत को गाया है लक्की अली और राम्या ने। इब्राहिम अश्क की गीत रचना है और संगीत से सजाया है इस गीत को राजेश रोशन ने। और अनुरोध करता है आप सभी, आप हैं दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से अरुणा दामोदर, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, आप सभी हैं वैष्णो कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार, चांदनी चौक गंडे पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और यहीं से ही है खुशी रौनक सेन, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, देवपेट वाशिम से राजेश खम्बायतकर, प्रेमा खम्बायतकर, राजश्री भावसार और प्रीति, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और सभी परिवार, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पीएस नवहारकर, तुषार करांगले, संत गाडगे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से ही आप हैं अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, लोकेश कुमार गाठोड़े, ग्राम वडगांव डिघी बुलढाणा महाराष्ट्र से ही वासुदेव बोधवड़े, माधुरी बोधवड़े, आकाश कुमार बोधवड़े, प्रकाश तिरसुनिया, नैतिक तिरसुनिया, धैर्य और आराध्या आप सभी हैं उत्तर बस्तर कांकेर से हमारे श्रोता, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांचल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक खुशबू, ज्योति ठाकुर आप हैं ग्राम चरोदा बार नवापारा जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से, बिरसिंहपुर बाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण कुमार विश्वकर्मा, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इशा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर और फातिमा। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये तराना।

और अब सुनेगा श्रोताओं आपकी चाहतों का गीत फिल्म मोहब्बतें से लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल सुरों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह और अपने इस मनपसंद गीत को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं आप सभी। आप हैं रतनपुर से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन और सपरिवार। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढावेश यादव, सत्येंद्र मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम, रंजीत भंडारी। आप हैं नयापारा फरसगांव से। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, ऋतु सिंह। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त। मेघापारा चिल्फी से मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार साहू, धनंजय कुमारी, गायत्री साहू। गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्यलक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीष राव, श्रवण राव, नानू राव, नंदिनी और राधिका। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से देवी दीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कपिल, पूजा अहिरवार। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ही जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु, रोनिका और समस्त यादव परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ही आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल। ऊपरकोट मोहल्ला चौनखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। ग्राम छिंदीडीह पुजारीपारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम श्रोता सुमन में अब पेश है ये अगला पसंद किया होगी फिल्म सोचा ना था से। इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं सोनू निगम और संजीवनी ने। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार संदेश शांडिल्य और गीत के पसंदकर्ता हैं आप सभी। आप हैं मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से। अभिजीत गम्हाड़कर, सरिता गम्हाड़कर, सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर। बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाड़कर, वैशाली गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर, कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी आप हैं बेमितरा से। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा आप हैं ग्राम पंचायत बठेना से। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, श्रीमती रेखा सावले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सावले। सुंदरपारा रोहासी से डगेश्वर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव साहू। दतरेंगी से मनोज साहू, सूरज और सागर कुमार साहू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा देवी, कृष्णा विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन। और अब इसमें लीजिए सुनिए ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल तो पागल है से। इस गीत को सुरों से सजाया है उदित नारायण और लता मंगेशकर ने। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह और इस तराने के पसंदकर्ता हैं आप सभी। आप हैं महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया। किकिर मीटा बिल्हारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा, रुक्मणि शर्मा, गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, जोहत्रीबाई नेताम। नयापारा बेमेतरा से ईश्वरी प्रसाद साहू, जुनवानी दुर्ग से सुरित राम साहू। ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा। रोहित जयलक्ष्मी, ऋषभ, अंश लक्ष्मी आप हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी आप सभी हैं ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से। जिला मुंगेली गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, नेहल पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी और पुलकित। कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन आप सभी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। श्रवण कुमार साहू आप हैं मदनपुर कवर्धा से। संतोष, हिमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, हितेश आप सभी हैं भीमखोज तरपोंगी से। ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव से फगेश्वर मंडावी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता और बेबी वैदेही जोशी। कामठी नागपुर से श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष और अमृता शर्मा। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनेगा फिल्म धड़कन से अभिजीत और अलका याग्निक के युगल सुरों में। शब्द है समीर के, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और इस गीत के फरमाइश करता है आप सभी। आप है बीड शहर से रंजीत कुमार थोरात, रामकिशन गणपत थोरात, गबरू पहलवान थोरात। तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल शिवास और अनीता शिवास। सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रवण, श्रीमेण वाघमारे। आप है एमआईडीसी चंद्रनगर सतारा से विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, माय चौहान। आप है वर्णा शाहपुर कोल्हापुर से। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। ग्राम बहरामपुर टेमा से, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन रामराज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले। संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव जी, जगराव पंजाब से सुनील पाठक, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव, डॉली पूजा और प्रभा देवी तामोरिया। आप सभी हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक और तन्वी गोहर। तीन महुआ खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, हेमंत, मुकेश, आरती, ममता जिगर, हर्षिता साहू। नोनीलाल साहू आप हैं तेंदु डावर से। रायगढ़ से गेंदलाल शिवास, संतोष शिवास, शिव कुमारी, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, दिलीप साहू और गेंदु भाई। शहडोल मध्य प्रदेश से सोनू खान, मोनू और गोलू खान, ब्रजेंद्र प्रजापति और कविता प्रजापति। बुढ़ार मध्य प्रदेश से ही आरती सिंह, दुर्गा, पूजा, राजकुमार और अदिति सिंह। अमोल इंगोले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा और राजवी इंगोले आप हैं चितवाड़ी अकोला से। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

पगनिक ने, गीत लिखा है समीर ने, संगीत निर्देशक है नदीम श्रवण और इस गीत को सुनने के इंतजार में हैं आप सभी। आप हैं बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासिरे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक झावेंद्र वर्मा। कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, देवव्रत सोनवानी, लक्ष्मी देवी और गीतिका सोनवानी। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी। महामाया पारा दरचुआ से फिरंता साहू, दुलौरनी साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। ग्राम दरचुआ से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। करपावन सतोषा से गेनूराम बघेल, गोमती, तनुजा, सुभाष और ईशान बघेल। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया आप सभी हैं जमशेदपुर से हमारे श्रोता। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी का पसंद किया हुआ गीत पेश है।

अभी आप फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
7: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को न आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
8: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: है। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
3: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
3: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
3: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
2: जी।
3: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
2: जी। हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
3: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यहीं रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हां,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा,
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीही के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें इजाजत दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए लेते हैं जानकारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं के कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया जाएगा। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:05 पर। शाम 5:10 का समय होगा युवाओं के कार्यक्रम युवाणी का। बस्तर के स्वर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा शाम 7:00। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव का प्रसारण किया जाएगा। कूड़ई फूल लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रैबारी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 का समय होगा कार्यक्रम पीला मन काजी गोट का। इसमें आप सुनेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। प्रस्तुति होगी शंभुनाथ नाग की पुरानी फिल्मों से। इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 सुनिएगा कार्यक्रम ओवाट। शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और शाकंभरी योजना के बारे में। अजय मीरी से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30। बस और नाता पंता का सामाजिक महत्व इस विषय पर परिचर्चा आप सुनेंगे रात्रि 10:00 हल्बी बोली में। प्रतिभागी होंगे मनबोध बघेल और बलदेव मौर्य। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। अब लीजिए सुनिए हमारी कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा पद्माक्षी अवस्थी का। श्री रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। स्वर सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंदीश्री का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। हुलहुली ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। इसमें आप सुनेंगे डोकरा देवपाड़। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। नमस्कार जगदलपुर सुबह 7:05 पर। इसमें आप सुनेंगे वार्ता अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। इस विषय पर वार्ताकार होंगे प्रवीण सिंह और होगी फिल्मी गीतों से सजी मधुरी माँ। लोकमंजरी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। इसमें आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। सुबह 9:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम पाटावेनार में चमरू राम बघेल और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे वो कौन थी इस फिल्म के गीत। गुलशन ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:00। इसमें आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे दियारू और साथियों के गाए ध्रुवी आदिवासी लोकगीत सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 का समय होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। गुलदस्ता गैर फिल्मी गीतों और गजलों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गोंडी बोली में। दोपहर 12:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। घर द्वार ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। एनसीईआरटीए प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 से आप सुन सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड पर।
कल शाम 4 बजे हमारी विशेष सभा आरंभ होगी कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार आप सुनेंगे हल्बी बोली में शाम 5:05 पर शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, शाम 6:35 पर आप सुनेंगे हल्बी लोकगीत लखेश्वर खुदराम और साथियों के द्वारा प्रस्तुत बस्तर के स्वर, ये कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडामाली लोकगीतों का ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। इसमें आप सुनेंगे दशमी और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत पीला मन काजे गोट रात्रि 8:30। इसमें आप सुनेंगे सावित्री बाई फूले के बारे में प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे ग्राम पंचायत की विकास गाथा। इसमें आप सुनेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ घुमकली। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे कमलोचन और साथियों के गाए नाट गीत। रात्रि 10 बजे आप आनंद लेंगे गैर फिल्मी गीतों का और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। समय है शाम के 5:10 का। पेश है युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी हल्बी बोली में।

0: हेलो गुड इवनिंग संगवारी मन, दिन भर जो भाग दौड़ जो बाद ये प्यार ले भर लो सामने आप मन चो स्वागत है। मैं आप मन चो कंपेयर दोस्त रोशनी नाग
1: और मैं है गीता ठाकुर। अमी दोनों करो से आप मन सपाई के जुहार। संगवारी मन, उम्मीद करो से कि आज जो आप मन चो दिन अच्छा बितली होती।
0: गीता तू जानिस मके शांत समय ने खूब ज्यादा पसंद आ से।
1: कसन ने
0: दिन भर जो भाग दौड़ जो बाद खुद जो मिल खुद संग अपने आप संग मिलते मौका जन मिल रहा है।
1: गोट तो तू खूब गहरा बोलीस रोशनी। आमचो जैसा ना जाने कितरो युवा मन इतरो बिजी रुआत की खुद जो हालचाल ची भूल गुआत।
0: नंगत बल्लेस गीता मानतर आमी बोले तो आमचो संगवारी मन जो हालचाल नहीं पूछ लो।
1: एवे बोले खूब बेरा नहीं होली से रोशनी। संगवारी मन आशा करो से कि अपन जो चेहरा नी मुस्कान आसे होती और अगर नहीं आए तो आमचो संगे असनी बनुन रहा अपने आप मुस्कान दे।
0: और संगीता तुम कसन आसित काय हाल चाल है?
1: दिन तो अच्छा रली रोशनी मानतर सांझ बेरा ले मचो दिमाग घूम ली से।
0: कसन काय होली?
1: ज्यादा काई खास नु है, मैं एक जन दोस्त के गोटक जरूरी मैसेज

0: ए भी तक देखी छी नहीं
1: मतलब हुन मैसेज नी दखतो के ते उल्टा पुल्टा सचन सचन भेज लीसी थोती।
0: हाँ आगे लागली वेस्ता से होती फिर लागली काही रिसाली से तो नहीं फिर सोचले मचोले काही गलती तो नहीं होली से होती।
1: पाचे पता चल ली होती कि हुन दूसर काम ने व्यस्त रहे और मोबाइल साइलेंट रहे ने।
0: हाँ सत्य बोल लीस्ते।
1: ये तो आमी सपाय लोग संगे हुआ है गीता गोटक गोट जो सौ मतलब निकल हुआ है।
0: सत्य बोलवा है तो ये सब गोट आजिकाली युवा मन का जे आम होली से रोशनी।
1: हाँ गीता आमचो संगवारी मन बले सोच होती कि आमची कहानी चले से
0: रोशनी गोठियाते गोठियाते आमी अमरलू से आजीचो आमचो विषय लगे जो इनकी शायद आजीचो हरिवाचो जिंदगी चो हिस्सा बनुन गेली से।
1: हाँ गीता तो संगवारी मन आज आमी गोठियावा ओवर थिंकिंग और होंचो युवा मन ने प्रभाव चो बारे में।
0: आसान भाषा ने बोलवा तो कोनी बात के जरूरत ले ज्यादा सुस्तुर घन घन उनके दिमाग ने आंतुर और असन गुट मन के दिमाग ने आंतुर जो उनकी के भी होली से ची नहीं।
1: बल्लो ने नानी असन गोट जो चिंता के सोचन सोचन पहाड़ जसन बड़े बनातर।
0: मानतर युवा मन ने ओवरथिंकिंग बढ़तर कई कारण है जसन की पढ़ाई चो दबाव करियर चो चिंता नौकरी चो तैयारी परिवार चो उम्मीद सोशल मीडिया।
1: सोशल मीडिया चो बात ली तो मके गोटो गोट सुरता ही ली।
0: काई गोट
1: केबे केबे आमी गोटो को फोटो दखन सोचो हम कि हम चो जिंदगी कितरो परफेक्ट है ने।
0: हाँ कोनी पहाड़ ने भोलुक गेला से कोनी नवा गाड़ी धरसोत कोनी सफलता चो कहानी सांगसोत।
1: हाँ यही सब के दखन काफी युवा मन सोचवात कि सब चो जिंदगी परफेक्ट आसे आमची ही साधारण है।
0: जबकि सच्चाई तो ए आई कि सोशल मीडिया ने ज्यादातर लोग आप लो अच्छा पल के डारुआत पूरा जिंदगी के नहीं।
1: हाँ कोनी आप लो परेशानी के पोस्ट नहीं करवात। गीता तू क्या कहे लागू है कि ओवर थिंकिंग चो असर सिर्फ दिमाग ने पड़ुआ है।
0: नहीं रोशनी ये चो असर पूरा जीवन ने पड़ुक सके।
1: कसन ने
0: मान के चल कोनी छात्र जो पेपर अमर ली से मानतर हुनके पढ़ू छाड़ू मैं फैल होले कसन सोचते रहले।
1: तो हुनचो समय पढ़ाई नहीं कम और चिंता नहीं ज्यादा ने।
0: बिल्कुल और यही गोट नौकरी इंटरव्यू बिजनेस या कोनी नवा काम जो शुरुआत ने बले लागू होए दे।
1: खूब बेहार आमी काम शुरू करतल पहले ही हुनचो नतीजा के इतरो सोचाम कि काम शुरू ची करुक नहीं हुआ ने।
0: संगवानी मन केबे केबे आगे बढ़तो का जे जोखिम धरतो बले जरूरी है।
1: गीता तू के भी ध्यान दिलीसित कि ओवर थिंकिंग ज्यादातर राती राती जी काय काजे हुआ है।
0: काय काजे बोलो ने राती बेरा आमचो आसपास शांति रुए और आमचो ध्यान आप लो विचार ने ज्यादा जावे।
1: नंगत बल्लिस आमी दिन भर व्यस्त रुआम मंतर राती बेरा आमचो दिमाग पुराना किस्सा चो पिटारा खोलन बसु रुए ने।
0: रोशनी असल जवाब तो असल सवाल तो ए है कि ये सब ले बास्तुर कसन है।
1: सबल पहल गोट हर विचार ने विश्वास करतर जरूरी न है। काहे का जबलो ने आम चो दिमाग असन गोट मन के सोच है जो चले वास्तविक चात चो कहीं लेन देन ही नहीं रुआ है।
0: दूसर गोट आप लो मन के व्यवस्थित संगातो बले जरूरी है।
1: हाँ जब आम चो लगे करतो का जे स्पष्ट काम रुआ है तो बेवजह चो चिंता का जे जगह नहीं बाचु है।
0: संगवारी मन अगर कोनी बात आप मन के खूबे परेशान करे से तो उनके आप लो तक सीमित नहीं संगहा बल्कि आप लो माता पिता भाई बहन दोस्त या कोनी भरोसेमंद व्यक्ति के सांगा।
1: खूब हर समाधान आमचो लगे नी रुए मंत्र लोग संगे गोड़ बात ने आम के सही दिशा में रुक सके।
0: संगवारी मन खुद चो तुलना हमेशा दूसर संगे नी करा सब चो जीवन चो कहानी अलग अलग आए हुनी का जे आप लो सफर ने ध्यान दिया और छोटे छोटे सफलता मन चो आनंद धरते रहा।
1: संगवारी मन उम्मीद आसे कि आज ही जो गुड बात आप मन के मन ही ली होती और कहीं नवा सीख तो मौका मिल ली होती।
0: संगवारी मन अदा आगे जो कार्यक्रम ने आप मन का जे आसे दिलचस्प पल प्यारा प्यारा गुड और संगे संगे आप मन जो मन पसंदीदा गीत
1: तो रेडियो चो आवाज के खिंडिक बोले कम नहीं करा काय का जे बोलो ने सफर एवे बाकी आसे। संगवारी मन ये तो रही आज चो चर्चा मानतर आज आमी तुम चो काजे काय काय कार्यक्रम ने खास आनलू से एके बोले जानवा।
0: আজি আমি তুমচক আজি আনলু সে যাদকেশ্বর যন থানে তুমি শুনা সে পুরানা পুরানা গীত মানকে এ গীত মান তুমি পুরানা দর্চ যাদ করাই দে
1: আওর আনলু সে রোজগার সূচনা সামান্য জ্ঞান চো গোট আওর ভেটবার্তা হ্যাঁ তো সঙ্গবারী মন আজ চো কার্যক্রম যাদকেশ্বর চো পহিল গীতা ফিল্ম সিলসিলা লে এ ফিল্ম চো গীত কে কিত্র আচ্ছা লাগে সে কসন
0: দেখা এক খব বলো নে গোটুক সপনা হয়েছে এ গীত অমিতাভ বচ্চন আর রেখা নে ফিল্মালা সে এ গীত প্যার আর কল্পনা চো দুনিয়া নে খুন জাতোর ভাবনা কে দর্শালা সে
1: স্বর দিলা সে কিশোর কুমার আর লতা মঙ্গেশকর গীতকার জাভেদ আখতার সঙ্গীত নির্দেশন শিব হরিচো তো সঙ্গবারী মন ইয়া শোনো এ গীত কে

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: रोशनी, आम जो गीत मन के थे बाऊ और आम जो संगवारी मन का जे रोजगार सूचना बोलतो आन लू से एके सांगू।
5: हाँ, संगवारी मन छत्तीसगढ़ व्यापम चो बाटले युवा मन का जे गोटक महत्वपूर्ण भर्ती सूचना जारी कर लो रहा से। जल संसाधन विभाग ने 63 चो कुल 35 पद ने भर्ती जारी कर लो रहा से। ये भर्ती का जे ऑनलाइन आवेदन चो प्रक्रिया 22 मई 2026 ले धरून 15 जून 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित कर लो रहा से। योग्यता चो बात करूँ तो उम्मीदवार के 12वीं पास होतर जरूरी है, जोन थाने रेखा चित्र विषय रतर आवश्यक है, या फिर राज्य सरकार ले मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण रतर जरूरी है। ये भर्ती चो चयन लिखित परीक्षा चो माध्यम ले हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम बाटले आयोजित करवात। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी का जे व्यापम चो आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.government.in ने जवन आवेदन करुक सकास।
4: संगवारी मन, ए तो रली रोजगार सूचना, अदाय फिर ले सुनू गीत मन के फिल्म लम्हे ले।
5: ये गीत फिल्म चो सबले यादगार गीत है, जोन थाने चूड़ी चो माध्यम ले प्रेमिका आपलो भावना के व्यक्त करे से।
4: स्वर आए लता मंगेशकर और ईला अरुण चो, गीतकार और संगीतकार आत सिवहरी। तो संगवारी मन, यह सुनू ये गीत।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है।

0: हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गीता, गीत मन के सुनते रहो ने कितरो हरिक लागे छे ने। आम चो गीत मन के जनिक थेबावे और आम चो संगवारी मन का जे भेट वार्ता बोले तो आनलो से ने एके बोले सुनो।
3: संगवारी मन सिविल जज जो तैयारी विषय ने सीमा टांडेले भेट कर सो चंद्रशी ठाकुर तो या सुनो ये भेट वार्ता के।
4: युवानी सुन रहे आप सभी युवा श्रोता दोस्तों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, हमें मार्गदर्शन कहीं से भी मिल सकता है। हम कभी अपने छोटे से, कभी अपने हम उम्र से, कभी बड़ों से और कभी बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेते हैं। कभी कभी तो प्रेरणा हमें अपने आसपास ही मिल जाती है। तो ऐसी ही एक प्रेरणा की स्रोत आज हमारे समक्ष हमारे स्टूडियो में बैठी हुई है। आप हैं सीमा टांडे और आपने सिविल जज एग्जाम अभी वर्तमान में क्लियर किया है। तो सीमा टांडे जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी की स्टूडियो में और आपको बहुत बहुत बधाई सिविल जज 2024 क्लियर करने के लिए। तो हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई।
5: मेरा जन्म यहाँ बस्तर में हुआ है। मेरा बचपन अगर मैं कहूँ तो डिमरापाल आश्रम में बीता है, जहाँ के जो फाउंडर हैं हम कह सकते हैं आदरणीय पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी हैं। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1st से 5th तक वो हुई है माता रुक्मिणी प्राथमिक आश्रम डिमरापाल में ही। और उसके बाद फिर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था। तो मेरा 6th से लेकर 12th तक का जो पूरा पढ़ाई है वो हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय धर्मपुरा बस्तर। और फिर उसके बाद मैंने 11th 12th के टाइम पे मैंने बायो लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया उस टाइम पे था नहीं कि मुझे कुछ और फील्ड चाहिए। तो बस ऐसा था कि यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस हैं इस तरफ पे कि मैथ्स या बायो ले लो, तो मैंने बायो लिया था। लेकिन फिर मुझे ये समझ आया कि मुझे आगे मेडिकल फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने, मेरी बड़ी दीदी हैं जो कि एक डॉक्टर ही हैं, वो भी दिल्ली में MD पैथोलॉजी हैं, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक बार उसके बारे में सर्च करना। तो फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि क्लैट नाम का एक एग्ज़ाम होता है जो कि है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद सिलेबस देखा, फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। तो फिर मुझे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आया कि हाँ, लॉ अच्छा फील्ड है, मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर तैयारी की, फिर मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिलाया और उसके बाद 1st अटैम्प्ट में ही मुझे हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर मिला। फिर वहाँ पर मेरी 5 साल का पूरा कोर्स हुआ BLLB ऑनर्स। फिर उसके बाद मैंने अपने लास्ट ईयर में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना जुडिशरी में ही है। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट सेमेस्टर से फिर तैयारी शुरू की थी। फिर फाइनली जब ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा 5 साल का कोर्स, उसके बाद मैंने बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ फिर मैंने सिविल जज की एग्जाम की तैयारी की। और देखा जाए तो प्रीलिम्स मैंने खुद से ही किया है, सेल्फ स्टडी की थी मैंने। ऑनलाइन कुछ सोर्सेज मुझे मिले थे, जैसे अनअकैडमी है, वहां से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। तो वहां के टीचर्स से मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं मेजर लॉज के सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जब हमारा तैयारी ऐसे आ गया था कि हाँ अब आने वाला है एग्जाम, तो मैंने टेस्ट सीरीज लिया था बिलासपुर में, एक भट्ट कोचिंग्स है जो कि मेनली सिविल जज की तैयारी कराते हैं। तो फिर मुझे उनका पता चला था, मैंने वहां से टेस्ट सीरीज लिया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। क्योंकि आप खुद से जब चीजें कर रहे हो तो आपको लेवल नहीं पता चल पाता ना कि आपको कितना मेहनत करना है, कितना किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो उसमें लेवल बहुत ऐसे हार्ड लेवल भी आते थे क्वेश्चंस के, तो ये समझ आ गया कि हाँ, इस टाइप का भी अगर आता तो मैं बना सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने प्रीलिम्स दिया जो कि बहुत अच्छा था मेरा। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि कैसा पैटर्न होता है। तो 3 स्टेजेस में होते हैं एग्जाम। पहला प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें 15 लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज। फिर उसके बाद होता है मेंस का एग्जाम। जब प्रीलिम्स मैंने दिया था तो मुझे ये समझ आ गया था कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम देख लेते हैं ना आंसर किया गया है, तो फिर मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। फिर मुझे ये था कि अब तक मैं खुद से तैयारी कर रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेन से मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक ही दिन का एग्जाम होता है हमारा मेंस का, तो उसमें होता है दो हमें जजमेंट राइटिंग आते हैं, एक सिविल केस के और एक क्रिमिनल केस के, और फिर दो हमारा ट्रांसलेशन होता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। मुझे था कि मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए उसमें, तो फिर मैंने बिलासपुर में भट कोचिंग से कोचिंग ली थी मेंस के लिए। फिर उसके बाद मेंस हुआ हमारा, जो कि मेंस के बाद तो थोड़ा से मतलब अगर आप हमारे बैच में लोगों से पूछेंगे तो सबका ऐसा रिएक्शन था कि पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आ गए थे और उसमें टाइम मैनेजमेंट सबका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो मेरा भी थोड़ा पेपर छूटा हुआ था। तो फिर ये था डाउट कि पता नहीं कैसा होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा था कि नहीं कुछ तो अच्छा हो सकता है, तो मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की, उससे ही मैं बिलासपुर चली गई थी सर के पास, भट्ट सर के पास ही। सर ने थोड़ी हमारी तैयारी करवाई और फिर मॉक इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, तो उससे बहुत हेल्प हुई थी। फिर फाइनल इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, फिर अच्छा रिजल्ट आया उसके बाद।
4: जी, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था?
5: यस मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट था ये।
4: कांग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले।
5: थैंक यू।
4: जैसा कि आपने बताया कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली और yes, कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उनकी भी मदद आपने ली, लेकिन कई बस्तर में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बहुत सुदूर गांवों में हैं, और उन सुदूर गांवों में जो श्रोता, जो युवा श्रोता आपको सुन रहे हैं और जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उनके लिए क्या क्या अवसर या फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं आप बताएं?
5: मैम, सिविल जज का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं मानती हूँ कोई भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अच्छे से अपना कॉलेज का पढ़ाई अच्छे से किया हुआ है ना तो क्लियर हो जाता है, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं हो पाता है। तो यही है मेनली, तो जो बुक्स है हमारे बेयर एक्ट्स होते हैं सारे मेन लॉ के, तो उन बेयर एक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी से आराम से क्लियर हो सकता है, कोचिंग आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी तो फोन सबके पास है, आई नो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है बस्तर एरिया में, लेकिन फिर भी जिनके पास फोन है वो फोन से भी मतलब उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम यूज कर सकते हैं फोन का, तो वहां से ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बुक से आप अगर पढ़ लो तो बहुत हेल्प मिल जाएगा, ऐसे अलग से कोचिंग जाने का कोई मतलब है नहीं, तो हो जाता है।
4: चलिए, उम्मीद है कि जो आपको सुन रहे हैं उनका भी हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ज्यादातर जो हमारे युवा श्रोता है उनके मन में ये डाउट रहता है कि हम पढ़ाई किस तरह से करें, अगर कोई सी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल जज का हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, तो पढ़ाई करने का आपका पैटर्न क्या था, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए सिविल जज के लिए? क्या प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है या तीनों को अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से तैयारी की जाती है इसकी?
5: मैम, करना तो एक साथ ही चाहिए सबके लिए, पर मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने शुरुआत में सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया था, लेकिन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हमको मेंस के एंगल से भी करना चाहिए, और अगर हम प्रीलिम्स का कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू का साथ में तैयारी हो जाता है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए कि क्या सेक्शंस हैं, क्या आर्टिकल नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चीज़ें हैं। तो अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमको सारी चीज़ों को एक साथ ही लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस प्रीलिम्स पे ध्यान दिया फिर उसके बाद मेंस पे। अभी ऐसा हो गया था कि सिर्फ हमको 2 ही महीने का टाइम मिला था मेंस के लिए, मेरे जैसे लोग जो पहली बार दे रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेंस को समझ पाना, तो इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत से करें तो बेहतर है।
4: जी, जैसे हमने प्रीलिम्स की बात की और मेंस की बात की, तो इसमें तो रिटर्न होता है, विद्यार्थी को जज करने के लिए 2-3 लोग नहीं रहते, लेकिन जब साक्षात्कार की बारी आती है तो वहां पे और भी बहुत सारे पैनल मेंबर्स होते हैं, 2 या 3 तो होते हैं, मिनिमम 2 या 3 तो होते ही हैं, और मैक्सिमम 6 के पैनल मेंबर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इंटरव्यू के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब आप सिविल जज के एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब?
5: मैम, हमारा जब इंटरव्यू हुआ था तो हमारे पैनल में 4 मेंबर्स थे, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं और उनके अलावा पीएससी के मेंबर्स होते हैं, 2 शायद एक्सपर्ट वगैरह होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये सब। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो चीज़ है, एक तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये जो 16 सब्जेक्ट्स हैं कि 15 लॉ के सब्जेक्ट और 1 आपका जनरल नॉलेज, इनका तो आपको वैसे हर चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आपसे मतलब बेसिक चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको हर आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए, सेक्शन नंबर याद होना चाहिए कि बेयर एक्ट का लैंग्वेज याद हो, पर आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मुझसे ऐसा कुछ पूछ रहे हैं तो मैं उसमें कौन से लॉ से कनेक्ट करके आंसर दूंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहो। सबसे ज्यादा वो ये देखते हैं, आपका नॉलेज तो मेंस प्रीलिम्स में पता चल चुका है, पर कॉन्फिडेंस अगर आपका है, उनको ये देखना है कि आप कोर्ट में जाके कैसे एडजुडिकेट कर रहे हो मैटर्स को, और आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रही हूँ सही है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका झलकता है आपके बातों से, आपका जो पर्सनैलिटी है उससे समझ आता है। तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और एक ये मैंने नोटिस किया कि मैंने अपने थ्रू आउट इंटरव्यू वाले पीरियड पे, वो जब 15 मिनट का टाइम था, उस पर एक स्माइल मैंने हमेशा बना के रखी थी। तो ये बहुत अच्छा संदेश जाता है उनके ऊपर, ये कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्फिडेंट भी है और ये आराम से चीजें हैंडल कर लेगी। तो ये होना चाहिए, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी समझ आती है।
4: जी जी। और जब आप तैयारी कर रही थी तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखा था? परीक्षा की तैयारी कर रही थी, सिविल जज के 3 चरण जो होते हैं उनकी तैयारी जब कर रही थी, तो आप खुद को स्वस्थ कैसे रखती थी? किस तरह का खान पान होता था, किस तरह की आपकी दिनचर्या होती थी?
5: Yes,
4: इन सारी चीजों के बारे में आप बताएं।
5: हाँ जी मैम, तो मुझे प्रिपरेशन के दौरान पे सबसे ज्यादा जो हेल्प किया है वो मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ। तो योगा से मेरा जो पूरा दिन में मैं बहुत एक्टिव रहती थी, और एक्टिवली मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेती थी। तो योगा है जो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहा है। और शाम पे इवनिंग वॉक, मैं बिल्कुल डेली इवनिंग वॉक करती थी, 1 घंटे का वॉक तो मेरा होता ही था। और खान पान में घर का खाना खाओ, बहुत अच्छा है, फल वगैरह खाना चाहिए। ये जो बोलते हैं हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड होगा, तो ये सारी चीजें।
4: आजकल जो युवा है उनमें भटकाव बहुत देखा जाता है, चाहे वो नशे की ओर हो, चाहे फोन की तरफ हो, चाहे पार्टी क्लबिंग इस तरफ हो, तो इस भटकाव से आप कैसे बचती थी?
5: मैम अगर फोन का बात करें, मतलब मैंने कभी कुछ हटाया नहीं था, डिलीट नहीं किया, इंस्टाग्राम वगैरह वो सब था मेरे पास, लेकिन मैंने उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करके रखी थी। जैसे लाइव लॉ एक चैनल है जिसमें आपको लॉ के डेली न्यूज़ आपको पता चलते रहते हैं कि हाँ आज कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो वो पता चलता है। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ कुछ एक दो न्यूज़ चैनल हैं, मैंने वो उनके भी पेज को फॉलो किया हुआ था। तो अगर मैं ओपन कर रही हूँ इंस्टाग्राम तो मुझे वही नज़र आता था, तो ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ कि कुछ और देख लिया जाए। तो ये होता था, इंस्टाग्राम भी मेरा ऑन था, मैं यूट्यूब भी खोलती थी। तो मैं अपने पढ़ाई पे मेरा, मैं शुरुआत से बहुत डेडिकेटेड रही हूँ अपने पढ़ाई को, क्योंकि मेरा था कि मेरे को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और मेरे को यही लगता है कि अगर आप गोल एक सेट कर लो, उसमें डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हो ना, तो आपको चीजें नहीं भटका सकती, आपको खुद पे कंट्रोल करना आप सीख जाओगे, कोई ऐसे बहुत दिक्कत नहीं है। पर वही आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा टारगेट है, मेरे को ये फॉलो करना है और ये यहाँ तक मेरे को पहुँचना ही है, तो हो जाता है।
4: जी, तो आपने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से एग्जाम होता है, किस तरह का रूटीन होना चाहिए, और कैसे अपने लक्ष्य के प्रति आपको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो और आप हमारे श्रोता साथियों से साझा करना चाहती हो तो कहें।
5: यस मैम, अगर मैं प्रिपरेशन के एंगल से बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपको साथ में करनी है, बहुत जरूरी है कि आप नोट्स कैसे बना रहे हो, नोट मेकिंग आपको आनी चाहिए। नोट्स प्रिपेयर अगर आप कर रहे हो तो ऐसा बोलते हैं हमारे में जनरली, मैंने सुना है लोगों से कि प्रीलिम्स के टाइम पे बस आप बेयर एक्ट पढ़ लो, लॉ पढ़ लो, आपको सब हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन ये सही नहीं है, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां से मिलेगी, उसके बाद फिर आप उसको जितने बार रिवाइज करोगे, बेयर एक्ट को जितने बार रिवाइज करोगे, उसके बाद फिर चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठती हैं। ये नहीं रहेगा कि मैं रट रही हूं या कुछ ऐसा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो, रिविजन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डेली अपना डिसिप्लिन रहना चाहिए इंसान को कि आप डेली कितने देर पढ़ाई कर रहे हो। और ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप अगर दिन में 6 से 7 घंटे भी अगर डेडिकेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको दिन में 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतने में भी कर सकते हो। ऐसा था कि मेरे को करना ही है तो मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती नहीं थी, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना दिन का टाइम पढ़ाई में ही देती थी, तो मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने कितना टाइम दिया है। पर ऐसा कि बस डेली रूटीन जो होता है उसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी प्रीलिम्स के टाइम पे तो स्पेशली।
4: जी जी, आपके जो डेडिकेशन था आपका उसने फल भी दिया है। और एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयां सिविल जज में सेलेक्ट होने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो श्रोता साथी आपको सुन रहे हैं और जो सिविल जज बनना चाहते हैं या फिर कानूनी क्षेत्र में अपना कुछ भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको आपसे मार्गदर्शन जरूर मिला होगा। आपने अपना समय दिया सीमा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: मैम एक और मैं चीज बोलना
4: जी जरूर जरूर,
5: ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को बोलूं, मैं हर स्टूडेंट और हर युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि आप हमेशा सपने बड़े देखो और उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो, पॉजिटिव सोचो और हर चीज हो जाता है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर ये बहुत जरूरी है जो मैंने लोगों के साथ ही नोटिस किया है कि वो अपने करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा स्कैटर रखते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ या फिर ये नहीं हो पाया तो ये कर लूँ। लेकिन मेरे हिसाब से आप एक पर्टिकुलर गोल टारगेट अपना सेट रखो, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो, जी जान लगा दो। अगर नहीं हो पा रहा किसी भी रीजन से तो उसके बाद फिर आप भले प्लान बी की तरफ का सोचना। और जो हमारा एज है ये 20 से लेकर 30 साल तक का जो एज होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम पे अगर अच्छी मेहनत कर ली हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे हम। और स्पेशली फॉर फीमेल्स मैं ये कहूंगी कि अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाओ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनो, ताकि आपकी जो भी डिसीजंस हैं उन पे किसी का भी कंट्रोल या डोमिनेंस ना रह सके।
4: जी तो इसी संदेश के साथ हम आज की ये जो भेंट वार्ता है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, धन्यवाद आपका।
5: थैंक यू मैम।
2: संगवारी मन सीमा तांडे जी जो प्रेरणादायक गोड सुनन आपके ये सीख मिले से कि मेहनत अनुशासन और आत्मविश्वास जो दम ने कई बड़े लक्ष्य हासिल कर सकू। उम्मीद करूं से कि ये मन जो गोट न्यायिक सेवा जो तैयारी कर तो युवा मन का जे मार्गदर्शक साबित हो दे।
3: संगवारी मन अदय बड़ू बे ज्ञान ध्यान जो गोट बांट पाते ताकि आप मन देश दुनिया जो खबर ले जुड़ रहा।
2: तो संगवारी मन अदय आमी गुठियावा सामान्य ज्ञान जो रोचक दौर जो बारे ने भूविज्ञान।
3: हाँ भूविज्ञान हुन विज्ञान है जोन थाने पृथ्वी जो संरचना चट्टान खनिज और पृथ्वी ने होतो विधि प्रकृति प्रक्रिया जो अध्ययन करा हुआ है।
2: भूविज्ञान का है भूविज्ञान पृथ्वी जो उत्पत्ति संरचना और हुन जो विकास जो अध्ययन करुआ है। हुनी विज्ञान जो मदद ले आम के पृथ्वी जो करोड़ों वर्ष जो इतिहास के जानुक हुआ है।
3: पृथ्वी की परतें, पृथ्वी मुख्य रूप ले तीन परत ले बटली से। पहला है भूपर पट्टी, मेटल और क्रोट इथाने भूपर पट्टी सबले बाहरी और सबले पतली परत आए।
2: सबले कठोर खनिज हीरा, पृथ्वी ने मृत्यु बीति सब पाले कठोर खनिज आए, होनी कारण होंचो उपयोग आभूषण चो संगे संगे औद्योगिक काम ने बले करुआत।
3: ज्वालामुखी और भूकंप, भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी जो आंतरिक गतिविधि जो कारण उत्पन्न हुआ है, ये जो अध्ययन भूविज्ञान जो गोटक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: खनिज जो महत्व, लोहा तांबा सोना और एल्यूमिनियम जैसन खनिज आम जो दैनिक जीवन और औद्योगिक कार्य महत्वपूर्ण है, ये खनिज मन जो खोज और अध्ययन ने भूविज्ञान जो महत्वपूर्ण भूमिका आए।
3: संगवारी मन ये तो रही सामान्य ज्ञान जो गोट बात, अदाय फिर ले बड़ो गीत बाटे और सुनो गीत फिल्म सौदागर फिल्म ले।
2: ये गीत के गावला से लता मंगेशकर, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, तो ये सुनो ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: संगवारी मन अगला गीत है फिल्म आराधनालय, शोरदिला से मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
4: गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एसडी बर्मन। तो संगवारी मन यह सुनो ये गीत के।

0: हाँ तो संगवारी मन, आम्ही आशा करू से तुम्ही सप्पाय के आजीचो युवाणी कार्यक्रम पसंद दिली होती।
1: अदाय आमचो जातो समय बले होली से, तो आजी काजे आमके दिया स्वेदा, मैं आप मनचो कंपियर दोस्त रोशनी नाग
0: और मैं गीता ठाकुर, शुभ संध्या,
1: जुहार।

0: युववाणी, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का ये कार्यक्रम हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, शाम के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। शाम के 6:10 होने वाले हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ी में समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डे का है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहीन। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी है 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रही। उमन पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड ला तोड़ी है जौन पहली घाव 13 मई 1952 के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रही और 27 मई 1964 तक पद्म बने रही। पंडित नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन के रहीस। 26 मई 2014 ले आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री श्री मोदी के सरलक कार्यकाल अब 4,399 दिन के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मन नरेंद्र मोदी ल देश के सबले ज्यादा बेरा तक सरलक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मां बधाई दिन है। यही बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज एक प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ल सरलक 2 कार्यकाल तक सबले ज्यादा बेरा तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मां बधाई दिन। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान सदस्य मन प्रधानमंत्री श्री मोदी पर सम्मान जतैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक के अगुवाई करही। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के मुताबिक एसओ के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। परिषद के बैठक में ये सोचला साकार करे खातिर गोट बात करे जाही। परिषद के बैठक में मुख्यमंत्री उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचा में गोट बात करही जौन 4 मुख्य स्तंभ आधारित हवे। बैठक में पाछू बछर 26 से 28 दिसंबर के दौरान राखे गए मुख्य सचिव के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन के सिफारिश में घलो गोट बात होही। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले लागू होही। एमा छत्तीसगढ़ ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन जारी करेगे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री मनसंग हुए वर्चुअल बैठक

0: ये जानकारी दी। ये रकम ले ग्राम पंचायत ला सोझे फायदा मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास काम ला गति मिली। बैठका में श्रमिक मन ला बेरा में मजदूरी भुगतान ई केवाईसी और डिजिटल व्यवस्था ला मजबूत करे मा जोर देगी। बिलासपुर में काली राखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर किहिन के विकसित भारत के आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी है। ओमन किहिन की बछड़ 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में हर एक नागरिक के महत्ता की भूमिका हवे। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू व केंद्र सरकार के आने आने जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धि लबतात राष्ट्र निर्माण पर सामूहिक प्रयास के आह्वान करें। उमन किहिन की प्रधानमंत्री के अगुवाई में देश आने आने क्षेत्र में तेजी ले बढ़वार करत है। राज्यपाल रमन डेका है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहिन है। राज्यपाल ले आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल डॉक्टर सिंह ले विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा के स्थिति और जरूरी शैक्षणिक सुविधा के संबंध में गोटबात हुई है। राज्यपाल ले प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा समेत आने आने अधिकारी मन घलो भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल शहर और नवा रायपुर में लगाए गए पौधा के रख रखाव में विशेष ध्यान देबर किहिन है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में 28 जून के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चला जाही। एमा जन्म ले 5 बछर तक 3,45,000 ले ज्यादा लेका मल्ला पोलियो के खुराक पियाए के लक्ष्य रखे गए है। रायपुर जिला में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाही। अभियान के दिन जौन लैका मन पोलियो के खुराक नहीं पी पाही ओमल्ला अवैया 2 दिन तक घर घर जाके खुराक दे जाही। छत्तीसगढ़ में रद्दा दुर्घटना में कमी लाए बर तकनीक आधारित निगरानी, बने चालक प्रशिक्षण और यातायात नियम के पालन में जोर दे जावत है। नवा रायपुर में रखे गए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के बैठका में उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा के संगे संग मंत्री केदार कश्यप तैयारी के समीक्षा करी। बैठका में बताया गया है कि जनवरी ले मई 2026 तक 31,000 ले ज्यादा गाड़ी के फिटनेस जांच करे गए है। उन्हें ANPR कैमरा और आने तकनीक के माध्यम ले 61,000 ले ज्यादा चालान जारी करेंगे है। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है काली रायपुर क्षेत्र के आने आने आवासीय कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटी के अगुवाई करैया मन संग बैठका करके उखर समस्या और सुझाव पर गोटबात करी। बैठका में रद्दा, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधा ले जुड़े मुद्दा उठाएगी से। श्री चौधरी है संबंधित अधिकारी मल्या समस्या के समाधान करे बर कार्रवाई करे के निर्देश दीन। रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR है अनुसूचित जाति उपयोजना में धान बीज वितरण कार्यक्रम राखीन। ये दौरान पचेड़ा, बेलटुकरी और बिठिया गांव के 170 ले ज्यादा किसान मल्ला उन्नत धान बीज बांटेगी। संस्थान के निदेशक डॉ PK राय है किसान मल्ला संतुलित खातु बौरे और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन के जानकारी घलो दीन। कार्यक्रम के उद्देश्य उत्पादन ला बढ़ाना और किसान मन के आमदनी में बढ़वार करना। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में पाछू 26 मई के हुए एक ज्वेलरी व्यवसायी के हत्या और लूट के वारदात के खुलासा करत पुलिस 7 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले करीबन 40 ग्राम सोना और 4 किलो ले ज्यादा चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में बौरे गाड़ी जब्त करे गए है। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा बतेन कि मुख्य आरोपी खुशीराम साहू बिहार और झारखंड के अपन संगी मनसंग मिल के व्यापारी प्रदीप सोनी ले सोना चांदी ले भरे बैग लूटे के प्रयास करीन। व्यापारी है जब एकर विरोध करी तभे एक आरोपी है ओखर ऊपर गोली चला दीस जिमा ओखर मौत हो गये। एकर बाद आरोपी लूटे आभूषण लेके फरार हो गये। उमन बतेन की बिलासपुर रेंज और गोरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस कार्रवाई करत छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में दबिश दे के 7 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस साले ओना धान खरीदी केंद्र मा 99 लाख रूपया ले ज्यादा के घोटाला के मामला मा 4 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे हे। ये आरोपी मना बछर 2025-26 मा 3,140 कुंटल ले ज्यादा धान बिसाए के फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखा के घोटाला करीन। उन्हें बारदाना मा घलो हेरा फेरी करीन है। पुलिस है ये मामला मा पहली समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार कर ली है। बालोद जिला के डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल के टीम हा गांजा तस्करी के आरोप में 5 जिन ला गिरफ्तार करके उखड़ती ले 72 किलो गांजा बरामद करे हैं। जब्त करेगे गांजा के कीमत करीबन 26 लाख रुपया बताए जाते। मुखबिर ले मिले सूचना में पुलिस भेड़ी तिराहा तीर नाकाबंदी करके गाड़ी के जांच करीन। यही बेरा 4 आने आने फटफटी ले ओडिशा ले मध्य प्रदेश ले जावत गांजा पकड़ेगी। पुलिस चारों आरोपी और फटफटी ला जब्त करे है। और अब थोरकुन समाचार सार मा। राज्य शासन है गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा ला अस्थायी रूप ले सहकारिता और रजिस्ट्रार और सहकारी समिति के आयुक्त नियुक्त करे हैं। और कबीरधाम जिला मा साइबर सेल और पुलिस के टीम है आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलैया 2 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश का करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डेका है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाय खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहीन। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। वस्त्राणां कृते पीएलआई योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवाय विशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः। रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धः स्वीकृतः। अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतांत्रिक रूपेण निरन्तरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमंत्री अवदत्। श्री मोदी 14,000 वर्षे मई मासस्य 26 दिनांके शपथ ग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्। यो हि प्रथमवारं 2059 वर्षे मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृत्य 64,29 वर्षे मई मासस्य 27 दिनांक पर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पंडित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमंत्रित्वेन कार्यकालः 98,300 दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99,300 दिनानि यावदस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायि विश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानेत्यादय केन्द्रीय मंत्रिण स्वतंत्र भारत दीर्घतम निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशया प्रेषितवन्तः। सामाजिकांतर्जालीय पटलीय संदेशे डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रीय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायी विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मंत्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मंत्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामंत्रिणा राजनाथ सिंहेन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रिणा जितेन्द्र सिंहेन, संस्कृति पर्यटन मंत्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, विधि न्याय मंत्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य सभायां मंत्रिमंडलस्य सदस्याः अपि प्रधानमंत्रिणं मोदीवर्यं सभायां उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं, वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं, समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिंश्च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा पीएलआई इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं द्वाविंशति नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्र मंत्रालय अवदत् यत् योजनायाः तृतीय चक्रस्यान्तर्गतं आहत्य 96 समवाय विशेषाः चिताः सन्ति, येषु 20+800+12,000 कोटि रूप्यकाणां प्रतिबद्ध निवेशः, 58,000 कोटि रूप्यकाणां प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहांस्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49,400,000 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्यान्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मंत्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पान् च निरूपयति।
2: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
1: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
1: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मंत्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,100,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 770 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
2: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और दो फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके दो फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से

0: एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य सीएनजी इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च एलपीजी संपर्कान् पीएनजी संपर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्यवायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लंघनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिका प्रहारे नागरिकाणां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
4: हिद आकाशवाणी जगदलपुर गोंडी समाचार बुलेटिन तसंगे नन्ना रमेश कुमार पुड़ियामी नेणता मुख्य समाचार। प्रदेश ता 7 जिला ना ग्रामीण परिवार ना आय प्रसी केलाय एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया नद। उप मुख्यमंत्री अरुण साह बस्तर प्रवास ता दौरान सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिला ता निकाय विकास कामना समीक्षा की तौर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना का तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हता, विद्यार्थी नोर 15 जून एवना आवेदन किया फर्दी तौर। सुकमा जिला ता बरसे रोशन जेईई एडवांस ते 634वीं रैंक हासिल कित्तोर। इंजे समाचार कुंडे। प्रदेश ता 7 जिला ने ग्रामीण परिवार ना आय पड़सी के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किए नद। मुख्य सचिव विकासशील इत संबंधे अधिकारी लोग विस्तृत कार्य योजना तैयार किए न निर्देशित तौर। इत कार्यक्रम बस्तर कांकेर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर और मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला ते शुरू किए नद। मुख्य सचिव कार्यक्रम तहत कुंडे लक्षित परिवार किन आजीविका गतिविधि तिना जोड़ा के लाए कत्तोर। बैठक ते अधिकारी लोर कत्तोर की एकीकृत आजीविका कार्यक्रम तहत इव जिला ना कुंडे लक्षित परिवार किन कृषि वन पशुपालन मछली पालन और गैर कृषि डेढ़ा ने पूर्ण नवाचार ता माध्यम तिना आमदनी पड़सी के लिए प्रेरित किए नद। छत्तीसगढ़ ता जल प्रबंधन पहल तीन राष्ट्रीय स्तर तक सराहना दुर्कता। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय सिंचाई दक्षता प्रशिक्षिया और जल संसाधन ता नल उपयोग तलय राज्य ते लागू कमांडेड़ा विकास और जल प्रबंधन आधुनिकरण इतके MCAD मॉडल ता प्रशंसा किता। मंत्रालय ता और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की इनवेन छत्तीसगढ़ ता तर्ज इद मॉडल योजना तीन अपना किए सलाह इत्ता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इदिन किसान जल संसाधन विभाग और सुशासन ता प्रति राज्यता प्रतिबद्धता ता सम्मान कित्तोर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपुन नालू दिनाना बस्तर प्रवास दौरान सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिला ता दौरा कित्तोर। अपुन प्रवास ता माड़ेंग दिना 8 जून ते श्री साव सुकमा ते मिशन अमृत 2.0 तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ता काम ना निरीक्षण कित्तोर और योजना ता तहत सबरी कुयर तक बने माय मुंतद इतके वेलता काम तीन वेंड उड़तोर। ईद मौके तक श्री साव पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तार काम ते तेजी तत्तलाय कित्तोर। मिशन अमृत योजना ता तहत 86 करोड़ रुपयाना लागत तिना सुकमते उंडना एयर व्यवस्था ता सुदृढ़ीकरण किए मुंता आदिना 54% काम पूरा अत्ता। अगे श्री साव कुमारास्ते 11,62,00,000 रुपयाना लागत तिना बने आय मुंता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तावेन निरीक्षण कित्तोर। करीब 10 एकड़ डेढ़ा ते बने आय मुंता एक कॉम्प्लेक्स ते फुटबॉल मैदान एथलेटिक्स ट्रैक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट प्रशासनिक भवन बॉक्स क्रिकेट स्विमिंग पूल तासुंता सुविधा विकसित की अमनता। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब अत्तत 7 जून ते जगदलपुर ता लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरी प्रशासन विभाग ता अधिकारी लोरा बैठक पॉइस निर्माण काम ना समीक्षा कित्तोर और कुंडे निर्माण काम और विकास योजना ना क्रियान्वयन ते तेजी तत्तलय और निर्धारित समय सीमा ते पूरक येना निर्देशित तोर। श्री साव स्वच्छता दीदी न संघ वे समय समय ते ओड़ा स्वास्थ्य परीक्षण किया और सुरक्षा किट प्रदान किया के तोर। श्री साव शहर ता नालीना साफ सफाई तक विशेष ध्यान या और मुसूड़ता मुन्ने कुंडे व्यवस्था सुनिश्चित किया निर्देशित तोर और नगरी निकाय ते रेन वाटर हार्वेस्टिंग तीन प्राथमिकता या जल संरक्षण वर्षा जल संचयन और तालाब ना सफाई ने नवाचार अपना केनक जोर इत्तोर। इद दिना श्री साव दंतेड़ा जिला ता क्रेंदुल ते 7,19,00,000 रुपया ना लागत ते निकाय विकास काम ना लोकार्पण और भूमि पूजन कित्तोर। श्री साव ऑक्सीजन ते बस्तर ता टाइगर बॉय चेंद्रुना प्रतिमाता अनावरण वेन कित्तोर। कार्यक्रम ते उप मुख्यमंत्री बस पार्किंग और स्टेज स्ट्रेट ता बोकते सीसी रोड और विद्युत व्यवस्था ता लय 1,58,00,000 रुपया स्वीकृत किया घोषणा कित्तोर। दंतेवाड़ा ते ही श्री साव गिदमतीना बांगाबाड़ी एवना बनेम आयमुनता 10 किलोमीटर लंबा दंतेवाड़ा बाईपास सड़क और ईद अरते डंकनी कुयर तक बने मायमुता उच्च स्तरीय पुल ता निरीक्षण वेन कित्तोर और ईद बाईपास मार्ग तक आवाजाही उबाई शुरू किया और पुल निर्माण काम वायना दिसंबर लेंज एवना पूरा किया कित्तोर। अपुन बस्तर प्रवास दौरान लोक निर्माण मंत्री अरुण साव रायपुर जगदलपुर मार्ग तक केसकाल घाट पोरलेन बाईपास रूट ता निरीक्षण कित्तोर और निर्माण एजेंसी किन समय सीमा ते गुणवत्ता ता संग काम पूरा किया न निर्देशित तोर। 11 किलोमीटर तिना दिब्बे लंबा ईद मार्ग ता निर्माण 308 करोड़ रुपया ता लागत तिना के मुंता ईद बाईपास ते रन बढ़िया और रन मध्यम पुल पाड़नद। श्री साव जगदलपुर प्रवास दौरान निकाय विकास काम ना निरीक्षण कित्तोर और अधिकारी लोर कुंड काम समय सीमा ते पूरा किया निर्देशित तोर और निर्माण दिन नालंदा परिसर तावे निरीक्षण कित्तोर। आगे श्री साव कोंडागांव जिला मुख्यालय ते लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नगरी प्रशासन और खेल और युवा कल्याण विभाग ता काम ना समीक्षा कित्तोर और जिला ता मुंडालो नगरी निकाय कोंडागांव केसकाल और परसगांव ते मुसूड़ता मुन्ने कुंड जरूरी तैयारी समय तक पूरा किया माने की नेल्ला उंडाना एर इया और स्वच्छता पड़ी तासना निर्देशित तोर। संगे ई मार्ग पुल और पुलिया निर्माण काम ना गुणवत्ता ता संग समय सीमा ते पूरा किया कित्तोर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ते 21 जून ते आयोजित आयनद नीट UG पुनः परीक्षा तलाय परीक्षा डेढ़ाना सूचना जारी कित्ता। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट तक लॉग इन किस अपुन परीक्षा डेढ़ाता जानकारी दुर्कितिया प्रदी तोड़। छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ता ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थी लोरलय मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना ता तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कित्ता। योजना ता माध्यम तिना चयनित विद्यार्थी लोर प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय ने कक्षा 6वीं तिना 12वीं एवं निःशुल्क शिक्षा इनद आवेदन जमा की इनद माड़िंग दिनम 15 जून निर्धारित कित्ता। चयन परीक्षा 5 जुलाई ते आयनद। ईद वर्षा विशेष पिछड़ी जनजाति ना पिल्ला नलय मुन्नेदाम 2% आरक्षण ता प्रावधान वेन कित्ता। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय अत्तत 5 जून ते रायपुर ते आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना ता अंतर्गत 10वीं और 12वीं ता बोर्ड परीक्षा ते टॉप 10 ते टेढ़ा पाड़नोड पंजीकृत निर्माण श्रमिक ना पिल्ला किन सम्मानित कित्तोर। इदिन कांकेर जिला ता छात्रा महेश्वरी कोर्राम वेन शामिल मिंदे। चारामा विकास खंड ता कानापुर नारता महेश्वरी 12वीं ता बोर्ड परीक्षा ते 96.40% अंक दुर्कीता। कार्यक्रम ते मुख्यमंत्री महेश्वरी कोर्राम तीन 2,00,000 रुपया ता चेक इत्तोर अधीनग स्कूटी तलाय 1,00,000 रुपया शामिल मिंदे। सुकमा जिला ता ग्राम जापरा निवासी बरसे रोशन देशमता प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस ते 634वां रैंक हासिल कित्तोर। हाली ते तुंगल डैम ते आयोजित कार्यक्रम ते कलेक्टर अमित कुमार बरसे रोशन तीन सम्मानित कित्तोर। ईद अवसर तक कलेक्टर कित्तोर की जिला प्रशासन रोशन न पढ़ाई ता पूरा पीस इनद। गौरतलब मिंदे की सुकमा जिला प्रशासन ताकेट विद्यार्थी लोर प्रतियोगिता परीक्षा ता तैयारी के लिए चितिज कोचिंग इंस्टीट्यूट ता संचालन की मुंता। देशमता विश्वसनीय लोक प्रशासक आकाशवाणी 8 जून ते अपुन 90 वर्ष पूरा आयना वेड़का पाड़ता। वर्षा 1926 ते 8 जून ते इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस ता पेदेड़ बदलेम किस ऑल इंडिया रेडियो कित्ता। वर्षा 1956 ते ऑल इंडिया रेडियो ता पेदेड़ बदलेम किस आकाशवाणी कित्ता। आकाशवाणी ने 591 रेडियो स्टेशन ना संचालन कीता। आकाशवाणी प्रसारण 23 माटा और 146 बोली ने कीता। आकाशवाणी ता दे वाक्य बहुजन इताय बहुजन सुकाय। विश्व साइकिल दिवस ता उपलक्ष्य ते अत्तद 7 जून ते प्रदेश ता निकाय जिला ने फिट इंडिया मूवमेंट ता तहत संडे ऑन साइकिल का आयोजन किता। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर ते आयोजित कार्यक्रम ते शामिल अत्तोर। ईद मौके तक श्री साव अपुन ई साइकिल चलाकिस पर्यावरण संरक्षण और पिट मंदना संदेश इत्तोर। कार्यक्रम ते सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश चिकारा वेंड शामिल अत्तोड़। आगे कोंडागांव जिला ते वेंड संडे ऑन साइकिल तथा साइकिल रैली पेपीहता। ईद रैली विकास नगर स्टेडियम तिना शुरू अत्ता जोन नकै मार्ग नाले आसो मल्स स्टेडियम एवता। रैली ते कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, संघ नकै विभाग ना अधिकारी कर्मचारी विद्यार्थी खिलाड़ी और आम माने शामिल अत्तोड़। साइकिल रैली तिना मुन्ने प्रतिभागिलोर योग और जुम्बा गतिविधि ने बाग पोइतोड़। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई बस्तर डेढ़ते मून विधानसभा प्रभारी लोरा नियुक्ति किता। आगे प्रदेश कार्य समिति तेवेंट उन पूर्ण सदस्य तीन शामिल किता। पार्टी दिनेश कश्यपिन बीजापुर और रूप सिंह मंडाविन कोंटा विधानसभा डेढ़ता प्रभारी पड़ता। आगे श्रीनिवास राव मद्दीन बस्तर विधानसभा डेढ़ते प्रभारी और श्रीनिवास मिश्रान सह प्रभारी नियुक्त किता। इदिना और माया जाड़ीन भाजपा प्रदेश कार्य समिति ते शामिल किता। अगय पार्टी ते उर्मिला तोकल तीन बीजापुर जिला भाजपा अध्यक्षता दायित्व सौंपा किता। प्राकृतिक खेती तीन बढ़ावा इया और रासायनिक खादना असंतुलित उपयोग तीन कम किएना उद्देश्य तिना छत्तीसगढ़ संघ देश में ते 1 जून तिना खेत बचाओ अभियान चला के मुनता। दंतेवाड़ा जिले ते ईद अभियान 5 चरण ते संचालित किएनद। मुन्ने चरण ते मृदा स्वास्थ्य मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड फाड़नद। अगय दूसर चरण ते रागी कोदो कुटकी तासुंता पौष्टिक मिलेट्स और स्थानीय फसल किन प्रोत्साहित किएनद। तीसरा चरण ते किसान किन जैविक खाद ब्लू ग्रीन एलगी और वर्मी कंपोस्ट उत्पादनता प्रशिक्षण इनद। चौथा चरण ते पारंपरिक बीज मंडिया और सामुदायिक बीज बैंक ना स्थापना किस स्थानीय बीज ना संरक्षण तीन बढ़ावा इनद। अगे पांचवा और माड़िंग चरण ते वेडना पेटनक ग्लिरीसीडिया तासुंता अरित खाद इनाव पोदला वाटनद। ईद अभियान तहत जिला ते 135 ग्राम पंचायत ते ईद अभियान लागू किएनद। इदिना तहत 4300 हेक्टेयर ते मिलेट्स उत्पादन और 40 सामुदायिक बीज बैंक ना स्थापना किएनद लक्ष्य वाटता। वन मंत्री केदार कश्यप अतत 8 जून ते नारायणपुर ते पद्मश्री वैदराज हेमचंद मांझी और वरिष्ठ साहित्यकार शिव कुमार पांडे ना संग मुलाकात कित्तोर। ईद अवसर तक श्री कश्यप ओड साल और श्रीपल इस सम्मानित कित्तोर। वन मंत्री समाज संस्कृति साहित्य और पारंपरिक ज्ञान ना संरक्षण और संवर्धन ते ओड़ा योगदान ता सराहना कित्तोर और कित्तोर की ओड़ा काम तिना पूर्ण पीढ़ी तीन प्रेरणा दुर्किता। दिव्यांग पिल्लाना शिक्षा स्वास्थ्य पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा योजना ता लाभम इना उद्देश्य तिना दंतेवाड़ा जिला ते 8 जून तिना विशेष सर्वेक्षण अभियान शुरू किता। 15 जून एवना चलेम आयनद ईद अभियान तहत जिला ता कोंडे स्कूल तिना ओतुर शिक्षक तीन इंक्लूसिव एजुकेशन एम्बेसडर ता रूप ते चयनित किएनद। वेड शिक्षक लोर दिव्यांगता ता पहचान डेटा संकलन और समावेशी शिक्षा तीन संबंधित विशेष प्रशिक्षण इनद। प्रशिक्षण ता पेर के 16 जून तिना 7 जुलाई कोंडे नार और वार्ड ते लोना लोना अंज दिव्यांग पिल्ला किन सर्वेक्षण किएनद। इदिना लय शिक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिन और स्वास्थ्य कर्मी लोरा टीम गठित किएनद। जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि ना पालक शिक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन सामाजिक संगठन और आम माने तिना अभियान ते सक्रिय भागीदारी निभा केना अपील कित्तोर। विश्व पर्यावरण दिवस ता मौका तक अतत 5 जून ते कोंडागांव जिला ता केसकाल जनपद ताकेट एक पेड़ माँ के नाम अभियान तहत पौधारोपण कार्यक्रम ता आयोजन किता। ईद अभियान तहत केसकाल जनपद पंचायत ता कोंडे 69 ग्राम पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ता करीब 350 इतगरही लोरा आवास परिसर ते पौधारोपण किता। माणिंग ते मुख्य समाचार विंडे ओंडम। प्रदेश ता 7 जिला ना ग्रामीण परिवार ना आय पिड़सी केले एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किए नद। उप मुख्यमंत्री अरुण साह बस्तर प्रवास के दौरान सुकमा बस्तर दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिला का निकाय विकास कामना समीक्षा कित्तोर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना का तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होता। विद्यार्थी लोर 15 जून एवना आवेदन किया प्रदी तोड़। सुकमा जिला का बरसे रोशन जेईई एडवांस ते 634वीं रैंक हासिल कित्तोर। इदिना संगे गोंडी समाचार बुलेटिन का ईद अंकिगे माड़िता जोहार।
3: गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया गया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोता हम आपको बता दें, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आम जो गांव ग्रामीण श्रोताओं का यह कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। रात्रि 8 लोकगीतों के कार्यक्रम कुड़ई फूल में आप सुनेंगे रैबारी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पीला मन काजे गोठ इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोविंद सिंह के बारे में। रात्रि 8:30 प्रस्तुति होगी शंभुनाथ नाग की। पुरानी फिल्मों से इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर ओवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और शाकंबरी योजना के बारे में। इस बारे में जानकारी देंगे अजय मेरी, बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10 आप सुनेंगे परिचर्चा हल्बी बोली में, विषय होगा बस और नाता पंता का सामाजिक महत्व। प्रतिभागी होंगे मनबोध बघेल और बलदेव मौर्य, संचालन होगा बलबीर सिंह कच्छ का। रजनीगंधा पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। इस समय शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर बने रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दो कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। साथ ही यह 140 करोड़ भारतवासियों के अटूट विश्वास, सम्मान और श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को प्राप्त अभूतपूर्व जनसमर्थन का सशक्त प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। यह ढांचा चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले वर्ष 26 से 28 दिसंबर के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इस संबंध में कल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरिम आवंटन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की है। छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रूपये का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, ईकेवाईसी और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने आवश्यक कदम उठाने को कहा है। राज्यपाल से आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने डॉ सिंह से विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति और वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 3,45,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर जिले में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। अभियान के दिन छूटे बच्चों को अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायपुर क्षेत्र की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। बैठक में सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और अधोसंरचना विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए। श्री चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर भी जोर दिया। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में बीते 26 मई को हुई एक ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 40 ग्राम सोना, 4 किलो से अधिक चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किए गए हैं।
11: 26 मई के शाम को कोटमी साप्ताहिक बाजार में एक सोने चांदी के व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी और इसी क्रम में अभी तक हमने जो इस घटना से जुड़े जितने आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनसे अलग अलग उस पे सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो बरामद सामग्री में हमको 2 नग देसी कट्टा मिला हुआ है और 4 नग कारतूस मिले हुए हैं। इसके अलावा जो आभूषण हमने जब्त किए हैं उसमें 40 ग्राम सोना और चांदी लगभग 4.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हम लोग से रिकवर कर पाए।
10: बालोद जिले की डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 26 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने भेड़ी तिराहा पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इसी दौरान 4 अलग अलग मोटरसाइकिल के जरिए ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने चारों मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने साल्हे ऊना धान खरीदी केंद्र में 99 लाख रुपए से अधिक के घोटाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने वर्ष 2025-26 में 3,140 क्विंटल से अधिक धान खरीदी की फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखाकर यह घोटाला किया। वहीं बारदाने में भी हेराफेरी की। पुलिस इस मामले में पहले ही समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर चुकी है। और पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
12: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और वर्षा का मुख्य क्षेत्र जो है वो बस्तर संभाग होने की चांसेस है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन में होने की चांसेस है और ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी जारी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में 2 दिन तक कोई विशेष परिवर्तन होने की तो चांस नहीं है।
10: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से सहकारिता और रजिस्ट्रार तथा सहकारी समितियों का आयुक्त नियुक्त किया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने रिसाली नगर निगम की पार्षद पार्वती महानंद को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में नोटिस जारी कर 25 जून तक जवाब मांगा है। जांजगीर चांपा जिले के पुटपुरा गांव में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सक्ती जिले के सेंदूरस गांव में बीते 2 और 3 जून की दरमियानी रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में माल खरोदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के बाद लूट का माल खरीदने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम जिले में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने आईपीएल क्रिकेट के मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टे का संचालन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में आज एक पटाखा गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
13: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम फुलो राम राम
1: राम राम भादु राम राम खुबे दिन ले भेट घाट ने
0: ओ खुबे दिन ले भेट घाट लु काय दक्त फुलो आमी दुनो तो जुवार बैट कर लु ने
1: तो दादी मन कोल कर तो रे
0: हो बस्तर के सर कार्यक्रम सुन तो सपा गांव कारी दादा दीदी सियान साजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं बादु
1: और मैं फुलो
0: आमी दुनो चो बाट ले
1: राम राम और नन ननी पीला मन के बोले हम तो दोनों से बाट ले खो खो मैं यार चुमा बोले
0: धक फुलो रज दिन चो सनाजी बोल ज्ञान दियान चो गोट मन संग संग गीत गोविंद मन
1: बदर हमर सने मंत्र भादु
0: हो
1: आज धक ये आज खिनिक मा पानी मार दी ने जीव के खिनिक अस्थिर बोले लागली
0: अस्थिर लागली और कोनी कोनी बाटे आजकल तो मारे से वे ने खिनिक खूब छे
1: घाम कितरो रहे नी
0: हैं
1: गरम काज कसन कसन लागते रहे मंत्र खिन पानी मार लो के खिन जीव बोले अस्थिर लागली
0: अस्थिर लागली और पानी बीच बीच ने जसन की गामी छी ओले बोल तो नी पीड़े ने बीच बीच ने पानी मारते रहले हम के ओले खिनिक अस्थिर लागवा जसन की
1: हम किस नहीं चेड़े सुरुंद जानवर होली नारे ए, ए बूटा मन बोल होली सब पाए की अच्छा लगे थे एक नहीं
0: हो
1: सब पाए बाट दक्त रो जन पानी चो
0: हो और दक के पुलो ए दे एक एक सप्ताह बाट दाय बरसात बोल शुरू होए दे बेने और असन वेला दकनी रान ले नहीं मन मन चो जसन की बोड़ा आए चाहती आए ने और तो ये बोले पर आए तो आर दिन ने पर उन कोलियारी बाजी गेन ले बोलून सांग तेरे
1: ये सब आज की दक्कली छाड़ूक नहीं भाई का
0: ये सब आयाम के नहीं रान नहीं मिले मेरे से ने
1: और फिर बोड़ा छाती वाले फिर रामट के सुरता पड़ू है
0: ने अब बड़ा है बास्ता है रान ने तो
1: बरन बरन चो
0: मीरे से संगे संगे जसन की गांव पर चो जसन जंगल आसे कोनी बाट रान आसे ने उनमन के जसन की बियान उठन बाती दातु नाय नाल पर पान नाय नाल पर दारू आए
1: नाले पर जड़ी बूटी बोल मीरू
0: हो जड़ी बूटी आए सब आए कि जसन रान ने जान बाती आने सोत ने
1: आने सोत और एमन फिर बीके सोत
0: बीके सोत
1: और चार पैसा कमाए सोत
0: कमाए सोत
1: मंत्र भादु
0: हो
1: दक

0: এ সবাই জিনিস বল আমাকে তো মেরেছে, মানতে রেছো কাজে আমাকে রান রাতর খুবই জরুরি
1: খুবই জরুরি আয়
0: আর একে রাখ রাখা বলে আমাকে করতো রায়
1: করতো রায়। আজকাল দেখ পুলো গাঁও গাঁও নে তো পঞ্চায়েত হলি সে নে ওটা গাঁও চলক সাপায় নিয়ম বানাতো রায় কি নিয়ম বল নে গোটক কানুন নে হুয়াট রান কে কসন
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़। बस, ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18

0: रास्ता बदलाव आइयो। होंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्का ना गाड़ी एइंग प्रतिशत जीएसटी मौला देने दोरकिता अदेन के और सो व्यर्थ कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
2: हाँ तो फूलो हाँ। के गोट मन के तो आमचो गांव कारी दादा दीदी मन लगे हमरा लुने
3: मंत्र भादू खूबे दिन ले तू तुई भेट होलीस मंत्र मैं बोलते हैं अली तेरे दिन ले भेट होलीस गोट कहनी संग बोलते हैं
2: हाँ। दक आमचो दीदी दादा दीदी मन का तो गीत और कहनी मन दरु न मरलु से ने मंत्र हाँ। कहनी के मैं तो नी सांगे आमचो लगे असनी गोटक बहिने हमर ला से ने ए मन कहनी सुना तो काजे ए मंचो नाव है साक्षी कश्यप आले ए मंचो कहनी के
3: सांगलो कहनी के सुनते
4: आप लोग कहनी सांगे से इंद्रावती। छत्तीसगढ़ चो दक्षिण दिशा ने आसे बस्तर। बस्तर के लोग रानढोन गरी करपन नदी और घूमर चो कीर्ता जानसोत। बस्तर ने नदी मनासोत हुनमन ने इंद्रावती सबले बड़े नदी आए। ये पाठ ने इंद्रावती नदी आप लोग कहनी के सांगे से मैं आए इंद्रावती गोटक नदी मोचो उपजन होली से ओडियान राज्यो कालाहांडी जिला चो डोंगरी ले। उपजन ठाने मैं नानी असना से हुताले धीरे धीरे बहे से आगे खिंडिक खिंडिक फिर खिंडिक बाढ़ते जाए से मोचो दोनों पाट आसोत बेड़ा खाड़ा राउन और गाँव मन। किसान मन मोचो पानी ले टेंट सोत आपलो उबज के ओडियान राज के धान पान साग भाजी पानी कांजी देते मैं पूरे बहे से ओडियान राज के नहक तो पूरे मैं जुआन होले से। ओडियान राज ने मोचो आधा पानी जोरा बाहर ले बहुन सबरी नदी के जाए से जोरा बाहर लागून निमल कमजोर हालत ने धीरे धीरे छत्तीसगढ़ राज ने बस्तर चो भेजा पदर धन पूंजी गांव लगे ओले से। एथा चो लोग बेड़ा खाड़ा रुख राई जमाए मोचो मान करसोत मोचो खंडे कई गांव मन आसोत मोचो पानी ले कमानी धमनी और दूसर निस्तार बूता करसोत छानून भाती मोचो पानी के प्यूतो काजे बले नेसोत मोचो खंडे रउ जगतुगुड़ा आजी जगदलपुर शहर बनली से जगदलपुर चो खड़क घाटे मोचो पानी के नहाकतो काजे अंग्रेज सरकार पहिल पक्की पुलिया बनाली हुन पुलिया के आजी काली नानी पुलिया बलुआत खूबेपुर इले नानी पुलिया बड़ुन जाऊआ नानी पुलिया चो उपरे कुमड़ा कोट आरु डोंगरा घाट नाव चो पारा जो मंजी गोटक बड़े पुलिया बनाला सोत मोचोपुर चो पानी बड़े पुलिया के बले अमरे से एचो लागूनपुर बले लोग मंचो या जहार भी थेबे जगदलपुर शहर के जीतुन मैं फैले जाए से आसना तामाकोनी तीतर गांव घाट लहंगा असनेच कितरे गांव मन ने नहकुन गांवरे अमन जो बूता सारते बेड़ा खाड़ा के उपजाते जाए से बरसा सरले कोनी कोनी लगे मोचो पानी खूबे कम रुआए असन लगे लोग मन हिंटते मोके नहाकुआत असन ठान के खड़क बलवात बहुते बहुते मैं लोहंडी गुड़ा लगे अमरतो ने बोदरा नांगरपाल उसरी बेड़ा बेनी धराउर और

0: उत्तरकोट गांव चो सन ने नारंगी नदी और नानी बहार एवं मचो संगे त्रिवेणी संगम बनासोत। एके लोग मन चोंडी घाट बलुआत ए ठान के आमी बस्तर चो प्रयाग बलुक सकू। एचोले आगे चित्रकोट और तीर्था गांव चो मंजी बले गोटक खड़क आसे। ए खड़क के खिंडिक जितले मचो पानी बड़े भारी छिलपटले खूबे ऊपर ले खाले कचाड़ी हुए से। एके घूमर बलुआत चित्रकोट चो घूमर मैं इंद्रावती चो नाव पड़ले लोग झपके घूमर चो नाव के सुरता करुआत। घूमर खाले पानी खूबे खोला से बेर तरास ने घूमर ने सपाय बेरा सात रंग्या इंद्रधनुष दखा देवाए। घूमर ले मैं आगे जाए से डोंगरी रान पखना छिलपट ए जमा मोके पोटारून ने सोत। आगे घाटी ने गढ़ चंदेला भेजा बिंजा लगे मोचो पाठ खूबे ओसारा से। एथाले मोचो कई धार मन आसोत। असनेच बारसूर लगे मैं सात धार ने अलगे से हुताले फैले बड़े तुमनार गांव ने ढंकनी नदी एवं मोचो संगे संगम बनाऊ मेरे से। एथाले आगे मैं भैरमगढ़ के जीतून भाती इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भीतर ले बहे से और भोपालपट्टनम बाटले बहते बहते छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आरु आंध्र प्रदेश चो संद ने बस्तर चो बीजापुर जिला चो भद्रकाली गांव लगे गोदावरी नदी ने जाऊन सागम बनाऊ मेरे से। मोचो पानी गोदावरी नदी चो पानी संगे जाऊन समुन्द ने मिरे से। काला हांडी ले धरून भद्रकाली तक सबले आगर मय बस्तर संभाग ने बहे से। हुनी काजे मोखे एथा चो माटी ले डोंगरगरी घाटी रुख राई ले मया होली से। मोके बस्तर भुई के जीवना देतो बीती नदी बलुआत ए गोठ मोचो मान के बड़ा हुआ है।
1: हाँ तो बोलो कहनी के तो सुन लो ने
2: और
1: एक सांगत्रो साक्षी कसी अपने
2: गीत गोविंद बोल सुन ले अच्छा लगे
1: अच्छा लगे देखा है दक कहनी संग संग गीत गोविंद नोली नल पर ज्ञान दिया चो गोट मनोली ने ये उनके सुनते रहे ने जसन की हम दिन भर बेड़ा ने बुता करूं से नहीं देव बोल टाकुन रोवाए और गीत मन नल कहीं नहीं उनकी निका चावी सुन लेन नहीं नंगत लागू है ना अस निदा काम चोको गांव का दादा दीदी उनका जे गीत आन लो से ने
2: गीत के बोले
1: आगे गीत के सुनाओ पाचे गीत कुरिया वंचना के पाचे सांगवाने।

0: फूलो
1: दुका है सुंदर गीत रहे नहीं
0: हो।
1: और एक गीत के गाँव रोहत
0: एक गीत के गाँव रोहत गेलमणि देवी और
1: संगवारी मन ऐसे संग संग आम चोजा तो समय बोले हो रही
0: हो आले फूलो आज का जे था ते बे ने मोडरा गडरा सकलु कोनी दिन असनी आम चो गांव करे दादा दीदी मन संग जुआर बैठ करू आने आले जा तो पूरे पेर आरोग बस्तर के सोर कार्यक्रम सुनतो सपाय गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं बादू
1: और मैं फूलो
0: आमी दोनों करू से राम राम, राम।

बस्तर के स्वर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार भदु जुहार
1: जुहार फुलो जुहार हमर लिसने
0: हमर लुके दगे जी संग संग दादी जी मन बल करतो रहे
1: हो का okay.
0: ए जो संग संग आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन सब पाए के मैं फूलो
1: और मैं बादु
0: हमी दोनों करू से
1: जुहार
0: और नानी नानी पिला मन के आमचो दोनों चो बाटले खूब खूब
1: मैं
0: चुमा चुमा
1: दक फूलो आजकल तो कोनी कोनी बाटे पानी बोल मारे से ने
0: आज आम चो बाट बोल मार ली का
1: हां हां मैं बोले तो बेरा किंडी बीज ले के
0: असली लागे से और अच्छा लागे से
1: आओ दक आजकल तो पानी कोनी कोनी बाट मारे से और असन बेरा नहीं गांव पर आछो दादा दीदी मन आगर करून बेड़ा ने जसन की डेला नाले कत ने तो बीती काम बुतावन करूआत ने और दक आजकल गांव पर आछो आमचो मेहरार दीदी ना सोत ने
0: हुन मन केवल समय नहीं मिले बे
1: हुन मन केवल समय नहीं मिले बे और कोनी कोनी दक गांव पर आने आजकल सपाए समूह तो बनली से ने और हम चो गांव कारी दादा दीदी मन दीदी मन नहीं घर चबूता संगे संगे जसन बाहर चबूता के बोल करे
0: समूह चबूता बोल कर
1: समूह चबूता ओली
0: नाले बेड़ा बूता है
1: बेड़ा बूता नाल पर कत ने तो बहुत अभी
0: और कोनी कोनी पर नौकरी बोल करुआ
1: नौकरी बोल कर

0: तो बोलो ने मेहरान मन के खूबे बूता हुआ है कि नहीं, घर चबूता बाहर चबूता सतरा सतरी चबूता पिला जिला चबूता सपाय चबूता हो
1: सपाय चबूता ये सपाय बूता उनके करुण बाती पर आप लोग जसन को नी नौकरी कर कर तो इतिहास जाले उन पर नौकरी करुक जाए से ने
0: नाले पर बेड़न जाए से
1: नाले पर उनको जो नौकरी नहीं कर सो तो उन मन पर बेड़ा बूता केवल करे सो
0: और बहिन मन तक आजकल का है उन समूह थाने पापड़ आए संदाना है सफाई बनाए सो तार असने बोले तक बांस चो बीती बना दो बीती होली माटी चो कला होली बारन होली बोलो कितनी बूता हो से और सिलाई बुनाई आजकल खूबे हो
1: खूबे हो से और आजकल तक सिलाई बोल लेने आजकल तो गांव गांव ने आम चो दीदी मन जान तो सीख लो बीती मन तो करे सोच सी ने और दूसर के बोले सिखाए सोच बने
0: और तो सिलाई बोले नहीं कपड़े सिलाई नहीं हुन पर्स मन बोल बनाए सो
1: हो आजकल पर मन मन चो पर्स होली पर नाले पर ये सिलाई होली नाले जसन की कोनी लगे बांस आसे जल बांस चो बोल मन मन चो बनाए
0: बनाए सोत कला मन के और घर तो घर चो सजा तो भी मन बनाए सोत
1: बनाए सोत और फिर आठ बजारे भी कुक बोलने सोत ने असनी कोनी कोनी दीदी मन आसोत जेन समूह बनान बाती जसन की अबे समय आए खेती बाड़ी चोने उन मन बोल जसन की कोनी लगे कोई पड़िया से जाले उन सपाय मिलन बाती उन स्व सहायता समूह बाटले कोनी बुई के जोपान बाती पेर उता जोंदरा लगाए सत नाले पेर कोनी कोनी आजकल मुंडा मन तो गांव गांव न्यास होत उता मछली पालन चो काम बुता के करे सोत
0: असने हरदी आए धनिया आए सब लगाए सोत
1: लगाए
0: अरे के फिर पिसुन भाती फिर बिक सोत
1: बिके सोत
0: और मंडिया के बोल कर सोत
1: मंडिया के बोल करे सोत
0: और मंडिया तो आमचो देह पाकाच खूबे नंगत है एक नहीं आमचो घर तो रोज लागू है मंडिया
1: हो लागूची आए का जसन एबे जे टोली जेट पेरा अगर करूनी उनी कोनी कोनी पेज बोल बनाए सत नालचे पेर मंडिया चुन बोबो बोला आजकल बनाए सत ने रोटी ओ दक काके जस फुलो आमी उन मंडिया पिसान के नई पान ने काय रस का करन बाती बुंजुन काते रहो ने बोबो बनान बाती एबे उनके नई हम सारे नाल का का बड़े बड़े काय तो सम्मेलन सत नहीं
0: किलो हिसाब ने बिके सत आजकल
1: उता बोल दकाय सत उन सो सहायता समूह बीती बहन बनने है ये मंडिया बाबा है बोलो और उनके कातो बिता उन लोग मन बोले खूबे
0: खाए सद बोले चाय बोलूं खाए
1: चाय बोलूं खाए सद बोले असन असन काम बुता उन
0: चो कर उन भाती चार पैसा बहिन मन कमाए
1: कमाए सो ता और गढ़ कुरिया के
0: जतनाए
1: सो ता और चलाए सो
0: और असन बोले हो से कि हम जो हाथी चारा ना रले नहीं भादु काकी मांगु नी पड़े ने
1: नी पड़े
0: और कोनी लोग बगीले अले मुझे लगा से पैसा खर्च करने दे बोलनु से ना अले फिर हुनी है लोग के दक्तर तो रहे कि दजाए देवे बोलन भाती
1: हाँ आजकल समूह बोल बना ला से पूले जसन की कोनी लग काई एमरजेंस ये अड़ना काम पड़ ले जालने उन मन के जसन की कोनी पैसा बोल मांग तो वाट करे सतने और उता कम लागत ने पैसा बोल मांगे सत और पैसा किनी समय ने रतबेरा छूटे सत बोल ने
0: तो
1: हो आम चल गए असनी और बोले गोट मना सो ताले गोट मन के बोले अमरा हूँ
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
6: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% कीस इत्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमीद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
1: हाँ तो फूलो धके गोट मन के तो हम चो गांव कारी दादा दीदी मन लगी हमरा लू ने और धक मना मैं गोटे आते रहो कि हम चो बाहले मेहरार मन ने गांव ने रहो ना फलो जीवना का वना कसन करते रहे बोल तो सफाई गोट मन के गोटिया लू धक आमी तो ज्ञान दी आन चो गोट और कोविन मन तो दरु न मर लू से ने
0: असने आजी बोल गोट भेट वार्ता
1: भेट वार्ता से उन चो आगे गोट गीत आसे गीत के सुना होता बोलो पाचे भेट वार्ता के सुनावने आगे गीत होता है।

0: हाँ तो भादु
1: हाँ,
0: सुंदर गीत रहे ने
1: गीत रहे ने
0: हरे गीत के गाँव रोत विभिन्न बिहारी दास और
1: संगवारी दक पुल आम के ज्ञान ध्यान चो संगे संगे गीत गोविंद मन बोल गोटिया तरले
0: सुनते रहले अच्छा
1: लागू है ने दक गांव ने आजकल दक तो बेड़ा बुता ही चले से ने असन बेड़ा बुता ने आम के नहीं बेड़ा ने दिन भर करुण बुता करू ने सोता और हाथ पाए तो उन बाती फिर आप लोग बुता है जसन की बात रान तो भी तय ओली नाले पर हम चो दादा उन ओला उन मन पर जसन कई कई जसन कोनी कोनी बाटे बाँच चो टुकना है नाले पर गप आए असन बुता उन बोल करे सोता और कोनी कोनी बड़ी आए जाले उन बड़ी काम मन के बोले करे सोत ने असन दक ये भी तो ये बात का तो समय बोले ओली से ने पीला उनके किंडी बाघ का जे किन्नी गेंद्राए सदवे ने मानतर ये पिलावन तो गेंद्राए सदवे मानतर हम चल लगे गोटक भेट वार्ता से ने ये गोटुल परंपरा ये के सांगे तो सांगे सोत श्री सुखा सिंह सोरी और ये मन संग गोट बात करे सोत सी आर कश्यप आले भेट वार्ता की हम चो गांव कारी दादा दीदी मन लगे अमराव
2: रेडियो सुन तो सपाय लोग के जुहार तो दादा दीदी मन असन है कि आम्ही तो गांव पारा ने रत लोग गांव पारा हिसाब ने आमचो समाज हो नाहले आमचो गांव पारा चो लोग हो सब लोग सब चो लगे आपलो आपलो समाज लगे कै कसन नीति रीति रुसुम मन बला से तो असनीची आमचो बस्तर ने बले कैक लोग आसू कैक समाज चो लोग आसू तो सपाय लोग चो आपलो आपलो परंपरा रीति नीति चलते ऐसे उसनीची गोटोक जाना चीना सपाय लोग तो जान सोत गोटोक घोटुल घोटुल काय बीतिया घोटुल ने काय काय होय से सब गोट बात के आजी सरसराले जनुकलाय होय दे तो आम संगे आजी आमचो स्टूडियो ने अमरला सोत तो दादा तो के सब लागे जुहार ना
3: जुहार दादा जुहार।
2: तुचो नाव और गाँव चो नाव के सांगो देता
3: मचो सुखा सिंह सोरी लिखे से सिरसी कला राय
2: हाँ हाँ अच्छा सिरसी कला बोले कोंडा गांव पड़े
3: कोंडा गांव जिला पड़े दादा
2: हाँ हाँ तो दादा ये सांगना जसन ये घोटुल जसन आम चो बस्तर ने लोग जान सोत घोटुल काय बीते हो इसकी सांगुन देस
3: ये में हम चो परंपरा घोटुल पहले ले एते इली से
2: हाँ,
3: और होता ले हम चो लेका लेकी जुहुआत मंदरी नाचा नाचुआत बिहाव दंदबल होता ले खरुआत खरते नेवात नचावते बजावते नेवात और दुल्हा बनाए से तिकी दुल्ही हो दुल्हा हो लेखा हो लेखी हो भी होते ले नचाव तो नहीं हुआ लेखा मन मंदरी बजे हुआ
2: अच्छा
3: हाँ और हाँ। लेखी मन गीत गावते चिटकोली बलसुत
2: हाँ।
3: चिटकोली बलसुत उन हिसाब से बजावते जा हुआ
2: अच्छा तो दादा ये ता न बोले कई कसन रुसुम मन होए से होती जैसे घोटुल संग विवाह जोन बोली विवाह करते हुए तो ये था न बोले असन रुसुम ने बोल कई गीत गोविंद मन बोल होए से
3: हाँ गोविंद गीत बल गावते नहीं हुआ
2: हाँ हाँ
3: उन में उन लेकी मन गुआत लेखा मन मंदर बजावते जाऊआत
2: अच्छा
3: उन घरे नेते ताई घोटुल ने हुआत घरे हुदा हाँ,
2: घोटुल बोल ले असन घर लेखिन बाहर हो तो सपाय लोग हाँ,
3: झूमे सो मंडली समा
2: मंडली होय हाँ, हो
3: तो मंडली
2: उतान ले जुन दुला दुली के उठान ले
3: हाँ,
2: बिया करुन बाती घर ने सो
3: अने उताले मतलब अन संगति लगले छंडा उन असन घरे ने सुन बियाव कर
2: अच्छा अच्छा
3: तो ने तो नाय
2: ने तो दाज पर काई गीता से
3: हां गाऊआत गाऊन दे
2: खिनिक तो के सुरता जा सुनाऊ दे
3: हां रे रे लो यो रे ला रे लो रे ला रे लो यो रे लो रे रे ला सा रे ला रे ला रे ला

0: ಯೋರಿದಾನುರ್ಯಾಯ ಕೋಪ ಲಯೋರಿಂದಾನೋರಿರೇಲೋಯೋರಿರೇಲೋರಲ ರಿರೇಲೋಯೋರಿರೇಲ ಸನ್ गावते तेल चे गवा
1: तेल चे गा सतने और आई ची दक शादी बियान तो अमी हरि को दिम रहु सने और एबे दक असन बल होय से दादा की एबे लोग जो नाय आगे चो जसन ते गीत गाउन ये जन विवाह बेरा चो जितलो बले रुसुम होय से उन गीत के जाने बोले से बेच लोग तो नी जान सो
0: अभी उसरे बुझते जाय से
1: तो उनके काय के हमके बचाक बल पड़े से तो
0: ये तो हमके चेतावनी चो हिसाब से
1: तो आई ची हमके আমি সিয়ান লোক হন বাদ পিলা মনকে শিখালো নে জানালো নে দেখালো নে হন মান শিখতে বলে আর এবেচো কায় হয়েছে এখন কয়েক লোক বাড়তি করছো তো এবেচো আগেচো ঋতুম রুসুম রীতিনীতি নি করত কায় কি কনি আপলো এবেচো যুগ হিসাব নে শাদি বিয়া করছো এবে বল দেখো খোয়েস গাঁও পারে মানতার আসন করতে নয় আমচো যোন রীতিনীতি চলতে এসে উনকে বচান সঙ্গাতো কাছে আমকে আমচো বলবে গাঁও চো রীতিনীতি হয়েছে উনকে আগে বাড়াতো কাছে আমি লোক পুরে অনুমতি করুক পড়ে দাদা আর সঙ্গে সাং নাই যেন এবে তো ঘোটল বিতি বললি সে তেল চেগাত বিতি হলি বিয়া করে জোড়ি তেল বল চাগাছো তো ইউচি বেড়া বলবে এই গীত বুঝবাই হতি না और संग संग जैसा ना कई जगह मैं बोल दख ले सी की भाटा नचास होत परला नचास होत असन बोल होइस ना
0: हां हां
1: ओसन ता बोल होइस ने हां और टीका निवल हुए के समझ
0: हां टीका निवल होइस
1: हां
0: हां उन बगी तो तेल से गाव दा
1: इसने
0: नचे बोलत
1: हां
0: ने मतलब जो जुहुआत और लेका लेकी मन नचाव सोद बल और गाव सोद बले
1: अच्छा
0: तेल से गाव सोद जहां तो ब्याह घर में जानो से धूमधाम कर तो छे ने
1: हां तो है
0: उसने ये चीज अच्छे हुआ तो हुआ
1: और जैसा नहीं टीका नहीं बेरा बोल का एक असन गीत बोल रहे उसने बेरा बोला से ना
0: हाँ टीका नहीं बेरा तो लेकी मन गा हुआ
1: हाँ
0: फिर हुन आज हम जो सिखाओ तो बेरा चो गीत बोल लो ने मतलब जो तेल छे गावला तेल छे गावला जल फिर तेल संग तो नचाओ से उधर ना फिर जहाँ लेका लेकी मन बाउंड्री होन ইন্ডেরামারা তোরি চোরা চো চোর টাপ দেলা দরবার রে রে লারে রে লারে লো রে রে লারে রে লারে রে লায় ইম বগা রে তো রে ইন্দম বাবু বগা এ তো

0: पदेला सिरो सरो चुरुटा पदेला दरबार रे रे ला रे लो रे ला रे रे लो रे रे ला रे रे ला इंगो नारे रे यतो रे इंदम बाबू नारु मे यतो रे इंदम डोंडेरा पदेला सिड़ सड़ो चुरुटा पदेला दरबारे रे रे ला रे लो रे लो रे रे ला रे रे ला बोलून गाऊवात नचवात
1: तो उन्मान बोलो बे हरी को दिमले ये जसन नचा तो बीती ये रुसुम के करसो ने और इस संग संग और कहीं बोले तो सूरता आज जल
0: हाँ ये दीपावली वाला मरे से दीपावली दिन वाल हम पहले जो परंपरा में अभी गाय बल सो थुलकी मंदिरी
1: अच्छा
0: हम बैला गाय बैला मन के खिचड़ी कुआ फड़ुआ कुछ कुआओं से
1: उन तो आए
0: हाँ और कुआओं पर सब हम बल खाओ से पारा जो सबाए नानी बड़े सियान सजन माता पिता मन सबाए संगे और गली गली में हुलकी मंदिरी बलून नावा हुलकी मंदिरी
1: अच्छा
0: हाँ उन नाचू से नाच तो आए उन खोर खोर में किंजरुआत जहाँ माए जो मंदिरा से होता जात तो आए गांव गांव में गली गली में होता पूरा उन किंजरुआत नाचू आओ पहले
1: अच्छा
0: जमाने अभी बल नाच सोत
1: हाँ
0: सब कहाँ कहाँ अभी कहाँ
1: जैसे दीपावली चो बाद बीती आए
0: दीपावली दिन
1: दीपावली जी दिन
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: दीपावली दिन
1: हाँ हाँ तो ये चो का ये चो बोल मांदरी बजान बाती घरे घरे जैसन गीत गाते जातो भी थी वैसे उन्हें बोल गोटोक हम चो रुसुम वैसे ने हम चो गांव पारा चो हिसाब ने जैसन छेरछेरा होलो ने हम छेरता बुलुक जाऊं से उसनी ये मांदरी भी थी बोल वैसे
0: ये बोल माय जहाँ तक मंदिर आसे होता जाओ नाच तो होता ले फिर सब गांव में जब खुशी जो बात
1: हाँ हाँ
0: हाँ अभी
1: तो
0: माल बैला ठाला गाय खुआ उरवा और उनके बाद सब जो त्योहार जो हिसाब से हमके खुशी जो बारे में और उनचो फिर नीति नियम आए हुलकी बलून
1: हाँ हाँ हाँ
0: दीपावली का नाची बात
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ ये वाले हुलकी बोलू बे ये वाले गोटोक जसन आमचो तियार जसन हो ऐसे बाट चो आमचो बाट चो लोग तो काया तो बीती बोले दियरी बना से
0: हाँ दियरी
1: उन बाटे दीपावली संग चो गोवर्धन पूजा हो ऐसे तो उन बेरा खिचड़ी बोल खुआ सोत
0: हाँ
1: ने
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आप लो
0: हाँ
1: समाज ने आप लो गांव पारा हिसाब ने बना सोत
0: ऐसे
1: तो ये हुलकी बीती बोल कहीं से तो
0: हाँ
1: चो
0: हुलकी बीती बल गाऊत
1: हाँ हाँ
0: और मतलब नाचते नाचते
1: अच्छा
0: गाऊत
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: किनिक
0: हाँ
1: सुरता चल उनके बोल किनिक सुना दे
0: हाँ हाँ अभी सिल रोले सिल रोले बंदर पाड़ दे बारा लय और बंदर पाड़ दे बारा रे बंदर पाड़ दे बारा लय और बंदर पाड़ दे बारा रे।

0: பொங்கரலை அரபந்தர பாடதே பொங்காரோய் சீலபருரோலே ரோல சீலபருரோலே ரோரோலே சீலபருரோலே ரோலே சீலபருரோலே ரோரோலே ஜப்பரோலே பொங்கரலையர ஜப்பரோலே பொங்காராய் பலூன் ஏசன் गाव तेरी हुआ आमच्या दीपावली दिन.
1: अच्छा अच्छा हां तक तो दादा इतलो अच्छा तू ही हुलकी बीती गीत गाऊन सुनालीस और घोटुल ने काय काय होयसे ये सब गोड बात के सांगलीस की आय की आमचो गाँव पारा ने आम्ही आसू जाले आमचो आगेचो जो

0: हाँ तो फूलो
1: हाँ
0: द के गीत के तो सुना लू ने,
1: सुन लू गए
0: और
1: और
0: ये
1: दादी
0: गीत
1: जी मरो सुन ला
0: सुन ला होती, और ये गीत के गाउन रोत लकेश्वर कुद्रा मोहरे मंचो संगवारी
1: संगवारी
0: मन
1: मन
0: धक फूलो दयाम चो जा तो समिया बोले ऐसे, और गांव का दादा दीदी मंचो बात का तो समिया बोले ऐसे
1: वैसे
0: ने,
1: गए आए गए मन तो डक पीला
0: और
1: जिला मन तो सोला मान तो राग से
0: लागे से मानते राम के तो दाय भूख लागे से कान चुकी बोल
1: आए गए
0: गन्ना पेट के लगड़ी सी
1: भूख तो सब पैक लगो है गए समय होले नहीं
0: हाँ तो असनी कोनी दिन आम छो गांव कारी दादा दीदी मन संग जुआर
1: फिर
0: बैठ
1: भेट
0: करूं
1: होगा है
0: आने
1: आए गए
0: आले आजी मोटा गटा उनके सकलू और विदा धरू बे ने।
1: आदल
0: आम छो गांव कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं बादू
1: और मैं फूलू
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार।
0: जुआर।

0: ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम आम जो गांव। मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम कुड़ई फूल में रैबारी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
1: इखी जली माली।

ಒಂದು ತಾಯಿ ಪಾಣಿ ತಾಯಿ ಜೀವರಿ

रायबारी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुड़ई फूल में। यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। समय है रात्रि के 8:30 का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम पीला मन काजी गोठ। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानकारी दे रहे हैं शंभू नाथ नाग।

पिलामन चो गोट कार्यक्रम सुनतोर सफाए नानी बड़े पिलामन के मचोबाटले खुबे खुबे मया और चुमा पिलामन आजी तुमी पिला आसास मांतर काली बड़े बाड़ा से और बड़े बड़े नगत नगत काम मन के करा से तुम चो कर लो काम संगे तुम चो बले नाव होय दे और परिवार समाज देश चो बले नाव होय दे नाव कमातो काजे सुंदर सुंदर ज्ञान के सिखु पड़े से और दिन राती खुबे मेहनत मसागत करुन पड़ु पड़े से तेबे तुम्ही आपलो जीवन के सफल बनाउ सका से या आजी मैं तुमके असने इतिहास ने नाव कमालोर महापुरुष जो जीवन चरित्र के सांगेंदे ये महापुरुषात गुरु गोविंद सिंह जो आपलो देश और धर्म का जे जीवन भर लड़ला और आपलो पूरा परिवार के बलिदान करला इतिहास कितले वीर योद्धा मंचो कहनी ले भरली से ये इतिहास के भय हमके दुख हमराय से तो के भय सुख दय से और के भय महापुरुष दिली से असने महापुरुष ने गोटक महापुरुष होला दसमेश गुरु गोविंद सिंह जोन सिख धर्म चो धर्म गुरु बले होला जे मंचो गोटक हाथ ने तलवार तो गोटक हाथ ने कलम रहे ये मन साधु बले रहत और सिपाही बले रहत कमजोर लोग मंचो ढाल रहत और दुष्ट मन काजे काल रहत आजी हमी तुमके असन संत सिपाही चो कहनी के सांगू से जे मन देश धर्म काजे आप लो पूरा वंश चो बलिदान देउन दिला 22 दिसंबर सन 1662 ईस्वी के गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी चो घरे गुरु गोविंद सिंह जन्म धरला गुरु गोविंद सिंह पीला बेरा चो 4 बरख पटना साहिब ने बिताला ये बेरा हुनमन चो पिता असम ने धर्म प्रचार चो काम ने लगुन रहत जेबे एमन चो पिता बोहड़ला तेबे सन 1670 ने गुरु गोविंद सिंह आपलो माय बाप संगे पंजाब चो आनंदपुर साहिब नाव चो ठान ने अमरला ये ठान ने 6 बरख ले गुरु गोविंद सिंह चो सिख्या मूर होली ये मन संस्कृत चो ज्ञानी बनला फारसी हुनमन चो कलम ने इली गुरुमुखी गुरु चो टोन ने चेगली तलवार ले गुरु चो चिन्हा होली ऐ समय गुरु गोविंद चो पिता गुरु तेग बहादुर लगे कश्मीर चो पंडित मन भेंट होला और हुनमन के शरण पड़ला कि कश्मीर ने गाय गुरु और पंडित मन के

0: पीला मन काजे गोठ। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। प्रस्तुति थी शंभू नाथ नाग की। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। लीजिए सुनिए समाचार संध्या। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
6: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
5: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के

0: अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai, jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tej gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है. और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है. और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.
3: Earlier, the National Democratic Alliance NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest serving elected Prime Minister Narendra Modi.
5: It is a historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator. Working with a single agenda, that is nation first. A principle that all of us has constantly keep it in mind.
3: The meeting also focused on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected prime minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister in consecutive terms. With 4,399 days of continuous service as an elected Prime Minister, Mr. Modi has surpassed the previous record held by former Prime Minister Jawaharlal Nehru, who served for 4,398 continuous days. Meanwhile, the Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometres with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometres, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport.
6: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए.
7: Three decisions were taken in today's cabinet meeting. One decision concerns the expansion of the Ahmedabad metro, while other two relate to Amravati, the new capital city being developed in Andhra Pradesh. The cabinet approved the Ahmedabad metro phase 2A corridor from Koteshwar Road to the airport in Amravati. Several central government offices will be brought together in a single complex. Two projects have been approved for this purpose: a residential complex and an office complex.
6: तो residential complex है और office complex है.
3: The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production-Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme, with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fibre, MMF apparel, MMF fabrics and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System, GNSS, jammers for the Indian Navy, with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi.

हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है लोफर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

संतोष कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, गाया है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है संतोष आनंद की।

0: पुरानी फिल्मों से। अभी आप आनंद ले रहे थे पुराने फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। रात्रि के 9:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। उवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और शाकंभरी योजना के बारे में। अजय मीरी से भेंट कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
5: उवाट ने आज आपन मन के जनाऊ दे कृषि विभाग चो योजना मन के आरु योजना मन के जना तो काजे आज आमी गोड बात करूं से कृषि विभाग चो सहायक संचालक श्री अजय मीरी संगे।
6: अजय कुमार मीरी साहब, जैसे कि आपके विभाग में मतलब वर्तमान में हमारे किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसका लाभ किसान भाई कैसे ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे।
7: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो हमारे बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से धान का फसल, मक्का जिसको जोंधरा का फसल बोलते हैं, साथ में उड़द मूंग थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद किसान भाई लगाते हैं, साथ में कुछ फसलें दलहन और तिलहन की भी है जो किसान भाई लेते हैं। तो हमारे बस्तर में मुख्य रूप से अभी धान और मक्का की खेती होती है। तो अभी धान फसल लगाने के लिए किसान भाई तैयारी कर रहे हैं बरसात के पहले, और कुछ जगहों पर बुआई चालू भी हो गया है। तो शासन ने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं और अपना आर्थिक मदद भी पा सकते हैं और अपना खेती किसानी के काम को बढ़ा भी सकते हैं और सुविधा भी एक प्रकार से किसानों को मिलेगी। तो मैं प्रमुख कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि बरसात चालू होने वाला है, तो खेती बाड़ी जो है एक अनिश्चितता का खेत बना रहता है हमेशा खेती बाड़ी में, कि कभी भी ज़्यादा पानी गिर गया या कम पानी गिर गया, तो कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, तो विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती रहती है। तो शासन की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीट रोग के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जिससे किसानों की आय स्थिर हो और वे आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसमें मुख्य रूप से फसलें अधिसूचित की जाती है। खरीफ का जो मौसम होता है उसमें मुख्य फसल धान सिंचित और धान असिंचित होता है, मतलब बिना पानी वाला और एक सिंचाई सुविधा वाला। और दूसरी फसल होती है मक्का, अरहर, मूंग एवं उड़द, ये फसल भी खरीफ मौसम में अधिसूचित की जाती है। इसी प्रकार से अगर रबी का मौसम जो ठंड वाली फसलें हैं उस समय के लिए देखेंगे तो उस समय मुख्य फसल चना होता है, और साथ ही साथ गेहूं सिंचित एवं गेहूं असिंचित और राई सरसों, ये फसल पे बीमा कवरेज रबी मौसम में दिया जाता है। इसके लिए बीमा कराने के लिए, बीमा कवरेज पाने के लिए प्रीमियम दर जो है वो किसान भाइयों के लिए बहुत नगण्य है। खरीफ मौसम में जो भी बीमित राशि होता है उसका 2% किसान भाइयों से लिया जाता है, और रबी के मौसम में 1.5% बीमा राशि जो प्रीमियम है वो लिया जाता है बीमित राशि का। इसी प्रकार से देखें कि इसका जो बीमा इकाई का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, तो जो बीमा इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम पंचायत इसकी बीमा इकाई होती है, वहीं शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम स्तर इसका बीमा इकाई का क्षेत्र होता है। और इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो जो अधिसूचित ग्राम पंचायत है या ग्राम है तो शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दोनों के लिए बराबर है। तो ये खरीफ मौसम में जो अधिसूचित ग्राम है ग्राम पंचायत वहाँ पर कम से कम 15 हेक्टेयर का फसल होना चाहिए, और रबी मौसम में कम से कम 10 हेक्टेयर का फसल उस ग्राम पंचायत में होना चाहिए। इसके लिए जब फसल का पक जाती है तो उस समय इसके आकलन के लिए फसल कटाई प्रयोग भी किया जाता है। अच्छा। तो प्रत्येक जो बीमा इकाई है उसमें 4 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग और कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे उसके उपज का अनुमान आकलन लगाया जा सके।
6: अच्छा।
7: इसमें बीमा की पात्रता दोनों प्रकार के किसान होते हैं, जो ऋण लेते हैं और जो ऋण नहीं लेते हैं। तो दोनों प्रकार के किसान जो हैं बीमा के लिए पात्र होते हैं, जो ऋण लेते हैं केसीसी के माध्यम से या और भी दूसरे माध्यम से बैंक या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जो ऋण लेते हैं तो उनका बीमा स्वतः हो जाता है। और ऐसे किसान भाई जो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लेते हैं तो वो किसी भी बीमा कंपनी के पास या कृषि विभाग के अधिकारियों के पास या उनके कार्यालय में या जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर जाके बीमा का लाभ ले सकते हैं या बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6: अच्छा।
7: इसमें अलग अलग प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं कि आपको फसल का नुकसान होने पर कब कब मुआवजा मिलेगा। तो इसमें आपके बुआई से लेकर फसल कटाई के पश्चात तक
6: अच्छा
7: बीमा का कवरेज मिलता है। अगर किसी परिस्थितिवश बोनी विफलता हो गया या रोपाई नहीं कर पाए, जैसे कि अधिक सूखा पड़ गया या ज्यादा पानी गिर गया तो बोनी नहीं कर पाए या अंकुरित नहीं हुआ बीज या फिर रोपाई नहीं कर पाए कम पानी होने या ज्यादा पानी होने के कारण, तो उस स्थिति में भी बीमा कवरेज मिलता है। साथ ही साथ जो खड़ी फसल है उसमें भी बीमा मिलता है, जैसे कि कोई बहुत अधिक सूखा हो गया, बाढ़ आ गया या अत्यधिक विस्तृत रूप से कीड़ा बीमारी लग गया, तो उस स्थिति में भी बीमा कवरेज मिलता है और किसान भाइयों को मुआवजा मिलता है। साथ ही साथ फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए 1-2 दिन किसान भाई छोड़ देते हैं ऐसे ही खुले में या फिर बंडल बना के, तो उस स्थिति में कम से कम 2 सप्ताह तक बीमा का कवरेज रहता है, मतलब 14 दिन तक बीमा का कवरेज रहता है। उस स्थिति में भी अगर नुकसान हो जाता है तो बीमा का कवरेज मिलता है। साथ ही साथ इसमें अपवर्जन है कि जैसे कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, जैसे कि कोई नाभिकीय या युद्ध हो गया, तो उस स्थिति में फसल नुकसान होता है तो उसका कवरेज बीमा कंपनी नहीं देती है। तो अभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी मौसम चालू होने वाला है, 15 जुलाई के आसपास बीमा का कार्य चालू होगा।
6: अच्छा।
7: तो उसका लाभ ले सकते हैं।
6: अच्छा, अच्छा मेरे साहब, जैसे आपने बहुत सारे फसलों के बारे में बताया, उन सब के बारे में बीमा, क्या सब अलग अलग फसलों का अलग अलग बीमा कराना पड़ता है क्या?
7: जी, आवेदन पत्र एक ही है।
6: अच्छा।
7: आवेदन पत्र में फसल का उल्लेख करना होता है।
6: अच्छा।
7: तो जिस भी फसल आप उगाना चाहते हैं या उगाए हैं तो उस फसल का उल्लेख करके, रकबा का उल्लेख करके आवेदन पत्र में दे सकते हैं, तो उस फसल का बीमा होगा।
6: अच्छा, एक किसान अलग अलग फसलों का भी बीमा करा सकता है?
7: हाँ जी, अलग अलग फसलों का भी एक किसान बीमा करा सकता है। वो धान का भी करा सकता है, मक्का का भी करा सकता है, अगर वो दोनों फसल ले रहे हैं किसान तो।
6: अच्छा, जैसे आगे और जानना चाहूंगा, जैसे
7: आगे और केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, ये देश के किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना करके दिसंबर 2018 से चला रही है। इसमें भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। योजना अंतर्गत किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, 2,000 रुपए,
6: अच्छा,
7: 4 महीने में एक बार। तो ये किसान भाइयों को उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है,
6: अच्छा,
7: प्रत्येक 4 महीना में। इसमें सभी किसान परिवार पात्र हैं। इसमें इकाई जो है किसान परिवार को माना गया है, कृषक परिवार को माना गया है। कुछ अपवर्जन श्रेणी है उसको छोड़ के सभी किसान भाई इसके लिए पात्र होते हैं। मैं कौन कौन अपवर्जन की श्रेणी में आते हैं वो बताना चाहूंगा। इसमें लाभ लेने के लिए क्या है कि कोई भी संस्थागत भूमि धारक है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। जैसे कि कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, अगर उनके नाम से कोई जमीन है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और पूर्व में जैसे कोई मंत्री है, राज्य मंत्री है या सांसद है, विधायक है पूर्व या वर्तमान, राज्य विधान परिषद के सदस्य है या नगर निगम के महापौर है या पूर्व में हो चाहे वर्तमान में हो, तो वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
6: अच्छा,
7: साथ ही केंद्र सरकार के जो सेवानिवृत्त और जो सेवा में है या राज्य सरकार के जो सेवानिवृत्त और जो सेवा में है, तो ऐसे शासकीय सेवक भी चतुर श्रेणी को छोड़कर इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
6: अच्छा,
7: और ऐसे पेंशनर जिनको शासकीय सेवा के बाद पेंशन मिलती है चतुर श्रेणी को छोड़कर, जिसका मासिक पेंशन जो है 10,000 रुपए से अधिक है, वो इस योजना के लिए भी पात्र नहीं होते हैं।
6: अच्छा,
7: साथ ही साथ जिन्होंने आयकर दिया हुआ है या आयकर विवरणी भरते हैं तो वो ऐसे जो किसान है वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
6: अच्छा,
7: साथ ही साथ जो पेशेवर लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए या चार्टर अकाउंटेंट हो गए, तो इस प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
6: अच्छा,
7: डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार के जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। तो इसका पंजीयन लगभग हो चुका है अधिकतर किसान भाइयों का, और जो किसान भाई छूट गए होंगे तो वो निकटतम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या उनके किसी भी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसमें पंजीयन के लिए वो जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर भी जाके अपना पंजीयन कर सकते हैं, या कोई मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो वो स्वयं का भी पंजीयन मोबाइल ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
6: अच्छा, और मेरे साहब जैसे कि अभी कुछ ही दिनों के बाद मतलब फसल लगाना शुरू करेंगे, तो इसके लिए आपके विभाग से कोई हमारे किसान भाइयों के लिए प्रमाणित बीज भी उपलब्ध?
7: हाँ जी जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मौसम चालू होने वाला है खेती बाड़ी का, तो हमारे बस्तर जिले में 52 सहकारी समितियां हैं जिसको लेम्स के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज का भंडारण कराया गया है।
6: अच्छा,
7: जिसका वितरण अभी जारी है, साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी भंडारण है, और प्रमाणित बीज भंडारित जो किया गया है वो किसानों के मांग के अनुरूप किया गया है, उनके किस्मवार।
6: अच्छा,
7: और प्रमाणित बीज प्रथम जनरेशन का और द्वितीय जनरेशन का दोनों प्रकार के बीज उपलब्ध हैं। और किसान भाइयों से अपील करूंगा कि जो सहकारी समिति के सदस्य होंगे तो वो तो जाके लेंगे ही, जो सहकारी समिति है वहां से खाद बीज, वहां से ऋण भी मिल रहा है, जिन किसान भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो वो जाके ले रहे हैं, और जो शेष बच गए होंगे वो भी जाके ले सकते हैं। जो किसान भाई सहकारी समिति के सदस्य नहीं है और वो प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं, तो जो बीज प्रक्रिया केंद्र है कोका मुंडा बस्तर में है।
6: अच्छा।
7: तो वहां से जाके सीधे भी क्रय कर सकते हैं प्रमाणित बीज, तो वहां पर भी अच्छी गुणवत्ता का प्रमाणित बीज किसान भाइयों के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जो शासन के द्वारा दर निर्धारित किया गया है उस दर पर प्रमाणित बीज किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है।
6: अच्छा। हाँ। और कोई योजना होगा तो उनके बारे में भी थोड़ा।
7: और जैसे कि खेती बाड़ी है तो बहुत सारा हमारे बस्तर का जो कृषि भूमि है वो असिंचित है, सिंचाई की सुविधा नहीं है
6: जी।
7: तो शासन ने इसके लिए भी सोचा है और योजना चला रही है। तो जैसे एक योजना है साकम्भरी योजना है।
6: अच्छा।
7: राज्य सरकार की साकम्भरी योजना है जिसमें किसान भाइयों के लिए सिंचाई सुविधा के लिए विद्युत पंप या डीजल पंप क्रय करने पर शासन के द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो इससे खुद का जैसे कि कुआं है या नदी है या नाला है तो वहां से पानी जो है ले करके सिंचाई अपने खेत में कर सकते हैं। और इसमें किसान भाइयों को जैसे डीजल पंप है या विद्युत पंप है क्रय करते हैं तो अधिकतम 75% जो भी उसका इकाई लागत है मूल्य है उसका 75% तक अनुदान मिलता है। इसमें अधिकतम 16,875 रुपये अनुदान किसान भाई को मिलता है।
6: अच्छा।
7: तो इसके लिए भी जो लघु सीमांत किसान है मतलब जो छोटे किसान है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो वो किसान भाइयों के लिए ये
6: अच्छा।
7: है उन पात्रता रखते हैं ऐसे किसान भाई। तो इसके लिए निकटतम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या कार्यालय है तो किसान भाई वहां संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और आवेदन पत्र और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं तो वो उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और है जो नलकूप खनन है।
6: अच्छा।
7: किसान भाई नलकूप कराते हैं अपने खेत में सिंचाई के उद्देश्य से तो उस पे भी शासन अनुदान देती है। इसमें किसान भाई जो लाभ लेना चाहते हैं नलकूप खनन का साथ ही साथ पंप लगाने का तो इसमें किसान के पास जमीन का कोई बंधन नहीं है। छोटे
6: अच्छा।
7: किसान बड़े किसान सभी प्रकार के किसान इसके लिए पात्र होते हैं। लेकिन शासन जो है लघु सीमांत और महिला जो कृषक है उसको प्राथमिकता देती है। तो ये भी योजना जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलती है।
6: अच्छा।
7: जितना भी लक्ष्य मिला रहता है शासन से तो जो किसान भाई पहले आ जाते हैं तो उनका पंजीयन पहले होता है और उनको अनुदान का लाभ दिया जाता है। इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई हैं उनको अधिकतम 42,000 रुपए अनुदान मिलता है। इसी प्रकार से जो अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान भाई हैं उनको 35,000 रुपए और जो सामान्य वर्ग के किसान भाई हैं उनको 25,000 रुपए का अनुदान शासन की ओर से खनन और पंप लगाने दोनों
6: अच्छा।
7: के लिए मिलाकर अनुदान शासन की ओर से दिया जाता है। तो इसके लिए आवेदन पत्र आता है जो भी निकटतम कृषि विभाग का कार्यालय है वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए नक्शा खसरा B1 आधार का फोटोकॉपी बैंक पासबुक का फोटोकॉपी तो ये सारे दस्तावेज लगा के आवेदन पत्र निकटतम जो कृषि विभाग का कार्यालय है वहां जमा कर सकते हैं। इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक नलकूप से दूसरे नलकूप के बीच की दूरी कम से कम 300 मीटर होनी चाहिए तभी शासन इसमें अनुदान देती है।
6: अच्छा।
7: ऐसी व्यवस्था शासन के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो भूमिगत जल स्रोत है वो सीमित है तो इसका अंधाधुंध दोहन ना हो इस कारण से शासन ने व्यवस्था करके रखी है कि जहां पर भी किसान भाई नलकूप खुदवाना चाहते हैं तो 300 मीटर के दायरे में कोई दूसरा नलकूप या हैंडपंप नहीं होना चाहिए इस प्रकार से शासन ने व्यवस्था की है।
6: तो अजय कुमार मेरी साहब आज हमारे किसान भाइयों को किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हमारे किसान भाई जरूर आपने जो बताया है योजनाओं की जानकारी लाभ लेंगे और अपने कृषि में उन्नत और अच्छे तरीके से मतलब कमाई करेंगे। आपको बहुत
7: जी,
6: बहुत
7: जी,
6: धन्यवाद
7: जी। धन्यवाद सभी को।
0: उवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और साकम्भरी योजना के बारे में। अजय कुमार मेरी से बातचीत कर रहे थे, बलबीर सिंह कच्छ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए हल्बी लोकगीत।

0: बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत आप सुन रहे थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए परिचर्चा हल्बी बोली में। विषय है बस और नाता पंता का सामाजिक महत्व। प्रतिभागी हैं मनबोध बघेल।
5: रेडियो सुनतो भाई बहन मन, आज आमी गोड बात करतो का जे इलू से, जसन की आपन मन जानास की आमचो बल्ले ने ग्रामीण समाज ने बल्ले ने बस आरु नाता पंता समाज ने इतलो एचो कितलो मान होए से, और एची ले काए कि आमचो पूरा समाज चले से रीति नीति ने, तो ये गोड बात करतो काजे आज आमता ने इला से श्री मनबोध बघेल एमन सामाजिक कार्यकर्ता और संग संगे बलदेव मोर एमन बोले सामाजिक कार्यकर्ता। तो आमी ये गोड बात करूँ दे कि नाता पंता और बस जो काय संबंध आसे, आरु आमे देखूँ से गोटोक शब्द ऐसे प्रदूषण, तो ये बस आरु नाता पंता ने बोले प्रदूषण ये तो कारण ने समाज बोले ने कहा कि बिखरते जाए से, यही गुड बात हमें करूँ दे। तो सबले पहले मैं बलराम दादा मैं पूछूँ अभी कि जैसन कि पुरका बिराले आमचो जो ग्रामीण समाज आए गांव ने कई बोले ने जाति पंता चो लोग मन रह सोत मंतर पूरा बस आरु नाता पंता के सम्मान देउन बाती कहीं बल काम के आगे बढ़ाए सोत। तो सबले पहले तो ये गोट बात पूछो है भी कि बस बल्ले ने काय चीज होए से।
6: बस बल्लो में कही हजारों साल चो हम चो पारंपरिक रीति रिवाज चो वेरालो बनालो बीती आई है, और उनके सांगलो में बहुत बड़े ये चो क्लास कर लो ने बोले निसरे ऐसा ना है। जसन जसने बे हमन जानू से हम चो बाप दादा मन दखा ला सो काय मतलब आए काय आए कसन कर तो रहा कि ये जसन की हम चो मुरिया समाज में सीधा सीधा 3 बस के हम इमन जानू से, और हुंची संग संगे हुन चो पेरल में हुनके भले नाम धर सो, एक आए बकड़ी बसिया, एक है बाघ बसिया, एक कचिम बसिया है कि नहीं, और हुंचो बाद में

0: जौनबा लियासत यही तीनों बस जो इर्द गिर्द जो लोकमानात उनमन के कोनी लगे नागबल लिखसोत कौन लगे कच्छ बले लिखसोत है नी तो ये बस फिटान बाती जसन की अबे हम चो सगा हम चो मुरिया समाज में सगा बोलतो बीती सब बहुत बढ़िया है और हुन सबले बड़े बीती रोल बोलने से मामा मामा पक्ष हुन चो बिना हम चो सामाजिक कार्यक्रम एक इंच बले आगे बढ़ुक नहीं सके चाहे जोन बले हो सामाजिक काम हुन चो होतर जरूरी है सियान मन तो चो आए ची आए लेकिन ये हम चो मामा पक्ष हम ही जसन की बनुआ हम चो सगा जे चोले हम चो वंश वृद्धि हुआ है जे मन चोले हम चो रीति जसन की अभी हम चो मैं बकरी बसिया आए तो मैं बाघ घरो मैं चो सगा होते हनुमान मैं हनुमान चो घरे हनुमान ताने को नहीं आसे आले उनके हम ही सगा करूं हम चो ताने उनके हम ही बधु बना सकू हमन ये है कि कसन की से एबे प्रदूषण प्रदूषण बोल तो बात निकल ली अबे हुनी प्रकार जो अगर सेम सेम बस जो होलो में ये प्रदूषण हो दे ये भी नहीं है हुनचो पता नहीं चले हम ही मन दखलो रासे कोनी कोनी लग बले ये चो परिणाम ये चो प्रैक्टिकली जो होली से बहुत खतरनाक होली से लेकिन आजकल हम चो पढ़े लिखे लोग मन नहीं समझो सो तुनके कसन की हुनमन सामाजिक व्यवस्था की नहीं जान सो ये कौन जमाना चो गोटा ये बस बस में ब्याह कर लो ने हुनमन चो घर नहीं रहे बाल बच्चे तो खिंड अनिस्ता हो कि कसन टाइप चसन सियान मन सांगोत देवी धामी के मनान बाती दखुन बाती पूछताछ करुन बाती ना ही ना आसन आसन कर लो में आसन आसन हो दे अलग अलग बस बनाऊ ये कौन तो आगे दिन चो बन लो बीतिया ये तो हुन हिसाब ने बना तो हुन चो परिणाम साल छह महीना बाद में ही ली खूब अच्छा रिजल्ट ही ली हुन बहुत सारी बीमारियां मन खत्म हो ली ऑटोमेटिक ये बस जो जरूरी है मैं सब गांवकारी मन के जीतलो बोले हम चो लोग मन आसोत बस्तर चो है कि नहीं अबे बस के फिटाउन बाती ही बिया कर रहा समसम में से बराबर बराबर मन में के भाई नहीं करतो रहा ये हम ही भाई भाई हुआ हुनता ने उन गड़बड़ होए दे अबे कोनी कोनी लोग सुन लो रहा से हमन भर चिंता करो से कसन होए दे लेकिन हुन मन के समझालन बोल नहीं समझो सो तो बस जो हम जो समाज में सबसे बड़े मतलब आए समाज में बस ने बस नहालो हम जो समाज आगे बढ़ू नहीं सके
1: तो बलदेव मोरे दातो मितलो अच्छा गोट के सांगलास मंतर मनबोध बघेल भाई जसन की गांव ने बल्ले ने कई जाति बिरादरी लोग रह सोत मंतर का है कि बस ने ची बल्ले ने कोनी चो जाति हो कोनी चो समाज चो लोग हो उन नाता पंता बल्ले ने जोड़ते रहे से तो ये गोट के तुम्हें ऑप्शन
2: सत्य बल्ला संचालक महोदय ये बलदेव दादा बल सांगलो तो सत्य गोट के सांगलो माता नाता पंता बल्लो ने ये है कि बंस पिटा पिटी होलो चो जोन लोग बाकात आम चो आदिवासी समाज ने बल चले से और गांव ने रहते लोग जितरो बल्ले जाति चो अन्य लोग आसोत हुने बल चले से बंस पिटा पिटी जो घर द्वारा है हुन मन संगे रोटी बेटी चो लेना देना होए से जसन की जेचो घरे आमी बाप रिश्ता मानू से काका रिश्ता मानू से हुन एक बंस चो अगर आए तो हुनके आमी काका बाबा भाई ये नाता बनाऊ से और जोन बंस पिटा पिटी होए से बाघ बसिया के छाड़ून बकड़ी बसिया होए से कचिम बसिया होए से कि कुकुर बसिया होए से असन बाना बाना चो बस आसे हुन बस संगे आमी बिया टीका करतो काजे नाता बनाऊ से तो काके मामा बोलू से काके बुबू बोलू से और काके हाँसी नाता बल बोलू से हुन हाँसी नाता बीती जो आए ये गांव में रहतो लोग और जाति संग बोले आए भले हुन अलग जाति ने हो गांव ने रहतो लोग चाहे हुन आदिवासी हो ना हाले गैर आदिवासी हो कोनी बोले हो मानतर सफाई ने हुन बस आसे हुनी बस के दखुन भाती हुन मन बेटी देहुआत ना हाले बेटी आनुआत और लोग बाग के रिश्ता बनाउन भाती चलुआत तो एक मानून भाती चलतो काजे का है कि हर एक समाज ने पाईक नाईक मांझी मुखिया बना लो से और हुन चलन में ऐसे एबले नु आए पुरखा दिन ले हुन चलन में ऐसे मानतर हुन बना लो बीती चो के नी मान लो कारण में हुन चो जसा ने प्रदूषण शब्द बल्लास हुन में विकृति दखा दे से बाघ बसिया के बाघ बसिया जसन कोनी उदलिया आंसोत बकड़ी बसिया के बकड़ी बसिया कछिम बसिया के कछिम बसिया कोनी उदलिया आंसोत नाले आजी काली चो हिसाब में प्रेम विवाह कर

0: बस के बस पिटा पिटी नहीं होली और बेटी लेना देना चल ली उनचो बेटा बेटी जन्म ला तो उन्हीं का जो रोग उपज ली से तेबे आम के जो है मानुन सुनुन भाती जो है मानुक पड़े दे और चल तोर जरूरी आए उनमें का है मानव जाति चो विकास सही होए दे और ये चो महत्व बले होए दे कि कौन काय बस चो आए और हुन बस चो पीटा पीटी हो उन भाती हुन चो लेन देन कर लो में मानव जाति चो विकास बले होए दे और हुन विकास हो लो ने हुन चो जो रिजल्ट ए दे हुन सही रिजल्ट ए दे हुन में जो है कहीं रोग नहीं होए कहीं बीमारी नहीं उपजे ना कहीं विकृति नहीं है और हुन मन चो जो है मानसिक विकास बले होए दे तो हुन मानसिक विकास होए दे और दखू से आमी तो एक मानुन भाती चलतर खूब जरूर है तेबे हुन महत्व के समझुक होए दे और हुन महत्व के समझुन भाती काकी बले हम सांगलू जाले काकी बले दखालू जाले हुन प्रैक्टिकल चो जो रूप आए हुन मानव जाति चो विकास काजे खूब महत्वपूर्ण होए दे होए दे नहीं आसे महत्वपूर्ण आसे
1: एक बात मैं इतन बोले से
0: हां आले सांग बोल दो
1: दादा जसन की बल्लास नहीं बस हामी आसो तीन चार बस चित्र बले आस मैं बकरी के नहीं खाए मोचो के बस विटामिन खूब आसत दे
2: आसत
1: है कि नहीं बकरी के दूसर खात बीता मन का तो बचा लो होलो सुनो ली कि नहीं होली उन खाना पीना वाले बैलेंस होए से
2: हो हो
1: है कि नहीं जो चीज के मैं नहीं खाए से उनके खाए से हुन ना मैं खाए से बैलेंस होलीस कि नहीं आई हुन हिसाब ने बोले हम चो पुरखा पार्टी ने जैसे चले से ये बस गोत्रीय बहुत ही जरूरी आसे
2: बहुत जरूरी है
1: और एक बात और मैं बोले से हम चो पुरखा पार्टी में दू खंदा चलू ने ऐसे आई दादी ए बाटे आजा दीदी है नी ए बाटे आजा दीदी ले ए बाटे माँ ऐसे मामा ऐसे मैना बहिन ऐसे इतलो ने है कि नहीं है इतलो ने खत्म है से आजा दीदी मामा है नी आया है नी तो मामा चो बेटी
2: बेटी
1: इतलो ने खत्म है कि नहीं हुन गोटक पर मतलब माने खंदा नहीं ली ये भी हम चो बाटे दादी आई है नी बाबा आया
2: आया
1: और काका है कि नहीं बुबू
2: बुबू
1: इतलो ने ये बात समाप्त हो ऐसे ये असनी ये दुई खानदाने चलून बाती हम चो समाज हम चो रूढ़ी प्रथा इस आपने जितलो बले आस होते थाने बस्तर में यही ताने चलसो
2: चलसो
1: ये दो ही रिश्ता है दो ही खानदा है ये दो ही खानदाने हम चो संसार और समाज बने से यही ताने ये सब कुछ आसे ये तानी गड़बड़ होले रे सब गड़बड़ हुआ ये तानी गड़बड़ नहीं होले कहीं गड़बड़ नहीं हो
2: तो देखा चर्चा तो आमे खूब अच्छा नंगत हो से मंत्र देखा में बोलूक चाहे से जसन की आमचो बल्ले ने जसन मनबोध बाइबल बोला कि गांव ने कितली समाज और समुदाय चो लोग रहसोत आरु जो बस हिसाब ने फिर कहा कि उनमन नाता पनता जोड़सोत आरु नाता पनता जोड़ लेने बोले ने हुने हिसाब ने कहा कि पूरा जोन गांव चो जोन समाज चो लोग आए गोटक दूसर के मान सम्मान होए से आरु एक दूसर के कहा कि आप लोग खुद चो मतलब मान सोत अपनत्व तो होए से ये चले कहा कि जोन गांव चो जोन एकता है बोलू बे हुन बोले बनुन बाती रहे से कहीं ची बोले संकट विपत्ति ली बोले ने कहा कि सपाए गांव चो समाज चो लोग मिलन बाती उनके घुचाए सोत तो बोले ने इतलो बड़े भारी जोन बस जो कारण ने आम चो जोन समाज आए हुन अस्थिर ने चले से मंतर एवे मनबोध भाई तुम बल जसन की एवे नस्ते जाए से आम दखू से जसन की बले ने आगे जुगे चो जोन परंपरा में चलते रली अब ये जोन एवे जोन नशा है सो ना समझ चो कारण नहीं आए काय कारण नहीं आए एक तो ये भी आम के पूरा सोचुक लाए पड़े दे
0: सोचुक लाए पड़े दे सत्य बल्लास
2: है कि नहीं तो बोले ने कसन ने मतलब असन नस्ते जाए से बोलू बे ये चुप गोट के बलामी था गोठिया हूँ
0: हाँ हाँ ये पक्का गोट के बल्लास ये नस्ते असन ने जाए से जसन आमी जोन बोले हिसाब में जीव से जोन बस चलो गाँव हुन बस चो अभी लिखा पड़ा कहाँ बोले लिख लो बीती नी दखा दे से उनके लिखुन भाती रक्तर जरूरी है और दूसर बस चो लगा सोत कहाँ ली उपजा सोली कौन गांव ली उपजा सोली कौन अलग अलग जाति में आसोत हुन जाति में बोले हुन बस चला चली होए से मानतर लिखतो में पता नहीं चले से जिदल दाय बिया करतो जाए ये हुआ है समय उदल दाय आमी यहाँ पूछ पचार करू आऊ और जिदल जाए कहीं रोग हुई ली जाले जिदल जाए कहीं आपत्ति ली जाले विपत्ति ली जाले समाज ने कहीं विकृति ली जाले उदल दाय आमी पंचायत करू आऊ और उदल दाय गोट के निकरू आऊ आले सांगा ना तुम्हें कौन खेदा चो आस कौन बाटले तुम चो असन रोग इली कसन नहीं इली कौन तुम चो माय बाप आय

0: कौन तुम चुआई का को आत एक आम पूछ पचार करुआ हूँ उन पूछ पचार कर लो ने फिर बाद ने आम के उन खेदा चो पता चले
1: से, पता चले से।
0: तेबे फिर उनके आमी फिर सुनुन भाती हुन चो जो बोले उपाय आए हुन उपाय के सांगू से आमी ना ये के तुम ऐसा नीडा बुला हुआ आसन करा तेबे तुमको रोग दूर हो दे बोलून उनके लिखुन भाती रख लो बीती तो नहीं आए ये आज चो समय ने पढ़ा लिखा हो सोत जमाए जाति चो लोग जमाए समाज चो लोग गांव ने रहतो लोग शहर चो शहर ने रहतो लोग पढ़ा लिखा हो सोत मानतर हुन बस के हुन नी मानुन भाती चल सोत हुन चो कारण में काय से जसन काई रोग होली जाली आमी डॉक्टर लग जाऊं से नहाले के भी काई बले कोनी लिखलो बीता चो लेख के आमी पढ़ू से कोनी वैज्ञानिक बले आसे तो हुन बोले से बिया कर तो पहले तुम चो ब्लड के
1: टेस्ट करा
0: रक्त के तुम्ही दखा काय ग्रुप आए तुम चो हुन में काई रोग तो नहीं आए हुन
1: विज्ञान बोले से
0: तेबे पढ़ो लिखलो लोग आमी काय करू से नहीं ना हाले जाऊं ये रिश्ता नाता पंता तो जुड़े देची बाद ने होए देची मानता रक्त के आमी चेक कराऊं ब्लड के चेक कराऊं आऊं चो बाद ने हुन चो रिश्ता जमे देख नहीं जमे दे बेटा बेटी पाऊं दे तो हुन फले दे कि नहीं फले दे हुन के फिर विचार करूं आऊं हुन चो बाद ने फिर रिश्ता जोड़ू आऊं ये बात चो गोटा है मानता पूरब दिन ले जो चलते ऐसे उदलदाय कहीं लेबोरेटरी नहीं रहे कहीं डॉक्टर नहीं रहे कहीं लिख लो बीती किताब नहीं रहे मानता अभी मानो भाती चलू से जैसा नाम चो रीति नीति आए जैसा नाम चो पुरखा चो लोग चल सोत जैसा नामी देव धामी के मानसु मानुस है उन्हीं देव चो हिसाब में बोले आमी कहीं बोले परब होलो ने मानुस है उनके सेवा करू से राम चो पाईक नाईक आसोत माझी मुखिया आसोत उनके मान मान करू से आमी दखा ना आमी भूलकलू से तुम्ही सांगा आमचो गांव में या आमचो घर में परिवार में कभी कहीं मरनी होली जाले आमी आमचो बस चो पीटा पीटी बस बिता के आमी बलाऊ से है देखा तुम चो संग चो मामा रिश्ता होए से बुबू रिश्ता होए से हाँसी रिश्ता होए से तुम ही आ और ये कार्यक्रम के पूरा करावा बोलते
1: हाँ।
0: तो हुन मान जो आए हुन पूरब दिन ले चलते ऐसे एक बोले मान तो जरूरी आए आज ही काली चो दिन हिसाब में आमी कितरो ही बोले अच्छा पढ़ा लिखा हूँ कितरो बोले अच्छा आमी घर द्वार के बनाऊ कितरो ही बोले मॉडर्न हिसाब में आमी जीवना चलू से बोलते बोलू तेबे बोले आम के आम चो जीव के बाढ़ तो काजे आम चो मानव जीवन चो सही विकास हो तो काजे ये जो पूरा दिन ले चलते ऐसे ये बस के जान तो जरूरी
1: है तो मनबत भाई तुम्हें इतलो अच्छा गोट तो सांगलास मंतर दखा जसन की ये जोन बस चो जोन ज्ञान आए बोलू बे ये ज्ञान बोले ने एप चो जोन पीढ़ी आए बोले ने आम ये भी दखू से कि बस बस ने शादी कर तो भी थी एप चो जोन पीढ़ी की आए हुन मतलब उतलो ज्ञान न्याय ये चो कारण ने हो ऐसे कि परिवार चो दोष आए कि समाज चो दोष
2: आए तन में गोट गोट बोलेंगे ये खिंडिक माए बाप चो बोले दोष आए कसन बल्लो में नहीं हम चो समाज मन में ये बे एजुकेशन उतलो एबे नहीं होली से
1: नहीं होली
2: नहीं होलो तो काचे में काया ये बे दखा मोबाइल धरुन देसोत जिद कर लो ने पढ़ो पठासोत माए बाप तो पढ़ा लिखा नहीं हा मोचो बेटा बेटी मन पढ़ुक जासोत अच्छा सीखसो ये असन बोलून बात हुन मन के मन पर चाह नहीं खरीदे तो बोलुक बल पड़े से नी इतलो तो जानुक सके बाबू तू काय पड़सी कसन पड़सी है नी ये बीती असन आए खोदरा है बाटी नहीं जा इतने घसरुक हुआ ये टाइप चो नाल कहा जाऊरी से भी ऐसी तु ये सारे चीज माए बाप के बल बोलतो रहा से ये भी हुनी कारण नहीं ये भी नहीं परापरी हो सोत और बस बस के बोले आना उनको ज्ञान नहीं है हुन मन के माए बाप नहीं बोल सोत और हम ही लेकर लेके दोस्त बोले दे उसे लेकिन दोनों बाट लिए कि माए बाप चबल गलती है ता नहीं लेकर लेके मन चबल गलती है
1: गलती
2: है नहीं ये चीज के नहीं मैं सबे हम चो बस्तर चो सियान मन और माए माता मन के सांगे से ये कहां बोले जाए से जाऊ के लिए नहीं दिया सा सन लेकिन पूछा कहां जाऊ रिस काय काय जाऊ रिस काय होली इतलो तो पूछुक पड़े नी जा बोलते बीती नो
1: है
2: कि नहीं भाई समाज ने जाए से हुन चो बराबर ने जाए से लेकिन हुन अच्छा काम काज जाए से कि खराब काम काज जाए से इतलो तो उतरा से अगर ये चीज माए बाप करला बोले नहीं ये जसन आज परापरी हो सोत है कि नहीं और बस बस के आना ये चीज एकदम बंद हो दे और ये समाज बल खूब सुधरे दे हाँ
1: ये तो तुम अच्छा गोट के सांगला जसन की आम चो परंपरा हिसाब ने आगे जो के काय पढ़ा लिखा नहीं रहो कारण ने कहीं लिखित रूप ने कहीं चीज नहीं आए कि हमें उनके पढ़ुन बातें जानुक लाए सकुआ है कि नहीं जैसन आगे जुगे बल का है कि आम छो जो पूरा जोन रीति नीति आए काम आए थी बोले मेला मंडे बाजार जोन मौसम आए बेर आरु जोन के आए के नहीं उन्हीं हिसाब ने सब जानते रहो आए के नहीं जोन उदली तो काय होली कौन महीना पूनी होली काय हुआ है केबे अमूसाए केबे धान पेरत रहा है धान काटत रहा है सब ये चीज होते रहे है कि नहीं मंत्र दखा तो ये भी बोले होए से ची
0: हाँ ये बल होए से
1: तो होनी चीज काय की ये भी जोन बोले गांव ने सियान मनासो तो आप लोग जोन बस जो जोन बोले ने उनचो जोन महत्व आए बोलो भे उनके पीला मन के सांगुकलाए पड़े थे
0: हाँ सही बोल रहा
1: है कि नहीं बोले ने कहा कि आम चो रीति नीति जो सगा बोले जोड़तो रहा है नाल कहीं नाता पंता करता रहा है तो बस हिसाब ने आम कर लेने काय फायदा होक लग सके काय घाटा होक लग सके है कि नहीं बस चो का अभी तो कहीं शोध बल नहीं होली
0: से नहीं होली
1: है कि नहीं
0: शोध बल नहीं होली
1: मंत्र का है कि आम चो जो आगे जुगे लिए पुरकाश लोग जो नियम बना ला उन नियम ने चलने का है कि आम चो पूरा परिवार देह पाए बोले स्वस्थ रहे से नंगत रहे से
0: हाँ।
1: तो ये चीज के बोले ने सांग तो काम बोले तो का है कि समाज और परिवार चो है से
0: हाँ
1: का
2: समाज और परिवार
0: समाज
2: असली
1: है कि नहीं
2: और हुन बोले समाज में बोले उठा बैठा हो तो होते रहो तरह से
1: हाँ।
2: ये चुका है घरे रोहन बाती को नहीं ये अलग से क्लास लगाते भी थी नोहा
1: नो हाँ।
2: भाई डंडी खाना खातो बेरा खेली सब उठ ला दखा ना यही से नहीं तो गोठिया हो सियान मन उतले में सब समझ में आए है नहीं तो ये चीज सियान मन के या बड़े भाई आए बड़े बहन
1: आए
2: ये मन बोलो समझाओ ये सब का अच्छा हो दे हो हम तो आज बोले हो दे सब अच्छा रहो हाँ है कि नहीं समाज अच्छा रह लिया मन बले अच्छा रहे अच्छा मन अच्छा रह लिया भाई शरीर बले अच्छा रहे दे सारा चीज अच्छा हो दे लोग बाग सगा लोग बले अच्छा बोल दे और सब सहायता कर दे ना ले गलत कर ले दे ना हूं असन असन कर लो कसन करो ना जावा कि नहीं जावा ना नहीं जाऊ ना असन आए कुसन आए ये दे होली का तो ये सारे चीज से बच तो काचे सबके सांगुक पड़े दे
1: उन तो आए जी मंत्र दखा जसन जसन आम ये भी पांच छह बरख पाठ कुती हमी गोटिया हूँ तो बल्ले ने हर समाज चो लोग चो गोटो एदाएं बल्ले ने आप लोग समाज चो उन्ती बाढ़ती काज गोटो संगठन बनाता रहे से आगे तो समाज चो संगठन बल नहीं रहे है कि नहीं मतलब ये भी हर समाज चो गोटो संगठन हुए से और सोच सोच की आमी आम चो समाज के कसन उन्ती बाढ़ती बांटने नेवा है कि नहीं मंत्र आमी ये बस और नाता पंता ने देखो तो ये और खाली घसरते जाए से
0: सत्य बल्लास
1: है कि
0: हो का देखिए ज्ञान दे तो काजे और समझ तो काजे समाज जो संगठन बने से उनमें सांगतोर बल
1: जरूरी है
0: ये गोट बात बल करतोर जरूरी है जैसा हाँ। नाजी परिचर्चा होए से ये गोट के तो आमचो गांव चो भाई बहन मन सजन मन सुन दे मंत्र हुन मन बल विचार करो
2: ये मन बल सुन सोते अभी हम चो गोट मन के नहीं समाज बैठक होए से तने उन सांगोत
1: सांगोत
2: असन असन होए से ठीक न होए है नहीं तेबे तो हनुमान के बोले नहीं ना इन बात के सुन लो सांग लोग हनुमान के लिए खिंडी कच्चा होली तेबे तो बोल दे
1: हाँ तो है
2: ये सुन सो हनुमान बोले जा जहाँ सियान सियान मतलब बोले उन्हें सांगा बैठक ने ऐसा कर तो ठीक ना है
1: हाँ तो मनबोध भाई तुम चो बाट ले बोले और
0: मोचो बाट ले आए कि जसन तुम्हें गोटोक शब्द बोलला शोध नहीं होली से तो सांगुक मुरियालू जाले लोग सुनला जाले ये सोच चो प्रारंभ होए दे और ये चो बाद ने फिर लोग मन सुनुन भाती फिर चर्चा कर दे और नया नया गोट निकरे दे हुन गोट के सुनुन भाती रखूं और लिखुन भाती रखूं यही सोच चो प्रारंभ होए दे और यही सोच जो है मानव विकास का जे बले जरूरी है और ज्ञान बले बाढ़े दे
1: उन तो आए थी दख ये भी जसन की पढ़े लिखे लेखा मनासोत लेखी मनासोत बल्ले उन मन के सोच काज बल्ले कहीं सोच नहीं है ऐसे काम का करूँगा है कि नहीं
0: हाँ,
1: तो पढ़ा लिखा सोच जो सामाजिक हिसाब ने जो समाज शास्त्र पढ़ाई कर सो मानव विज्ञान चो समाज कर सो
0: कर सो
1: तो ये बोल गोटो को विषय हो क्ला
2: संविधान में आसे हम चो ये सब रीति रिवाज के जानतो रहा से बोलून बाती रूढ़ी प्रथा के संविधान में आसे
1: आसे
2: हुन हिसाब ने बोले उनके जानकारी होतो रहा से आज सरकार वाले बोले से आप लोग तुमन मन आप लोग संस्कृति की नहीं भूलका सबके हुन हिसाब ने चला
1: चला
2: बोली भाषा सांग के सिखा तो काचे ये तुम चो गीत गोविंद के बोले नहीं भूलका ये सब बोले से सरकार बाटले बोले
1: हाँ।
2: तो ये मन के भूलक तो नो हाँ।
1: हाँ।
2: ये मन के गाँव ते हुनता ने पता चले हुन भीतरे काय काय आसे अभी पता नहीं है
1: हम तो आए सी
2: हाँ।
0: नहीं मानता राम चो परिचर्चा जसन बोले जहाँ बोले अमरो जहाँ बल लोग सुनोत मानतर गोटो का संदेश ये आमचो बाटले देतोर हो कि जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग आसोत जो कॉलेज पढ़सोत पीएचडी करसोत आदिवासी समाज ले आसोत ये मन बोले जसन ये भी बोललास तुम्ही मानव शास्त्र धरला से मानव विज्ञान धरला से असन जो सब्जेक्ट मन धरून बात मन पढ़सोत ये मन चे लगे बोले अभी कोई विकल्प नहीं आए कि मन शोध करोत
1: करोत
0: और ये मन के बोले जानकारी ये भी नहीं आए मानतर आज ही जो बाद ने जो अगर गोट सुन दे विचार कर दे तो ये मन बोले विचार करोत ये मन बोले आदिवासी समाज चुआत भारत समाज चुआत और गांव चो रतो लोग बोलात जमा चो बाढ़ती हो दे जसन तुम्ही बोललास हाथ पाए दे बल ठीक रहे दे बीमारी बल सुधरे दे काई नया नया गोट बल सुन तो नहीं मिरे तो ये ज्ञान आए और ये शोध होली जाने विज्ञान चो बाढ़ती हो दे
2: विज्ञान चो बाढ़ती हो दे भी हम चो लोग मन कोदो कुटकी के खाते रह शहर लोग बितावन नहीं खाते रहो है कि नहीं ये भी उनके शोध कर ला है तंतोष नहीं बीती आते सरकार हुन मन को उकलाई बोले से कि नहीं बोले हम जो पूरा रूढ़ी प्रथा में जितलो बोले चीज आसे सोच चो विषय आए फोकानो है
1: फोकाट हुए
2: जो उनके खिड़क फाटा सामने सामने लिखो उनके उनके जान सो है कि नहीं हरवा होली कोदो होली कुटकी होली मड़िया होली आगे खाते रहो उनके बल्कि हमन मन गांव बिता मन के टार्चर करो पढ़े लिखा बिता तू असन की खातो बिता असना गुच असन बोलो ये वे होनी असन बोलते बितावन होनी भी थी काना ना होनी भी थी खाऊं दे ये हम चो तुमन मन हम चो रूढ़ी प्रथा के गलत नहीं समझा नीचे नहीं समझा उनके उनके तुम्ही मन बराबर सोचा और कोनी जी बोले चीज हो उनके नानी नहीं समझा हम चो पुरखा पाटी दिल ले जो दिल्ली से हम चो जीवना खावना काचे बोल चाल काचे उन चीज मन असली आए
0: हाँ मानतर संचालक महोदय ये बलदेव दादा तो सांगला मानतर तुम चो गोट पक्का मके लागली हाँ अच्छा विषय चो गोट के तुम्ही बोलला सांगलास ये मैं गोटक जगह पढ़ू रले कि आम चो भारत देश में जो पुरानी संस्कृति है सबले पहल संस्कृति हड़प्पा संस्कृति मोहन जोदड़ो चो संस्कृति और सिंधु घाटी चो सभ्यता उता उता चो शोध करुन भाती लेखक मन किताब लिखला और मोती रावन कंगालिन दादा हुन किताब के लिख लो उता लिख लो रासे
1: अच्छा
0: ये बंस बंस कसन ने जन्म ली कसन ने बंस बनालू कसन ने आमी नाता पंता जोड़ू से बनाऊ से बोलते उन किताब के उन पुस्तक के बोले पढ़ तो आम चो जरूरी है तेबे आम चो ज्ञान बाढ़े देता वैज्ञानिक हिसाब ले लिख लो रासे हाँ और उनके पढ़ुन भाती अगर हम केवल चर्चा कर लू जाले सांगलू जाले नहीं उन और बाढ़ती हो दे ज्ञान चो बाढ़ती हो दे ये खूबे जरूरी है तेबे शोध बले हो सके ज्ञान बले हो सके मान सम्मान बले हो सके मान सम्मान हो दे नहीं का दुख दर्द नहीं होली जाले रोगराई काई नहीं होली उपटली जाले और वंश बाढ़ ली जाले है नहीं ये विज्ञान तो असन असन शोध करे से काय काय बीमार उपजली से कि गुचा मा बोलते और हुन आप लोग शोध प्रकाशन करे से मानतर आमी रिश्ता बनाऊ से बिया टीका कराऊ से ये चो तो काई लिखा पढ़ा नहीं आये काई शोध नहीं आये सोजे पूछू से हाल ना तुम काय बसास तू चो घरे आमी बेटी मांगू किलू से कि आम चो बेटी दे तो काज विचार बनाऊ से तेबे पंचायत आमी करूं से तो उनचो मान सम्मान बढ़े दे अगर आमी मानुन भाती चल लू जाले तेबे ये तो पीढ़ी बले मान दे नी ये तो पीढ़ी बले हुन गोट के सुनुन भाती आप लोग ये तो पीढ़ी के सांग दे ये यही गोट आए
1: उन तो आए ची दखा बले ने कहा कि ये बस आरु नाता पंता के बचा तो काजे चो संरक्षण काजे बचान संगा तो काजे बले ने एपचो जो नौजवान लेका लेकी जो पढ़े लिखे होला से बले ने उनमन शोध हिसाब ने बोले कर लेने वैज्ञानिक हिसाब ने कहीं न कहीं आमचो जीवना काजे बाट निकरुक लाए सके दे आरो ये चो संरक्षण आरो बोले समाधान बोले ने समर्थन बोले उकलाए सके
2: सीधा सीधा जनसंख्या नहीं बढ़े
1: नहीं बढ़े हाँ
2: जनसंख्या नहीं बढ़े
1: नहीं बढ़े
2: और ये बल्कि अभी जसन की अभी गोत्र गोत्र हिसाब ने सेम सेम गोत्र कर लो न कहा हुए
1: हाँ
2: एक तो बड़े दे नहीं तो खराब है
1: खराब है अच्छा
2: ये है होली हुन हम के सही रास्ता दिखा तो असन दखा लो और बोल लो कि हम चो बेटा बोलो उसने करो बोलून बात है कि नहीं ये इसमें हम इतलो महत्वपूर्ण चीज है ये कि मैं हर आदमी के बल दे से कोनी बोले दून बोले जसन की बस्तर रियास में जो सुन बोले बस चले से अलग अलग समाज ने बोले हुनमन के बोले बोले बने से हम ची तारे बस्तर में जीतलो बोले आसोत कोतरे हिसाब से ही चल सोत
1: चल सो।
2: लेकिन उनके मानून चलत हो तेबे अच्छा रूप हो दे मुझे ख्याल बीमारी उमारी बल कम है दे
1: कम है दे। तो देखा आज ही आम इतलो अच्छा बोले तीनों मिशन बाती ये बस आरु नाता पंथा आम चो समाज ने बोले ने कितलो महत्व आसे उन काय काम दे से आम चो समाज के आगे बड़ा तो काजे इतलो अच्छा गोड बात एली आम चो रेडियो सुन तो लोग बले सुनसत होती जानसत होती तो सपाय मिलून बाती आमी या आम चो जन पुरकती वेराले चलती ऐसे परंपरा के आमी बचाऊं आरु आम चो जन चीना बाना है उनके भी नी मिटो आल बलदेव मोरे दादा आरु मनबुद बघेल दादा तुम्हें इतलो अच्छा तुम चो विचार बले होली आल खूब खूब जुआर
0: जुआर सब पाए के जुआर।
3: बस और नाता पंता का सामाजिक महत्व अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर परिचर्चा हल्बी बोली में। प्रतिभागी थे मनबोध बघेल और बलदेव मौर्य। संचालन था बलबीर सिंह कच्छ का। आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। अपेश है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

मेरे सनम कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए इस फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को सुरबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

अलबेला कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म से। इस गीत को गाया है चितलकर रामचंद्र और लता मंगेशकर ने। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत है और संगीत है चितलकर रामचंद्र का।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और रामचंद्र नरहर चितलकर की आवाज में। शब्द हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीत है सी रामचंद्र का, फिल्म का नाम है आजाद।

नया दौर, यह फिल्म का नाम। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है ओपी नैयर का, गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

रजनीगंधा आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। दिल अपना और प्रीत पराई कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द हैं शैलेंद्र के और सुरबत किया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए पेंगेस्ट फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन ने।

0: रजनीगंधा। अभी आप आनंद ले रहे थे पुराने फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
4: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isha Rani Barua. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:51 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।